0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शहनाई वादन। कलाकार थे अशोक कुमार, आप चौरसिया, आपने प्रस्तुत किया राम राग रामकली। सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। प्रातः के 6:10 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं और अब वक्त है भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदना का। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ की आरती से।

देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को कोटि कोटि प्रणाम। भोले बाबा जो कैलाशपति हैं, जो नीलकंठ हैं, जो भक्तों के हर दुख हर लेते हैं, जिनके स्मरण मात्र से मन को शांति और जीवन को नई ऊर्जा मिलती है। चाहे दिन कोई भी हो, महादेव की भक्ति हर पल आनंद और विश्वास से भर देती है।

भोलेनाथ से तो कोई भी विनती करे, सच्चे मन से कुछ भी मांगे, वो तो सिर्फ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी की मनोकामना पूरी करते हैं।

जिनके मस्तक पर चंद्र सुशोभित है, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है, जिनके कंठ में विराजते हैं नागराज और जिनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि का आरंभ हुआ। महादेव केवल देव नहीं, ये विश्वास है, भक्ति है और हर दुख में सहारा है। कंकण में शंकर, गले में सर्पों का हार, भोले बाल बाबा की महिमा अपरंपार, भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। लीजिए अब सुनते हैं शब्द भाई हरबान सिंह रागी और साथियों से।

इसी के साथ वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार।

यह घटना उस समय की है जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास स्कूल के छात्र थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बालपन से ही बेहद कुशाग्र एवं तीव्र बुद्धि के थे। उनकी कम उम्र में ही उच्च स्तर की गतिविधियां व कार्यकलाप प्रत्येक व्यक्ति को हैरानी में डाल देते थे। एक बार स्कूल में उनकी कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें धर्म के विषय में बताऊंगा। आखिर हर विद्यार्थी को यह ज्ञात होना चाहिए कि धर्म का क्या उद्देश्य होता है। धर्म और शिक्षा भारतीय संस्कृति को मजबूत करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। अध्यापक बोले, आप मुझे बताएं कि धर्म का क्या उद्देश्य है, धर्म का क्या अभिप्राय है। अध्यापक की बात सुनकर एक विद्यार्थी बोला, सर, धर्म का अभिप्राय है पूजा करना। इसके बाद दूसरा विद्यार्थी बोला, सर, धर्म हमें सुख और शांति प्रदान करता है। अब तीसरे विद्यार्थी ने कहा, सर, धर्म का अभिप्राय है ईश्वर में गहरी आस्था और शुद्ध व सात्विक मन से नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करना। इसके बाद अध्यापक डॉक्टर राधाकृष्णन से बोले, बेटा, अब तुम बताओ। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने स्थान पर खड़े हुए। वह बोले, सर, धर्म हमें सिखाता है कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अशिक्षितों को पढ़ाना चाहिए और जो अनाथ हैं उन्हें भरपूर प्यार देना चाहिए। वास्तव में ऐसे काम करना ही धर्म का उद्देश्य है और यही असली पूजा है। नन्हे से बालक के मुंह से यह बात सुनकर अध्यापक दंग रह गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। वे सभी विद्यार्थियों से बोले, देखना, यह बच्चा एक दिन भारत का नाम अवश्य रोशन करेगा। जो बालक अभी से धर्म के बारे में गूढ़ ज्ञान रखता है, वह आगे भी इस देश को नई रोशनी दिखाएगा। अध्यापक की बात आगे चलकर सच साबित हुई। यही बालक राधाकृष्णन अध्यापक की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी योग्यता और प्रतिभा से आगे बढ़ते रहे और अपने अध्यापक की बात पर खरे उतरे। वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। उनमें एक आदर्श शिक्षक के सारे गुण मौजूद थे। उन्होंने अपना जन्मदिन अपने व्यक्तिगत नाम से नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षक जगत को सम्मानित किए जाने के उद्देश्य से शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा की थी। उनके जन्मदिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

कार्यक्रम चिंतन यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से बालकांड का भाग 66।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

भागिना सुचितम। क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं पराजितम्। अपरतः राजस्थान रॉयल्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं त्रिंशत् धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will present 66 Padma Awards at the first civil investiture ceremony for 2026 to be held at Rashtrapati Bhavan today. During the ceremony to be attended by Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, among others, the President will confer 2 Padma Bhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri Awards. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Bhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The remaining Padma awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjatiya Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why the counter-terrorism cooperation is so important. He said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices.
4: We must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
3: Mentioning the visit of U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jaishankar said, "This visit highlights the significance of India-US ties in contemporary times." He added that a year ago, Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump set out a pathway for the further development of both nations' enduring partnership. US President Donald Trump dialed Secretary of State Marco Rubio during an event celebrating America's 250 years of independence at the Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. U.S. President described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated the ties between the two nations had never been so closer. He even called himself a big fan of PM Modi. Mr. Trump said India can count on him 100%.
5: "I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend.
3: US President's remarks came amid Mr. Rubio's four-day visit to India. Mr. Rubio met Prime Minister Modi on Saturday, followed by his meetings with External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval yesterday. The National Testing Agency NTA has postponed the Common University Entrance Test undergraduate 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid ul-Zuha or Bakrid holiday as per the government notification. The agency informed that revised exam dates will be announced soon. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 examinations by one more day until today. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Kolkata Knight Riders by 40 runs at the Eden Gardens in Kolkata last night. Delhi Capitals set a target of 204 runs for Kolkata Knight Riders, KKR. In reply,

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं आशुतोष कुमार से भजन। सबसे पहले सुनिए ये पारंपरिक भजन।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशुतोष कुमार से भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स में। आइए अब सुनते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से ये गीत। और दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह मुस्कुराहट और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होगी और आप चाय की चुस्के के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे। चलिए आपको सुनवाते हैं अगला गीत, फिल्म केदारनाथ से अमित त्रिवेदी की आवाज़ में।

दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए तो पूरा दिन शानदार बन जाता है ना। और भाई, सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिए। वैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भाई अपनी सेहत का ध्यान बहुत बहुत रखें और कोशिश करें कि बाहर ज़रूरत हो तभी निकलें, नहीं तो घर पर ही रहकर अपना काम करें। चलिए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी से ये गीत।

वाह क्या बात है दोस्तों, ये गीत तो सुबह को और भी खुशनुमा बना देते हैं। और भाई अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल और टोपी या छाता ज़रूर रखें। और भाई सुबह सुबह कम से कम 10-15 मिनट योग या हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये न केवल शरीर को फिट रखता है बल्कि मन को भी शांत और ऊर्जावान बनाता है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से।

आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और भाई दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप नाश्ता कभी भी स्किप ना करें, और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसे फल, दलिया या पोहा आपके दिन को एनर्जी से भर देता है। और दोस्तों, गर्मियाँ बहुत है तो भाई आप तरबूज, खरबूज फलों में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें, सलाद ज़रूर खाएं और खूब सारा पानी पिए। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे टिप्स के साथ अपने दिन को बनाइए शानदार और हेल्दी। चलिए फिलहाल सुनते हैं ये गीत फिल्म पुकार से, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में।

0: भाई इसी गीत के साथ आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 8 बजने को हैं और अब वक्त है समाचार प्रभात का।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया।

0: गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
4: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
7: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
7: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10 लाख 60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000

0: भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्य ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series, People's Padma, on Akashwani.
4: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
5: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
6: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
2: In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune to 100.1 Akashwani Gold today from 9:10 a.m. onwards. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights.
7: Narendra Modi Sarkar ke Guru Mantri ke nate.
8: As the Home Minister of the Narendra Modi government, I want to make it clear that no restriction of the UCC will apply to the tribal world or any tribal individual. No violation of tribal rights will occur because of the UCC. In the two states where the Bharatiya Janata Party is in power, Gujarat and Uttarakhand, we have implemented the UCC, and by making special provisions, the Narendra Modi government has worked to keep all the tribal communities out of the purview of the UCC.
2: The Home Minister also said that the tribal welfare budget, which stood at 28,000 crore rupees during the Congress-led government, has been increased to 1,50,000 crore rupees under the Narendra Modi government. Petrol price has been hiked by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre today, marking the fourth hike in 2 weeks. With this revision, petrol will now cost 102 rupees 12 paise per litre in Delhi, while diesel will now cost 95 rupees 20 paise per litre in the national capital. The National Testing Agency, NTA, has postponed the Common University Entrance Test

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर अजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। बकिया पद्म अवार्ड्स इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज़ मर्ग इन अवार्ड्स से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड्स लोगों के इम्तियाजी कामों के एतराफ़ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएँ, सामाजिक काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत व सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: पद्म अवार्ड्स अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरु जी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
0: अपनी इन नशियात में हम अपने सामेईन को उन शख्सियतों के कामों और ज़िंदगियों के बारे में तफसील फराहम करा रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस बातचीत को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबायली हकूक खत्म नहीं होंगे।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि कबायली बहबूद के बजट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है जबकि ये कांग्रेस सरकार के दौरान महज 28,000 करोड़ रुपए था। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने BJP उम्मीदवार दिबांशु पांडा को फाल्टा असेंबली में दोबारा कराई गई पोलिंग में रिकॉर्ड वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर अजम ने कहा

तरह काम करते रहेंगे। पेट्रोल की कीमत में आज 2.61 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। ये इजाफा 2 हफ्ते में चौथी बार है। लिहाजा अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल की कीमत 95.20 रुपये फी लीटर होगी। इम्तहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने इस माह की 28 तारीख को होने वाले यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए दाखिले के मुश्तरका इम्तहान 2026 को मुलतवी कर दिया है। NTA ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नज़र यह फैसला किया गया है। एजेंसी ने बताया कि अब इस इम्तहान के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। NTA ने उम्मीदवारों को ताज़ा जानकारी के लिए उसकी बाज़ाब्ता वेबसाइट देखने का मशवरा दिया है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के जवाबात के पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपीज हासिल करने की आखिरी तारीख में 1 दिन की तौसीक कर दी है जो कल तक थी। CBSE ने कहा कि यह फैसला इस मकसद से किया गया है कि तलबा को अपनी दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए पूरा वक्त मिल सके। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल को की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। ये फैसला CBSE के नतीज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालदेन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नज़र किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा कि IITs के माहिरीन की यह टीम निज़ाम में तकनीकी बेहतरी लाने नीज़ ख़ास तौर पर इम्तहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारदगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए करेगी। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल माली और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से बातचीत की। ये बातचीत CBSE के बाद के नतीज और जवाबात के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल के दौरान तलबा को दरपेश तकनीकी और अदायगी से मुतालिक मामलात के बारे में की गई है। वजारत तालीम ने बताया कि इस बातचीत के दौरान ये फैसला किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE को इसकी अदायगी के निज़ाम और इम्तहानात के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल को लाजमी तौर पर मरबूत किए जाने में मदद देंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से शदीद तौर पर लड़ना चाहते हैं। कल नई दिल्ली में अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त न करने के बारे में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए और इसी वजह से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए उनका तआवुन निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी आलमी मईशत को दरपेश खतरात को ख़त्म करने और दुनिया को मजीद मौके फराहम करने में है। वजीर खारजा ने कहा कि बहुत से मौके ऐसे होते हैं जिनसे दोनों मुल्कों को बहुत से मैदानों में मौसर दिफाई शराकत दार बनने के मौके मिलते हैं। अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो के दौरे का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस दौरे से मौजूदा दौर में भारत अमरीका ताल्लुकात की अहमियत का इजहार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों की पायदार शराकत दारी को मजीद फरोग देने का एक रास्ता कायम किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर को फ़ोन किया। उन्होंने ये फ़ोन कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में अमेरिका की आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब के दौरान किया। अमेरिकी सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक दोस्त करार दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी इतने करीबी नहीं रहे। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो भारत को पसंद करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ख़ुद को वज़ीर आज़म मोदी का एक बिग फैन करार दिया। जनाब ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अमरीकी सफीर ने अपने फ़ोन का रुख माइक्रोफोन की तरफ कर दिया ताकि सामईन ट्रंप की ये बातें सुन सकें। इस तकरीब में वजीर खारजा एस जयशंकर, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के सफीर सर्गियो गोर ने शिरकत की। अमरीकी सदर ने यह राजधानी अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत के 4 रोज़ा दौरे के दौरान की है। जनाब रूबियो ने वजीर आजम मोदी से हफ्ते को मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि

0: ने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनकी इंतजामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी फौरी पेशरफ की उम्मीदें कम हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे में कोई माली रियायतें शामिल नहीं होंगी, और ये मुआहदा बुनियादी तौर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुद्दत कार के दौरान हुए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने ओबामा के दौर हुकूमत में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियाई मुआहदे की सख्त नुक्ताचीनी की। नीज ये दावा किया कि उनकी तरफ से मुजवजा मुआहदा तेहरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकेगा, और ये मुआहदा साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की तरफ से किए गए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोज़ा मनासिक हज का आगाज हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर से 16 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज सऊदी अरब में मक्का मौज़मा से मीना के लिए रवाना हो रहे हैं। वो मीना में रात के क़याम के बाद कल सुबह वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात जाएंगे। इस साल भारत से 1,75,000 आज़मीन फरीज़ हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। बांग्लादेश में भारत के सुबुकदोश हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कल बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान से अलविदाई मुलाकात की। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा। IPL क्रिकेट में कल रात कोलकाता के एडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद पर महज 163 रन बना सकी। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर चलने के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में भी दिन के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर SJ शंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अखबार ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात सिफारतकारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। इसी अखबार ने भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को एबोला वायरस के तई मोहतात रहने के मशवरे से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफ़े पर शाये किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तहानात मुनाकिद करने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा SJ शंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आज़म मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के एडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म होता है।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्वर गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शुभम कुमार से राग नट भैरव। संगत कलाकार है मुस्तफा हुसैन तबले पर, गुलाम मोहम्मद सारंगी पर।

स्वर गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शुभम कुमार से राग नट भैरव। संगत कलाकार थे मुस्तफा हुसैन तबले पर, गुलाम मोहम्मद सारंगी पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

क्रांतिकारी गतिविधियां दा संचालन किया अते सारी उम्र देश नू आजाद कराउण दा जतन करदे रहे। श्री रास बिहारी बोस जी ने दिल्ली विच भारत दे तत्कालीन वायसराय अते गवर्नर जनरल चार्ल्स हार्डिंग नू जानो मारन अते गदर दी योजना भी बनाई अते जापान जाके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बाद विच आजाद हिंद फौज की स्थापना की। रास बिहारी बोस जी द्वारा देश नू आजाद कराउण लई जिन्नियां भी क्रांतिकारी गतिविधियां अते संघर्ष किते देश की आजादी की शान विच उन्हां दी शख्सियत नू मान सत्कार नाल जाणिया जाएगा। रास बिहारी बोस जी का जन्म 25 मई 1888 नू पछमी बंगाल के बर्धमान जिले के सवालदाहा नामी पिंड विच होया। आप जी की माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता जी का नाम श्री विनोद बिहारी बोस सी। उन्हां दी मुढ़ली सिक्ख्या चंदन नगर विच होई जिथे उन्हां दे पिता श्री विनोद बिहारी बोस जी तैनात सन। जदों रास बिहारी बोस सिर्फ 3 कु साल दे सन तद उन्हां दे माता जी का देहांत हो गया जिस दे बाद उन्हां दा पालन पोषण नानके घर विच होया। रास बिहारी बोस जी ने अपनी अगली पढ़ाई चंदन नगर दे ही डुपलेक्स कॉलेज तो कीती। चंदन नगर उन्हां दिनां विच फ्रांसीसी कब्जे विच सी। कॉलेज विच पढ़दे पढ़दे उन्हां नूं उत्थों दे अध्यापक श्री चारू चांद तों क्रांति दी प्रेरणा मिली। पढ़ाई विच अव्वल होण करके उन्हां ने बाद विच चिकित्सा शास्त्र अते इंजीनियरिंग दी पढ़ाई भी पूरी कीती। रास बिहारी बोस बालक समय तों ही देश दी आजादी बारे सोचते रहिंदे अते क्रांतिकारी गतिविधियां विच गंभीरता नाल दिलचस्पी भी रखते। वो डेहराडून के जंगलात खोज संस्थान विच कुछ समय लई हैड क्लर्क वजो सेवा भी निभाते रहे। 1905 के बंगाल की वंड के समय क्रांतिकारी गतिविधियां नाल पहली बार जुड़ गए। इस दौरान उन्होंने अरविंदो घोष अते जतन बैनर्जी दे नाल मिलके बंगाल की वंड के पिछे अंग्रेजी हुकूमत की मंशा नूं यागर करने का यतन किया। हौली हौली उन्हां दा संबंध बंगाल दे प्रमुख क्रांतिकारी जतन मुखर्जी दी अगवाई वाले क्रांतिकारी संगठन जुगंतर नाल होया। श्री बोस अमरिंदर चैटर्जी अते अरविंदो घोष दे राजनीतिक शिगिर्द भी बन गए। उस तों बाद रास बिहारी बोस द्वारा श्री नरलंब स्वामी दे संपर्क विच आण नाल उन्हां दा मिलाप संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश अते पंजाब दे प्रमुख क्रांतिकारियां नाल होया अते उत्थे उन्हां नाल मिलके अंग्रेजी अफसरां ते हमले करन दी योजना बनाई। दिसंबर 1911 विच दिल्ली दरबार ते जदों भारत दे वायसराय अते गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग दी शानो शौकत वाली सवारी दिल्ली दे चांदनी चौंक विच कढ़ी जा रही सी तां बोस ने अपने साथियां समेत उसकी बग्गी ते बंब सुट्टिया परंतु वह बाल बाल बच गए। ये बंब जुगंतर दल दे मैंबर श्री बसंत कुमार विश्राम ने सुट्टिया सी लेकिन निशाना उक गया। बंब सुट्टन की इस योजना विच श्री रास बिहारी बोस जी की महत्वपूर्ण भूमिका सी। रास बिहारी बोस ब्रिटिश पुलिस तो बचण लई रातों रात डेहराडून चले गए अते पकड़े जाण तो बच गए। इस तों बाद सन 1913 विच बंगाल विच हड़ राहत कम्मां दे दौरान उन्हां दी मुलाकात फिर जतन मुखर्जी नाल होई जिन्हां ने बोस दे दिमाग विच नवां जोश भर दित्ता। जिस तों बाद रास बिहारी बोस दुगुणे उत्साह नाल फिर तों क्रांतिकारी गतिविधियां दे संचालन विच कम करन लगे। हुण उन्हां ने भारत नूं आजादी दिलाउण दे लई प्रथम विश्व युद्ध दे दौरान गदर दी योजना बनाई अते 1915 नूं अनेक भरोसेमंद क्रांतिकारियां दी सेना विच घुसपैठ कराने दी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्हां दे क्रांतिकारी कम्मां दा एक प्रमुख केंद्र वाराणसी भी रहा जिथे उन्हां ने गुप्त रूप नाल क्रांतिकारी अंदोलनां दा संचालन किया। फिर उन्हां ने जापान निरावासन तो पहले विश्व युद्ध दे दौरान युगांतर दे कई नेतावां दे नाल मिलके शास्त्र क्रांति दियां योजनावां बनाईयां

कहाँ नर अपनो जन्म गवावे। भाई दर्शन सिंह निर्मल ते साथियां दी आवाज विच हुणे तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। ते आओ अगला शब्द सरवण करदे हां भाई हरबंस सिंह रागी ते साथियां दी आवाज विच।

माई मैं धन पायो हरनाम भाई हरबंस सिंह रागी ते साथियां दी आवाज़ विच हुणे तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। ते आओ अगला शब्द सरवण करदे हां भाई बलविंदर सिंह रंगीला ते साथियां दी आवाज़ विच।

प्रभु मिलवे को प्रीत मन लागी। भाई बलविंदर सिंह रंगीला ते साथियां दी आवाज विच हुणे तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। आस करदे हां कि अज दा पंजाबी प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नू इजाजत दिओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार

0: सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की वृद्धि की गई। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। नवीनतम जानकारी के लिए विद्यार्थियों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क रखने को कहा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला लिया गया है। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि प्रकृति की असीम कृपा, सूर्यदेव की ऊर्जा और वर्षा बूंदों के आशीर्वाद से हर एक का जीवन आनंद और सौभाग्य से भरपूर हो। संस्कृत की एक उक्ति साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि धरती सदा सर्वदा हरी भरी और समृद्ध बनी रहे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी गर्मी और उमस रहेगी। वहीं मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस प्यारे से मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, और मैं हूं आपकी अपनी हम सफर। आज के सुरीले सफर में आपके साथ दुर्गेश सरस्वत। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अगले एक घंटे तक संगीत, यादों, मुस्कुराहटों और ढेर सारी खूबसूरत बातों के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी पसंद सिर्फ गीतों का कार्यक्रम नहीं है ये।

वो जगह है जहां हर श्रोता अपने मन का कोई ना कोई एहसास जरूर ढूंढ लेता है। किसी को पुराने दिनों की याद आ जाती है, किसी को कॉलेज का वो वक्त, तो किसी को अपने अपनों की बातें। कभी कभी तो कोई गीत यूं ही बिना वजह दिल को अच्छा कर जाता है। और सच कहें कि रेडियो की जो ये बात है, यही बात सबसे खास लगती है। चेहरे दिखाई नहीं देते लेकिन आवाज़ों से अपनापन बन जाता है, एक रिश्ता सा जुड़ जाता है जहाँ गीत भी अपने लगते हैं और बातें भी। तो दोस्तों, अगर इस समय आप अपने काम में व्यस्त हैं, सफ़र में हैं, रसोई में सुबह की शुरुआत कर रहे हैं या बस थोड़ी देर खुद के साथ बैठे हैं, तो बस अगले कुछ पल संगीत के नाम कर दीजिए, क्योंकि आज की इस महफिल में होंगे कुछ ऐसे गीत जो आपको गुनगुनाने पर मजबूर कर देंगे। कुछ ऐसे चेहरे जहां हल्की सी मुस्कान ले आएंगे, कुछ ऐसे जो चुपचाप दिल को छू जाएंगे। तो चलिए देर किस बात की शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत सफ़र की एक ऐसे गीत के साथ जो बरसों बाद भी उतना पुराना, उतना ही ताज़ा महसूस होता है जितना पहले होता था।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपकी पसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त दुर्गेश। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मन कहीं और पहुंच जाता है, कभी पुरानी यादों में, कभी किसी अधूरे सफर में, कभी बस एक अच्छे मूड में। और सच कहें अच्छा संगीत हमेशा सही वक्त पर दोस्त की तरह साथ देता है, जैसे कि ये प्यारा सा एक और गीत

दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि आप अपने संदेश और अपने गीतों की ख्वाहिश हमें भेज सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है ip.delhi@gmail.com। तो जल्दी कीजिए और अपने संदेश हमें जल्दी जल्दी भेज दीजिए ताकि आपके संदेशों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें।

श्रोताओं, वाह, कितना प्यारा सा गीत था ये। ये गीत सुनते ही जैसे पूरा माहौल ही हल्का हो जाता है। ज़िंदगी में बहुत सी बातें हम शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन कई बार कोई गीत वही बात बहुत आसानी से कह देता है। शायद इसीलिए हर इंसान का कोई ना कोई अपना गीत ज़रूर होता है। दोस्तों, आपके संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं, और जैसा कि हमने आपके संदेशों को शामिल करने का वादा किया था अपने कार्यक्रम में, तो आइए लेते हैं कुछ प्यारे प्यारे से संदेश। हमें पहला संदेश आया है उत्तम कुमार भगत जी का। इन्होंने श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बूढ़ा गाची, पश्चिम बंगाल से इन्होंने हमें ये संदेश भेजा है, और हमने सनम को खत लिखा फिल्म शक्ति से ये गीत सुनना चाहते हैं। इसके अलावा हमें और भी संदेश मिले हैं। ये संदेश हमें आया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा जी का। इसके अलावा हमें मैसेज भेजा है राशिद हुसैन अंसारी जी ने, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी जी ने लिखते हैं, प्यारी सिस्टर आरजे दुर्गेश सरस्वती, आपको प्यार भरा आदाब। हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। किसी भी सदाबहार नगमे में हमें शामिल करें, ज़रूर हम आपको अपने संदेशों में शामिल कर चुके हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी सी दुआओं के साथ, इतने प्यारे से संदेश के साथ। अगला मैसेज हमें भेजा है इंदिरा नगर भवनपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन जी ने। इसके अलावा सदर बाज़ार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा जी ने हमें संदेश भेजा है। अगला मैसेज हमें आया है धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से लिखते हैं, दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन नगमे हमें सुनवा रहे हैं और हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमारे राजस्थान में इस समय बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है और पानी की भी बहुत समस्या है, ऐसे में जल बचाना बहुत ही अनिवार्य है। जी बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, गर्मी वाकई बहुत तेज़ हो रही है, और हम आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि अपना हो सके तो बहुत बहुत ख्याल रखें, और जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये एक और प्यारा सा।

दोस्तों सचमुच बहुत ही प्यारा गीत है। इसकी जो सादगी है इसे खास बना देती है। ज़िंदगी हर दिन आसान नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ इसे खूबसूरत ज़रूर बना देती हैं, और संगीत उन्हीं छोटी खुशियों में से एक है। दोस्तों आपके संदेश हमें लगातार मिलते रहते हैं, और ऐसे ही अगला संदेश हमें मिला है।

जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, नमस्कार दुर्गेश जी, आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, कृपया राज फिल्म से जो भी कस्में खाई थी हमें गाना सुना दीजिए, धन्यवाद। ये संदेश हमें भेजा है पूनम यादव जी ने। दोस्तों अगला संदेश हमें मिला है राजू अग्रवाल विवेक चरण दास गांव चौधरीवास हिसार हरियाणा से। इसके अलावा हमें संदेश मिला है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन फरहान फारिया ताहिरा, किसी भी गीत में शामिल करें जी ज़रूर, हमने आपका संदेश पढ़ लिया है। इसके अलावा हमें अगला संदेश मिला है बिमला अनेजा सतीश अनेजा जी का, जो टी डी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप कालका से हमें संदेश भेज रहे हैं। लिखते हैं डियर प्रोग्राम एंकर ग्रीटिंग फ्रॉम आर साइड। इसके अलावा हमें संदेश भेज रहे हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन वीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित खुराना केशु रिधान खुराना। लिखते हैं किसी भी बहाने हम बचपन से हर केंद्र से जुड़े हैं, नाइस सॉन्ग, हमने सनम को खत लिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा हमें संदेश भेजा है सुदर्शन मुखी जी ने, श्रीमती मंशा यादव जी हमें, दुर्गेश यादव जी, सीमा यादव जी, अन्नू यादव, अरुणेश यादव जी हमें देवकी विहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमें ये संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा हमें संदेश भेजा है संदीप मक्कर ज्योति मक्कर मन्नत मक्कर भरत मक्कर कमला कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। दोस्तों आपके ये जो संदेश हैं हमें सदा प्रेरित करते रहते हैं अपने कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा रूप देने की। और अगला संदेश हमें भेजा है कौशल्या देवांगन रोशनलाल दवंगन हेमलता डिंपल दवंगन ने, लिखा है कि जन जन की वाणी आकाशवाणी आपकी पसंद प्रस्तुतकर्ता जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए आपके संदेशों को हम ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की अपने कार्यक्रम में कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके संदेश बहुत तेज़ी से हमें मिलते रहते हैं तो कई बारी आपके संदेश पीछे छूट जाते हैं, तो आप हमें लगातार मैसेज करते रहिए, हम आपके संदेशों को कभी ना कभी ज़रूर शामिल करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो सुनते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम के साथ साथ ये गीत भी सुनते हैं।

दोस्तों, कुछ गाने ना सच में कभी पुराने नहीं होते, बस हर बार सुनने पर कोई नई याद दे जाते हैं। ज़िंदगी चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो गई हो, दिन में कुछ पल अगर अपने पसंदीदा गीतों के मिल जाए ना, तो खुद ब खुद दिन हल्का लगने लगता है। और यही कोशिश रहती है आपकी पसंद की कि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपकी पसंद के गीतों को बजाते रहें, ताकि आपका दिन हल्का हो जाए और हमें आपके संदेश मिलते रहें। ये संदेश हमें मिला है सुनील पाठक जी का। लिखते हैं, हमेशा खुश खुश रहें जी। मैडम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। और लिखते हैं, मैं बगैर दूध वाली चाय पीता हूँ। अच्छा जी, आप बगैर दूध वाली चाय पीते हैं। अगला मैसेज हमें मिला है, राम राम जी, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी का ये मैसेज हमें मिला है। इसके बाद हमें मैसेज मिला है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से हमें ये मैसेज भेज रहे हैं। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र मोहनी चौहान, रमेश चंद्र चौहान, कल्पित चौहान हमें मैसेज भेज रहे हैं। इसके अलावा हमें अगला मैसेज भेजा है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित यवायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वई देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख जी ने यह हमें मैसेज भेजा है। दोस्तों, आपके संदेश हमें इतनी तेज़ी से मिलते रहते हैं कि कुछ संदेश तो पीछे ही छूट जाते हैं। अगला संदेश हमें मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी जी का, और ये भी हमें किसी भी गीत की फरमाइश के लिए आदेश दे रहे हैं जी। आपके आदेश सराखों पर आते हैं, बजाते हैं, और ये एक और प्यारा सा गीत हम सुन लेते हैं।

वाह, ऐसे ही सच में मूड फ्रेश कर देते हैं ना दोस्तों, और हमारा मूड फ्रेश करते हैं आपके प्यारे प्यारे से मैसेजेस जो हमें भेजा है। ये मैसेज आया है, मेरी प्यारी प्यारी सी सिस्टर जी, मुझसे नाराज़ हो क्या, जल्दी बताइए। प्रोग्राम के पसंद में आप बहुत ही अच्छे खूबसूरत गीत बजा रहे हैं, हमारी ईमेल भी ज़रा शामिल कर लीजिए प्रोग्राम में। अपनी पसंद का कोई भी मीठा मीठा गीत सुना दें जो आपको बहुत पसंद हो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये प्यारा सा हमें मैसेज भेजा है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप कोकलानी जी ने, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, अर्शप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, आशा गोगलानी, सोनिया कालका, वेप्रा शर्मा, किरण ठाकुर जी ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे से मैसेज के लिए। अगला मैसेज हमें आया है दुर्गेश जी, प्यार भरा नमस्कार, कब से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे मेल कहाँ गायब हो गए। जी ये मैसेज हमें भेजा है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया जी ने। इसके अलावा अगला मैसेज हमें आया है, मैडम जी प्यार भरा आदाब, बेशुमार मोहब्बत, इस तपती गर्मी के मौसम में कोई भी गीत ज़रूर सुना दें। जी हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी जो गीत हम सुनाएं वो बहुत ही प्यारा सा सुनाएं। एक्चुअली हमारे पास मैसेजेस आपके बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और हमारे मैसेज आप तक। अगला मैसेज हमें मिला है, बहन जी हमें भी शामिल करें, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने हमें मैसेज भेजा है। इसके अलावा हमें भेजा है मैसेज अहमद भाई फूल वाले जी ने किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहन दास, आशा देवी जी ने भी हमें कोई भी गीत सुनाने की फरमाइश के साथ एक मैसेज भेजा है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका कोरवाल और भानु प्रकाश जी ने भी हमें ये मैसेज भेजा है। इसके अलावा हमें मैसेज आया है कमाल करते हैं आप दोनों उद्घोषक, कुछ श्रोताओं का नाम रोज़ाना 2003 बार लिया जाता है परंतु मैं एक बार भेजती हूँ तो भी नहीं आता। नई फरमाइश पूरी थी जी, आप ज़रूर हमें कोई भी फरमाइश भेजें, हम कोशिश करेंगे आपको ज़रूर शामिल करें। ये हमें मैसेज भेजा है मधु किरण जी ने। इसके अलावा हमें अगला, अब मुझे खुशी है कि अब आपको ज़रूर खुशी हुई होगी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, अपने कार्यक्रम में आपको शामिल कर लिया है। अगला मैसेज हमें मिला है माहिरा मलिक जी का, मैडम जी प्यार भरा आदाब, बेशुमार मोहब्बत। जी ज़रूर, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, धीरे धीरे हमारा आज का ये संगीत भरा सफ़र अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और उम्मीद है कि ये गीत आपके दिल में थोड़ी मुस्कान और थोड़ी ताज़गी ज़रूर छोड़ जाएंगे, क्योंकि अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा है और आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। तो चलते चलते आइए आपको ये प्यारा सा गीत और सुनवा देते हैं।

0: तो दोस्तों इसी खूबसूरत गीत के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति, अपना और अपने को आप बहुत ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। मैं हूं आपके अपने साथी दुर्गेश सारस्वत, नमस्कार। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों से जुड़े लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह

0: में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
1: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। यह स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 874 अंक के उछाल के साथ 76,289, जबकि निफ्टी 264 अंक बढ़कर 23,983 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 258th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism. The External Affairs Minister said that both the nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. He said that many convergences make both nations effective strategic partners in multiple domains. US President Donald Trump dialed US Ambassador to India Sergio Gaur during an event celebrating America's 250 years of independence at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Mr. Trump described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated that ties between the two nations had never been so close. Mr. Trump said he loves India and even called himself a big fan of PM Modi. Mr. Trump said India can count on him 100%. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Yong,

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके कार्यक्रम हमारी बेड़िया में, और आशा करती हूँ कि आप भी हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके लगातार आते फोन कॉल हम सभी के लिए सराहनीय है, और यही हमें उत्साहित भी करते हैं कि आप इस पड़ाव और पल में हमारे साथ हैं। सच में हमें बेहद अच्छा लगता है आप हमारा कार्यक्रम बड़े चाव से सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, हमें पत्र भी लिखते हैं, और आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आशा करते हैं आगे भी आप इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, उससे पहले आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
0: तो श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे की पड़ाव की ओर, जिसका शीर्षक है अंधेरे से उजाले की ओर।

0: दोस्तों, नशा एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान के शरीर से पहले उसके सपनों को मार देता है। नशा केवल एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को सजा देता है। घर की हंसी कब रोने में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आज की ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने नशे के अंधेरे में अपनों को खोया और फिर उसी अंधेरे को हरा कर उजाले का रास्ता चुना। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपके आसपास, आपके पड़ोस, शायद आप ही के घर में घट रही हो, जो इंसान से उसका विवेक और परिवार से उसकी मुस्कान छीन लेता है। नशे की आवाज घर की शांति को चीर देती है। सुबह की शुरुआत भी चिंता के साथ होती है जब घर में खुशियों से ज्यादा समस्याएं बोलती हैं।
1: मोहन, फिर शराब पीकर आ गए हो? बच्चों की फीस बाकी है, घर पे राशन नहीं है।
2: बस बस, मुझे मत सिखाओ, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं।
1: राधा, आज सब्जी मत बनाना, नमक रोटी ही से काम चला लेंगे।
3: दीदी, कब तक ऐसे जिएंगे हम? हर दिन समझौता, हर रात डर।
1: मजबूरी है राधा, जब घर का मुखिया ही रास्ता भटक जाए तो?
3: दीदी, हर दिन यही होता है, ये नशा हमें खत्म कर देगा। कभी कभी लगता है दीदी, हम भी उसी नशे में डूब रहे हैं बिना पिए।
1: राधा, आज फिर चावल कम पड़ गए।
3: दीदी, महीने भर का बजट बिगड़ गया है।
2: खाना मिलेगा या नहीं?
1: मोहन, बच्चों के सामने तो मत चिल्लाओ।
2: अरे, आज खाना ठंडा है क्या?
1: रोज शराब, गर्म रहती है मोहन, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है।
2: ताना मत मारो, मैं बार मर मर के कमाता हूँ।
3: जी चाची, कमाई से ज्यादा तो शराब की बोतल दिखती है।
2: मेरी जिंदगी है, तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले?
1: हम तुम्हारे अपने हैं मोहन, और अपने ही सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं।
4: नमस्ते बहन जी, आज गांव में नशा मुक्ति अभियान की बैठक है। गांव में नशा मुक्ति शिविर लगने वाला है। सरकार मुफ्त इलाज और काउंसलिंग दे रही है।
1: मुफ्त? हमें तो लगा ये सब बड़े शहरों के लिए होता है। सच? क्या कोई रास्ता है इस अंधेरे से बाहर निकलने का?
4: दीदी, जिला नशा मुक्ति केंद्र में दवा, काउंसलिंग सब फ्री है। और हाँ दीदी, अगर चाह हो तो आज नहीं रुकें, कल तो बहुत देर हो जाएगी।
3: और अगर कमाई रुक जाए तो?
4: मनरेगा योजना है ना, रोजगार मिलेगा, बच्चों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति भी।
1: मतलब सरकार भी हमारे साथ खड़ी है?
4: हाँ दीदी बिल्कुल, बस पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा।
0: काउंसलिंग के बाद मोहन बदला हुआ दिखता है।
2: सब मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं? क्या सच में मेरी गलती है? मैं क्या बन गया हूँ? मेरे कारण मेरे अपने मुझसे डरते हैं? क्या यही मर्दानगी है? मैं कहाँ गलत हो गया? अगर आज भी नहीं सुधरा तो कल मुझे माफ करने वाला भी कोई नहीं होगा।
0: जब इंसान खुद से बात करने लगे तो समझो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
2: मैं बदलना चाहता हूँ,
1: ये मेरी सबसे बड़ी जीत है।
0: काउंसलिंग के बाद मोहन।
2: सीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नशे में अपना वर्तमान भी खोया और भविष्य भी।
1: गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है मोहन।
3: आज मेरा

0: आज फिर मन कर रहा है।
1: एक घूंट ने आपको यहाँ तक पहुँचाया था, अब एक फैसला आपको बचा सकता है जीजाजी। अगर मन डगमगाए तो याद कर लेना।
2: मोहन, आज अगर रुके तो हमारे बच्चे एक नई सुबह को देखेंगे।
0: हर दिन एक युद्ध है राधा, लेकिन आज हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब नहीं।
2: हम तुम्हारे साथ हैं मोहन, इस बार सच में।

0: 6 माह बाद मोहन काम पर जाने को तैयार, आशा पढ़ाई में व्यस्त।
1: आज मैंने समाज सेवा का कोर्स ज्वाइन किया है, मैं दूसरों को भी नशे से बचाऊंगी।
2: अगर मेरी कहानी किसी को बचा सके तो मेरा संघर्ष सफल हो जाएगा।
1: मैं समाज सेवा में जाना चाहती हूँ
2: ताकि कोई और मेरी तरह ना गिरे।
3: मोहन, आज मनरेगा का काम कैसा रहा?
2: मेहनत की कमाई है सीमा, और सुकून भी।
4: बच्चों की छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भर दिया गया है।
1: और दीदी, आज आंगनवाड़ी मीटिंग में नशा विरोधी अभियान की तारीख तय हुई है।
2: अगर सहारा ना मिलता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता।
0: श्रोतो, नशा कोई स्टाइल नहीं, ये एक धीमी मौत है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदला जा सकता है। आज नहीं तो कभी नहीं, नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। हर अंधेरे में एक दिया होता है, बस जरूरत है उसे जलाने की। रेडियो पर ना सुनाई देने वाला संघर्ष असल जिंदगी में बहुत शोर मचाता है। जब परिवार साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ी लत भी हार जाती है। श्रोतो, जिला नशा मुक्ति केंद्र और मनरेगा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। जिला नशा मुक्ति केंद्र, आप सभी जानना चाहेंगे कि ये क्या है। ये भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हैं, जो जिले स्तर पर होते हैं। यहाँ पर मुफ्त इलाज, डॉक्टर द्वारा जांच, काउंसलिंग, जिसे आप लोग मानसिक सलाह के रूप में जानते हैं, जहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ वे परिवार को मुफ्त सलाह भी दी जाती है। कुछ जगहों पर कुछ दिन रहने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अब सवाल आता है कि वहाँ कैसे जाएं? इसके लिए आप अपने जिले के सरकारी अस्पताल जाएं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है। वहाँ आप अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र साथ ले जाएं। डॉक्टर या काउंसलर से मिलकर वहाँ पर इलाज आपका शुरू किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिसे 1446 के नाम से जानते हैं। ये सरकारी टोल फ्री नंबर है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 1446, जिसे हमारी भाषा में हम बोल सकते हैं 1446। यहाँ से आपको आपके जिले के नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी मिलती है, जहाँ इलाज, दवा और सलाह सब कुछ मुफ्त मिलता है। दूसरा, आपने मनरेगा योजना के बारे में सुना होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि ये क्या है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

0: के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम मिलने की गारंटी दी जाती है। और इसमें किसे काम मिलता है वो भी मैं बता देती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वयस्क व्यक्ति, जिसमें पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, नशा छोड़ने के बाद काम पाने का बेहतरीन साधन है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि काम कैसे मिलेगा। इसमें पहला स्टेप होता है, आपका एक कार्ड बनवाया जाएगा जो ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से बनता है। उसके बाद वह सचिव के पास जाता है, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपकी एक फोटो होती है। जब मनरेगा कार्ड बनता है, उसके बाद काम की मांग कर सकते हैं। आप पंचायत में जाके बोलिए कि मुझे मनरेगा में काम चाहिए। 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य होता है। किस प्रकार के काम इसमें होते हैं, जैसे सड़क का निर्माण, तालाब की खुदाई, नाली या मिट्टी भराई, वृक्षारोपण, आपके आसपास के स्कूल या आंगनबाड़ी से जुड़े काम। मजदूरी का भुगतान सीधा आपके बैंक से खाते में आता है। श्रोताओ, ये सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, जो हम जानते हुए भी जिनका लाभ हम नहीं उठा पाते। तो श्रोताओ, मैं आशा करती हूँ आज की इस कहानी ने आपको जरूर जागरूक किया होगा। दोस्तों, इस विषय से जुड़े हुए आप अपने अनुभव हमसे जरूर साझा कीजिए।
1: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता, कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी दिल्ली का यह इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 11:30 हुए हैं, सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंचरी में राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा का गाया राग मियां की तोड़ी। आपके साथ तबले पर हैं पंडित शैलेंद्र मिश्रा और हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं जाकिर ढोलपुरी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुरमंजरी के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा का राग मियां की तोड़ी। आपके साथ तबले पर थे शैलेंद्र मिश्रा और हारमोनियम पर थे जाकिर धौलपुरी। और अब से कुछ क्षणों में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।

0: लिविंग ब्रिज।
1: अमेरिका के 250वीं स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. Union Home Minister Amit Shah has said the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janajati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights.
3: Narendra Modi Sarkar ke Guru Mantri ke nate.
4: As the Home Minister of the Narendra Modi government, I want to make it clear that no restriction of the UCC will apply to the tribal world or any tribal individual. No violation of tribal rights will occur because of the UCC. In the 2 states where the Bharatiya Janata Party is in power, Gujarat and Uttarakhand, we have implemented the UCC, and by making special provisions, the Narendra Modi government has worked to keep all the tribal communities out of the purview of the UCC.
2: The Home Minister also said the tribal welfare budget, which stood at 28,000 crore rupees during the Congress-led government, has been increased to 1,50,000 crore rupees under the Narendra Modi government. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The External Affairs Ministry said the leaders will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing initiatives and other international issues of mutual concern. External Affairs Minister Dr.

0: घर आंगन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं। अभी आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन और मैं हूँ आपके साथ मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। तो शुरुआत करते हैं भारत कोकिला सरोजनी नायडू के गूंजते हुए शब्द के साथ। हम आगे बढ़ते हैं ऊंचाइयों की ओर ताकि अपने भीतर छुपी रोशनी को पहचान सके। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं है, ये उस सफर का नाम है जहां हर कदम पर हमें अपने और करीब ले जाता है। कभी उम्मीद बनकर, कभी हौसला बनकर और कभी एक छोटी सी आवाज़ बनकर जो कहती है कि चलते रहो। तो आज इस नए दिन में थोड़ा सा आसमान अपने नाम कीजिए, थोड़ा सा विश्वास आपके साथ रखिए और देखिए आपकी अपनी रोशनी आगे का रास्ता दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सुनते रहिए घर आंगन, बने रहिए हमारे साथ।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी पतंग। और दोस्तों, ये सिर्फ आवाज़ नहीं है, ये यादों की वो नदी है जो पीढ़ियों को बहाते हुए आज तक आ रही है। कभी सुबह की शुरुआत बनी, कभी रातों की तन्हाई का साथी। ये वही जादू है जिसे हम कहते हैं आकाशवाणी। 90 वर्षों का ये सफ़र केवल समय की गिनती नहीं है, बल्कि उन अनगिनत आवाज़ों की कहानी है जिन्होंने देश के हर कोने में अपनी पहचान छोड़ी। जब देश आज़ाद हुआ तो उसकी पहली सांस रेडियो की तरंगों पर गूंजी। जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक संबोधन या हर सुबह की शुरुआत, ये आकाशवाणी है कि भरोसेमंद स्वर से रेडियो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। अगर कार्यक्रमों की बात करें तो आकाशवाणी ने मनोरंजन, ज्ञान और संस्कृति का ऐसा संगम बनाया जो आज भी यादों में जिंदा है। हवा महल जिसके नाटकों ने कल्पना को पंख दिए, जयमाला जिसने हमारे सैनिकों तक देश का प्यार पहुंचाया, बाल मंडली और बाल सभा जहां बच्चों की दुनिया खिलखिलाती थी, युवाणी जिसने युवाओं को अपनी बात कहने का मंच दिया, फार्म एंड होम जिसने किसानों को नई दिशा दी, समाचार और समाचार प्रभात जिनकी विश्वसनीयता आज भी मिसाल है, और फिर वो खास कार्यक्रम छाया गीत, विविध भारती संगीत सरिता आपकी फरमाइश, हर शो हर धुन जैसे किसी अपने की चिट्ठी हो। लेकिन आकाशवाणी की असली ताकत रही उसकी आवाज़ें, वो आवाज़ें जो सुनते ही भरोसा जगा देती थी। देवकी नंदन पांडे की गंभीरता, वरुण हल्दर, लोटिका रत्नम की गरिमा, मेलविन डिमेलो की गूंजती हुई प्रस्तुति, इन सब ने मिलकर शब्दों को सिर्फ सूचना नहीं एहसास बना दिया। और संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार जैसे स्वर आकाशवाणी के जरिए हर दिल तक पहुँचे। आज भी जब कहीं से वो परिचित स्वर सुनाई देता है, ये आकाशवाणी है, तो लगता है जैसे बचपन, यादें और अपनापन सब एक साथ लौट आए हो। 90 वर्षों की ये यात्रा हमें सिखाती है कि तकनीक बदल सकती है, माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन सच्ची आवाज़ हमेशा दिल तक पहुंचती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म छोटी सी बात।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और दोस्तों, सशक्तिकरण सिर्फ शब्द नहीं है, ये परवरिश का तरीका है। ये बचपन से शुरू होता है, जब हम उसे ये नहीं कहते कि तू पराई है, बल्कि ये कहते हैं कि तू हमारी ताकत है और हमेशा रहेगी। सबसे पहले बेटियों को सिखाएं मानसिक सशक्तिकरण। बेटियों के दिमाग में ये कभी मत भरिए कि उनकी अंतिम मंजिल सिर्फ शादी है। उन्हें सिखाइए कि उनकी पहचान, उनके सपने, उनकी मेहनत किसी रिश्ते

पहले से कम नहीं है। उन्हें फैसला लेना सिखाइए, सवाल करना सिखाइए और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा करना सिखाइए। फिर आता है शारीरिक सशक्तिकरण। बेटी है, नाजुक है, ये सोच बदलनी होगी। उसे खेल के मैदान पर उतरने दीजिए, उसे दौड़ने गिरने उठने दीजिए, उसे सेल्फ डिफेंस सिखाइए ताकि वो डर कर नहीं डट कर जीना सीखे। लेकिन सिर्फ ताकत ही नहीं, उसे भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाइए। उसे ये समझाइए कि रोना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन हर मुश्किल में टूट जाना भी ज़रूरी नहीं है। उसे अपनी भावनाओं को समझना, संभालना और व्यक्त करना सिखाइए। यही है असली इमोशनल इंटेलिजेंस। और सबसे ज़रूरी, उसे ये यकीन दिलाइए कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, उसका घर, उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ये भरोसा उसे हर डर से बड़ा बना देगा। बेटियां तब मजबूत बनती हैं जब समाज नहीं, घर उनके साथ खड़ा होता है। तो आइए आज से अपनी बेटियों को सिर्फ अच्छे संस्कार ही नहीं, मजबूत सोच, मजबूत शरीर और मजबूत आत्मविश्वास भी दें। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हर बेटी ये कह सके, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं, मैं अपनी ताकत हूँ।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म ज्वेल थीफ से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
0: और दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे समय की उस दहलीज पर जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में सांस लेता है। ओरछा, मध्य प्रदेश का एक छोटा, शांत और कुछ हद तक अनदेखा शहर। यही शहर अपने भीतर छुपाए बैठा है ऐसे अनमोल रत्न जो आज भी समय को चुनौती देते हैं। इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है ओरछा किला, एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि सोच, विज्ञान और कला के अद्भुत मेल से बना है। 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजाओं द्वारा निर्मित यह किला आज भी उतना ही मजबूत है। जब आज की आधुनिक इमारतें कुछ दशकों में ही थक जाती हैं, तब ओरछा का किला सदियों से अडिग खड़ा है। यहाँ की जहांगीर महल, जिसे बनाने में पूरे 22 साल लगे, इसके डिजाइन में हवा और रोशनी का एक ऐसा संतुलन है जो बिना किसी मशीन के तैयार किया गया है। सच में यह आज के स्थापत्य कला को भी चुनौती देता है। और राजा महल की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स जैसे हर दीवार कोई कहानी सुना रही हो। इतिहास यहाँ सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। और इसी शहर का एक अनमोल रत्न लक्ष्मी नारायण मंदिर, किले जैसी बनावट और भीतर की भित्ति चित्रकला इसे बेहद खास बनाती है। और इसी कड़ी में आता है भव्य चतुर्भुज मंदिर। ऊंचे ऊंचे शिखर, महलों जैसी बनावट, यह मंदिर किसी किले से कम नहीं लगता। इसकी ऊंचाई और विशालता देखकर आज भी हैरानी होती है कि उस समय इतनी भव्य रचना कैसे संभव हुई होगी। बेतवा नदी के किनारे खड़ी ओरछा की शाही छतरियाँ, ये राजाओं की स्मृति में बने स्मारक होते हैं, आज भी शान से खड़े हैं। जब ढलते सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास फिर से जीवित हो उठा हो। दोस्तों, ओरछा सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि वो जगह है जहां हर मोड़ पर इतिहास छुपा है अनमोल रत्नों के रूप में। आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तब ओरछा हमें सिखाता है कि असली अद्भुत वही है जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जाए। तो अगली बार जब आप कुछ नया देखने की सोचें, तो इस शांत से शहर को जरूर याद कीजिएगा। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कहती है।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, फिल्म थी प्रेम नगर।
1: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
2: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
1: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
2: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
0: और अब एक कहानी रंगों, परंपरा और उस अदम्य आत्मविश्वास की जिसने एक साधारण स्त्री को असाधारण बना दिया। यह कहानी है पद्मश्री से सम्मानित महासुंदरी देवी की और उनकी पहचान बनी कला मधुबनी पेंटिंग की। बिहार के मिथिला क्षेत्र की मिट्टी में जन्मी महासुंदरी देवी बचपन से ही कला को अपनी सांसों में महसूस किया। उस समय न तो बड़े बड़े कैनवस थे, ना ही आधुनिक रंग, बस दीवारें थीं, आंगन था और प्रकृति से मिले रंग। उन्होंने सीखा कि हल्दी से पीला, काजल से काला और फूलों से लाल रंग कैसे बनाया जाता है। उनके हाथों में जैसे जादू था, हर रेखा एक कहानी कहती थी, हर आकृति में संस्कृति सांस लेती थी। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब यह पारंपरिक कला धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, लोग इसे भूलने लगे। तभी महासुंदरी देवी ने ठान लिया कि वो इस कला को मिटने नहीं देंगी। उन्होंने घर घर जाकर महिलाओं को सिखाया, कागज पर मधुबनी को उतारने की शुरुआत की और इस लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बनाई पेंटिंग्स में देवी देवता, प्रकृति, विवाह संस्कार सब कुछ जीवंत हो उठता था। ये सिर्फ चित्र नहीं थे, यह एक पूरी संस्कृति की जीवित कहानी थी। उन्होंने मिथिला हस्तशिल्प कलाकार औद्योगिक सहयोग समिति की स्थापना की, जिसने कलाकारों और हस्तशिल्प के विकास को नई दिशा दी और वर्ष 1982 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें चित्रकला की लिविंग लेजेंड माना जाता था और वर्ष 2011 में भारत सरकार ने उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। मधुबनी के साथ साथ उन्हें मिट्टी, पेपरमेश, सूजनी और सिक्की शिल्प में भी विशेष निपुणता हासिल थी। लेकिन असली सम्मान उन्हें तब मिला जब उनकी कला ने हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। महासुंदरी देवी हमें सिखाती हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए बड़े साधकों की नहीं बल्कि बड़े हौसलों की जरूरत होती है। रंगों से लिखी एक कहानी, मिट्टी की खुशबू में बनी निशानी, नन्हे से आंगन से उड़ान भरी एक स्त्री ने दुनिया को पहचान दी।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म माया से। और गर्मियों की तपती दोपहर में जब सूरज जैसे आग बरसा रहा हो, तब हमारे पारंपरिक पेय सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाते बल्कि शरीर को अंदर से ठंडक और ताकत भी देते हैं। तो आइए देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी ही देसी हेल्दी ड्रिंक्स की झलक लेते हैं। वरियाली शरबत गुजरात से है। सौंफ से बना ये शरबत पेट को ठंडक देता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है। इमली का अमलाना राजस्थान से। खट्टा मीठा इमली का ये पेय लू से बचाने में बेहद असरदार माना जाता है। पानकम दक्षिण भारत से। गुड़, काली मिर्च और इलायची से बना ये ड्रिंक शरीर को एनर्जी देता है और हीट स्ट्रोक से भी बचाता है। सत्तू का नमकीन शरबत यूपी और बिहार से। प्रोटीन से भरपूर ये देसी ड्रिंक तुरंत ताजगी और ताकत देता है। आमपोड़ा शरबत बंगाल। भुने हुए कच्चे आम से बना ये शरबत गर्मी में ठंडा का बेहतरीन उपाय है। रागी अंबाली कर्नाटक से है। रागी से बना ये पेय कैल्शियम और फाइबर से भरपूर है, पेट के लिए बहुत ही हल्का और पौष्टिक है। सोल कढ़ी कोंकण से। नारियल और कोकम से बना ये ड्रिंक पाचन में मदद करता है और शरीर को ठंडा रखता है। जिगर ठंडा तमिलनाडु से। दूध बादाम और शरबत ये से ये बना ठंडा पेय दिल और दिमाग दोनों को ही सुकून देता है। तो अब बात करते हैं कोंकण की खास और बेहद ताजगी भरी सोल कढ़ी की पूरी रेसिपी की। तो इसके लिए आपको चाहिए कोकम, भीगा हुआ ताज़ा नारियल का दूध, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, नमक।

नमक और हरा धनिया। सबसे पहले भीगे हुए कोकम को हल्का मसल कर उसका खट्टा पानी निकाल लें। अब एक मिक्सर में लहसुन, जीरा, हरी मिर्च को पीस लीजिए। इस पेस्ट को नारियल के दूध में मिलाएं, फिर उसमें कोकम का ठंडा पानी डालें। स्वादानुसार नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। ऊपर से हरा धनिया डालकर इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि गर्मियों में शरीर को संतुलित रखने का एक प्राकृतिक तरीका है। और दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतज़ार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले, मनमोहन सिंह और किशोर कुमार को फिल्म लावा से। और दोस्तों कहते हैं खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, दिल खुश करने के लिए भी होता है, लेकिन जब यही खाना कैमरे के सामने आता है तो वो एक आर्ट बन जाता है, कला बन जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं कैसे अनोखे करियर की, जो स्वाद, खूबसूरती और रचनात्मकता तीनों का संगम है, फूड स्टाइलिंग। जब आप किसी विज्ञापन में परफेक्ट दिखता हुआ बर्गर, सॉफ्ट गुलाब जामुन या भाप छोड़ती हुई चाय देखते हैं तो वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो एक कलाकार की मेहनत होती है। इस कलाकार को कहते हैं फूड स्टाइलिस्ट। फूड स्टाइलिस्ट का काम होता है खाने को इस तरह से सजाना कि वो कैमरे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। कई बार इसके लिए छोटे छोटे ट्रिक्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए मैश्ड पोटैटो या चाय में भाप दिखाने के लिए कॉटन। अब सवाल ये है कि क्या ये करियर आपके लिए सही है? अगर आपको खाना बनाना पसंद है, रंगों और प्रेजेंटेशन की समझ है और कैमरे के पीछे की दुनिया आपको आकर्षित करती है तो फूड स्टाइलिंग आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। करियर की शुरुआत आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट से कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया शूट्स, फूड ब्लॉग्स या फिर लोकल ब्रांड्स के साथ काम करके। धीरे धीरे अनुभव और पोर्टफोलियो मजबूत होता है और फिर बड़े विज्ञापन, मैगजीन और टीवी कमर्शियल्स तक का रास्ता खुल जाता है। आप होटल मैनेजमेंट, कुकरी कोर्स या फोटोग्राफी में डिप्लोमा लेकर भी इस फील्ड में आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है आपकी क्रिएटिव सोच और लगातार अभ्यास। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस करियर को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। आप अपना काम दुनिया को दिखा सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर कुछ नया करने का जुनून है और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बनाए खाने को सिर्फ खाएं नहीं बल्कि उसे देखकर ही वाह कह उठें, तो फूड स्टाइलिंग आपके लिए खूबसूरत और रचनात्मक करियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर प्लेट एक कैनवस है और हर डिश एक कहानी।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म गाइड से, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे छोटे से ख्याल की जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून ला सकता है। घर का एक कोना सिर्फ अपने लिए सजाना। जी हाँ, हम सबके घर में कई कमरे होते हैं, कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन क्या उस घर में हमारा अपना एक कोना होता है? एक ऐसा कोना जहाँ आप सिर्फ आप हों, ना कोई काम की चिंता, ना किसी की उम्मीद का बोझ। ये कोना बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस एक छोटी सी जगह जहाँ आपकी पसंद की खुशबू हो, हल्की सी रोशनी और आपके मन को सुकून देने वाली चीज़ें हों। और सोचिए, उस कोने में रखिए आपके पसंद के कप, कुछ फ्लेवर्ड टी या कॉफ़ी, ताकि जब भी आपका मन करे आप वहीं बैठकर अपने साथ एक प्याली सुकून की पी सकें। दीवार पर लगी हो आपकी पसंदीदा तस्वीरें, वो लम्हे जो आपको मुस्कराने की वजह देते हैं, परिवार, दोस्त या आपके अपने खूबसूरत पल, एक आरामदायक कुर्सी, पास में आपके पसंदीदा किताबें, एक डायरी, सुबह की चाय उसी कोने में बैठकर पीजिए, या फिर दिन भर की थकान के बाद कुछ पल वहीं खुद से बातें कीजिए। आप वहां पे लिख सकते हैं या फिर चुपचाप बैठकर अपने विचारों को महसूस कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटी सी जगह आपको सबसे ज़्यादा सुकून देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कोना नहीं है, ये आपका अपना सेफ स्पेस है जहाँ आप खुद को समझते हैं, संभालते हैं और फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। याद रखिए, जब आप खुद के साथ अच्छा समय बिताते हैं तो आप दूसरों के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं।

अभी हम सुन रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म कालिया से। इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति यहीं तक, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा

0: निकालेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first round of the civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying it was sad that the National Testing Agency, NTA, had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe sought responses from the Centre, the NTA and the CBI, on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said India and the US must always be clear about zero tolerance for terrorism.
2: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
1: The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio will participate in the meeting. External Affairs Minister S. Jayashankar will preside over the meeting. The External Affairs Ministry said leaders will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing initiatives and other international issues of mutual concern. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. Millions of pilgrims from across the world, including India, are converging at Mina in Saudi Arabia as the annual 5-day Hajj pilgrimage began today amidst regional tension in West Asia. The pilgrims began their journey from the holy city of Mecca to assemble in the tent city of Mina. Nearly 1,75,000

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और ये वो समय है जिस समय का रहता है आप सबको इंतज़ार, और हम लेकर आते हैं प्रोग्राम आपकी एक ही फिल्म से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, क्योंकि आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये होता रहता है क्योंकि इतनी गर्मी है, जब इंसान इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा तो शायद हम कह सकते हैं कि हमारी जो मशीनरी है वो भी शायद बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। तो प्रोग्राम हम शुरू करें। आपको मैं बता दूं कि आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और एक ही फिल्म, जहाँ हम आपके लिए चुन चुन कर ऐसी फिल्में लेकर आते हैं जो आपका मनोरंजन तो करती ही हैं लेकिन कुछ बातें उनके साथ ऐसी भी जुड़ी होती हैं जिनको जानने के बाद हमारा दिल ये कहता है कि आह क्या फिल्म थी। कहते हैं ना कि ज़िंदगी की राहों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती बल्कि हमारे दिलों में बस जाती हैं। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनका दर्द हमारा दर्द बन जाता है, जिनकी मुस्कान में हमें अपनी खुशी दिखाई देती है और जिनकी अधूरी मोहब्बत हमारी आंखों को भी नम कर जाती है। तो आज के इस सफ़र में हम बात करेंगे एक ऐसी कालजयी फिल्म जिसमें प्यार, तकदीर और त्याग का एक अमर दास्तां लिखी हुई है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने गरीबी से उठकर दौलत की बुलंदियों को छू लिया लेकिन अपने दिल की चाहत को कभी हासिल नहीं कर सका। वो फिल्म कौन सी है ये तो आप इस गीत को सुनकर अंदाज़ा लगा ही लेंगे। तो इस गीत को ध्यान से सुनिएगा और जब आप अंदाज़ा लगा लें तो हमेशा की तरह हमें अपने मेल के ज़रिए जवाब भेज दीजिए। मेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल ये गीत आप सबकी नज़र।

साल था 1976। बॉलीवुड के मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा के भाई कैलाश चोपड़ा एक फिल्म देवदास बनाना चाहते थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा को बतौर डायरेक्टर साइन कर लिया। प्रकाश मेहरा को कहानी को मॉडर्न तरीके से वो चाहते थे कि इस कहानी को वो मॉडर्न तरीके से बनाए, लेकिन मेकर्स इसके लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में ये फिल्म बंद हो गई। प्रकाश मेहरा ने देवदास की कहानी को अपने ही अंदाज में लिखा। उन्होंने राखी को एक पारो का नया रूप दिया, रेखा को चंद्रमुखी बना दिया और नाम दिया जोहरा। कहानी के हीरो का नाम था देवदास, जिनकी जगह लिखा नाम दिया गया सिकंदर। फिल्म का टाइटल हो गया मुकद्दर का सिकंदर। 27 अक्टूबर 1978 को रिलीज हुई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें अमिताभ बच्चन, रेखा, विनोद खन्ना, राखी लीड रोल में थे। फिल्म की स्टोरी विजयकांत शर्मा और स्क्रीन प्ले विजय कौल और डायलॉग लिखे थे कादर खान ने। म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और गीतकार थे अनजान जी। प्रकाश मेहरा ने फिल्म का एक गाना जो अभी अभी आपने सुना, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, जिसे किशोर कुमार और लता दी ने गाया था, ये गाना यमन कल्याण राग पर बेस्ड था। मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म में वैसे तो 6 गाने हैं लेकिन हर गाना एक से एक है। और भी बहुत सारी जानकारी, फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। सिकंदर के रूप में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, विशाल आनंद के किरदार में थे राखी, कामना के रूप में थी रेखा जोहराबाई के रूप में थी रणजीत, जेडी के रूप में थे अमजद खान दिलावर और निरूपा राय फातिमा के रूप में नजर आई थी। इनके अलावा श्रीराम लागू, गोगा कपूर, राम सेठी, दरवेश बाबा, कादर खान, ये सब ने अपनी उपस्थिति इस फिल्म में दर्ज कराई थी और इस फिल्म ने वो कामयाबी हासिल की जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। जी हाँ, मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म में हम आपको बता रहे थे कि 6 गाने थे, 2 गाने जो थे ओ साथी रे और मुकद्दर का सिकंदर, इनके दो दो वर्जन हैं। एक और सबसे दिलचस्प बात थी कि ओ साथी रे इसमें जो किशोर कुमार ने गाया है एक, और दूसरी बार गाया है आशा भोसले ने। और ओ साथी रे फिल्म की जो शुरुआत होती है उसमें राखी पर ये फिल्म ये गाना पिक्चराइज किया जाता है और राखी के बर्थडे पर ये खाना बजता है जब अमिताभ बच्चन उनको गुड़िया देते हैं। अब दूसरी बार जो गाना होता है वो अमिताभ बच्चन जी गाते हैं तो स्टेज पर उनकी किशोर कुमार की आवाज़ सुनाई देती है और ये दोनों ही गाने जो थे वो फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी इनको मिला था। और ये गाने एक तरीके से कह सकते हैं कि टूटे दिल आशिक के दिल की, जो टूटे हुए जो आशिक होते हैं, दिल टूटे हुए उनके दिल की ये पहली पसंद ये गाने थे। और ओ साथी रे गाना जब शुरू हुआ था तो अमिताभ बच्चन साहब को स्टेज पर अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक कहानी सुनानी होती है। वो सीन 16 पेज का था और ये लिखे थे कादर खान ने। जब अमिताभ बच्चन ने 16 पेज का ये सीन देखा तो वो चौंक गए, बोले कि इतना लंबा सीन मैं नहीं कर पाऊंगा। कादर खान जी को बुलाया गया, अमिताभ ने उनसे कहा कि आपने तो मुझे पूरी किताब दे दी है, पूरी किताब लिख के दे दी, मैं इसको कैसे करूंगा। कादर खान ने पूरा सीन सुनाया, अमिताभ जी ने उसे रिकॉर्ड कर लिया और यही सीन इतिहास बन गया। तो जब इस गीत की बात हो रही है तो हम आपको अब यही गीत सुनवाते हैं।

सिकंदर एक अनाथ लड़का है जो बचपन से ही समाज की उपेक्षा और तिरस्कार झेलता है। कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए वो बड़ा होकर एक सफल और अमीर इंसान बन जाता है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी रह जाती है जिसे धन दौलत भी पूरा नहीं कर पाती, और वो कमी होती है प्यार। सिकंदर बचपन से कौशल्या से प्रेम करता है लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। दूसरी ओर तवायफ जोराबाई सिकंदर से बेपनाह मोहब्बत करती है, मगर सिकंदर का दिल कहीं और बसा होता है। प्यार, त्याग और गलतफहमियों के इस त्रिकोण में कहानी आगे बढ़ती है और अंत में दर्शकों को भावुक कर जाती है। फिल्म का संगीत आज भी बहुत लोकप्रिय है और इसके गीत कहानी की जो गीत हैं वो कहानी की आत्मा बनकर उभरते हैं। ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से शामिल रही। फिल्म में रेखा ने जो किरदार निभाया था जोराबाई का, वो आज भी उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ अभिनय में गिना जाता है। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने कई सफल फिल्में दी, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की भावनात्मक कहानी और संगीत ने इसे भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया था और ये फिल्म उस दौर में कई सिनेमाघरों में लगातार महीनों तक चली थी।

फिल्म के मशहूर गीत सबसे पहले जो हमने आपको सुनवाया था सलामे इश्क मेरी जान, इसकी शूटिंग के दौरान रेखा ने जोहरा बाई के किरदार में इतना शानदार अभिनय किया था कि सेट पर मौजूद लोग उनके एक्सप्रेशन और अदाओं को देखकर दंग रह गए थे। कहा जाता है कि निर्देशक प्रकाश मेहरा को ये दृश्य इतना पसंद आया कि इन्होंने कई हिस्सों को पहले ही टेक में ओके कर दिया था। एक और रोचक बात मैं आपको बताती हूँ, फिल्म के कई भव्य सेट जो बनाए गए थे वो पुराने लखनऊ की नवाबी संस्कृति का एहसास देने के लिए विशेष रूप से बनाए गए थे। जोहराबाई की जो कोठी थी उसके सेट पर की गई बारीकी से जो बारीक कारीगरी थी और जो सजावट थी वो इतनी नेचुरल थी, इतनी वास्तविक थी कि फिल्म देखने पर पूरा नवाबी माहौल जो था वो फील होता था। इसी तरीके से फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी शूटिंग बहुत भावनात्मक माहौल में हुई थी। जब अमिताभ बच्चन अपने अंतिम दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे तब सेट पर मौजूद कई कलाकार और कई टेक्नीशियन सच में भावुक हो गए थे क्योंकि फिल्म की कहानी का जो असर था वो सेट की यूनिट पर भी पड़ा था। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म एक फिल्म नहीं थी बल्कि भावनाओं का ऐसा कारवां है जो आज भी समय की धूल से अछूता है। आपके ढेर सारे संदेश भी आ रहे हैं, उनको मैं शामिल करूँगी फिलहाल इस गीत के साथ।

आज ढेर सारे संदेश हैं जिन्हें मैं संक्षेप में पढ़ूंगी क्योंकि वक्त कम है और संदेश बहुत सारे हैं, तो माफी भी चाहूंगी। विजय वीरंगांव गुजरात से अजीत भापसर प्रमीला जी जुड़े हुए हैं। बटिंगा रोड मंडी डावली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया जी हमारे साथ हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल, देवांगन कौशल, हेमलता और डिम्पल जी जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है सतीश अनेजा विमल जी का चंडीगढ़ से आया हुआ है। देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार देव, रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से है। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ हैं। अनिल तामरकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर दिलीप के साथ शिवाजी चौक कटनी से। हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी आरती लवली जी हमारे साथ हैं। जगाराम साहू जी, बबलू साहू, नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। गोविंद वैश्य, दिव्या सुमन कौशल, परिकृतिका, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मसूर हसन हमारे साथ हैं। कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता पिपरिया से जुड़े हुए हैं। डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हैं। साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है सौरा श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जान जी का। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड निखिल कांगड़ा जी हैं। और गोल मार्केट दिल्ली से सुनीता यादव, सीमा, नेहा, प्रियंका जी हैं। पहाड़गढ़ मुद्दानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक जी हैं। और ये संदेश हमारे पास बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद नेहा दीपक जी का आया है। परमीजीत कौर दिलवाग दिलजोत जी पंजाबी वाग दिल्ली से हैं। मोहम्मद सैद अवासी निगत, परवीन श्रीनिवास, सरफराज, पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा परिहार जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुँचा है बबलेश पवार जी का। ढेर सारी जानकारी के साथ पी एस नवानकर, निर्मला जी, नरवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं। सुरेश राठौड़, मंजुला जी

सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भावनाओं का ऐसा सफर है जो हर पीढ़ी के दर्शकों को छू जाता है। इसकी कहानी, संगीत और कलाकारों का अभिनय इसे हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों में शामिल करता है। कभी कभी इंसान मुकद्दर से तो जीत जाता है लेकिन अपने दिल से हार जाता है, और शायद यही सिकंदर की कहानी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस फिल्म को ज़रूर देखा होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा तो हमेशा की तरह यही कहेंगे कि वक्त निकालिए, उस फिल्म को ज़रूर देखिए। फिलहाल अब वक्त हो रहा है कि मुझे आपसे अनुमति लेनी है, तो अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। 2:30 पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन विखे पदम पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वोच्च अदालत ने नीट परीक्षा विच वार वार हो रही गलतियां ते चिंता प्रगट की। कहा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद तो सबक नहीं लिया। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग कल नवी दिल्ली च होगी। पेट्रोल की कीमत विच 2.61 रूपये और डीजल की कीमत च 2.71 रूपये प्रति लीटर का वाधा होया। अते मौसम विभाग वालों दिल्ली च अगले 3 दिनों दौरान लू चलन बारे येलो अलर्ट जारी। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भी लू की स्थिति बनी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन विखे 66 खास हस्तियां नूं साल 2026 लई पदम पुरस्कार प्रदान करनगे। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते गृहमंत्री अमित शाह भी इस समारोह च मौजूद रहनगे। अज 2 पदम विभूषण, 6 पदम भूषण अते 58 पदम श्री पुरस्कार प्रदान कीते जाणगे। राष्ट्रपति ने साल 2026 लई 131 पदम अवार्डां नूं मंजूरी दे दित्ती है। इन्हां विच 5 पदम विभूषण, 13 पदम भूषण ते 113 पदम श्री पुरस्कार शामिल ने। बाकी पदम पुरस्कार समारोह दे दूजे दौर च बाद विच प्रदान कीते जाणगे। पदम पुरस्कारां दा ऐलान हर साल गणतंत्र दिवस ते कीता जांदा है। इवकारी नागरिक सम्मान, कला जनहित ते समाज सेवा, साहित ते सिक्ख्या, विज्ञान अते इंजीनियरिंग, व्यापार ते सनअत, दवा ते खेडां दे खेतरां च शानदार प्राप्तियां लई दित्ते जांदे ने। असाधारण ते शानदार सेवावां लई पदम विभूषण, विशेष सेवा लई पदम भूषण ते किसे वी खेतर च महत्वपूर्ण सेवा लई पदम श्री नाल सम्मानित कीता जांदा है। पदम पुरस्कारां लई वांझे अते अनुसूचित भाईचारियां, कबायली भाईचारियां ते दूर दुराडे दे इलाकियां दे लोकां नूं वी चुणिया जांदा है, जो समाज ते राष्ट्रपति बेमिसाल सेवा लई प्रेरणा दिंदे ने। सर्वोच्च अदालत ने नीट परीक्षा विच वार वार हो रही गलतियां ते चिंता प्रगट करदिआं कहा कि यह दुख की गल है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने पिछले पेपर लीक विवाद तो कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस PS नरसिम्हा अते आलोक आराधे दे बेंच ने केंद्र सरकार, NTA अते केंद्रीय जांच ब्यूरो तो उन्हां पटीशनां ते जवाब मंगिआ जिन्हां विच मैडिकल दाखला परीक्षा करवाउण लई NTA दी थां किसे होर मजबूत ते खुद मुख्तियार संस्था नूं लिआउण दी मंग कीती गई है। अदालत ने एजेंसी नूं वीरवार तक हलफनामा दाखल करन दा निर्देश दित्ता है। इस विच पुछा गया है कि पिछले साल एजेंसी दे कामकाज विच सुधार लियाउण लई इसरो दे साबका मुखी के राधाकृष्णन दी अगुवाई वाली कमेटी वल्लों कीतियां गईयां सिफारशां दी पालना कित्थों तक कीती गई है। पटीशनां विच इल्जाम लगाया गया है कि वार वार पेपर लीक होण नाल 22 लाख तों वध विद्यार्थियां दे अधिकार प्रभावित होए ने। पटीशन विच भविख दीआं प्रीख्यावां दी निगरानी वास्ते सर्वोच्च अदालत दे सेवामुक्त जज दी अगुवाई च इक उच पदरी निगरान कमेटी दे गठन दी वी मंग कीती गई है। इस महीने की 3 तरीक नूं होने वाली नीट UG परीक्षा पेपर लीक के इल्जामों तो बाद रद्द कर दी गई सी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तरीक नूं होने वाली सांझी यूनिवर्सिटी दाखला परीक्षा अंडर ग्रेजुएट 226 परीक्षावां नूं मुलतवी कर दिता है। NTA ने कहा है कि यह फैसला सरकारी नोटिफिकेशन मुताबक ईद उल जोहा जां बकरीद की छुट्टी तरीक च बदलाव के मद्देनजर लिया गया। एजेंसी ने दसिया कि प्रभावित उम्मीदवारां लई सोधियां परीक्षा तरीकां का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। सैकेंडरी सिक्ख्या बारे केंद्रीय बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात दीआं बोर्ड परीक्षावां लई उत्तर पुस्तिकावां दीआं स्कैन कीतीआं कापियां प्राप्त करन दी आखरी तरीक अज तक एक होर दिन लई वधा दित्ती है। CBSE ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियां नूं बेनतियां जमा करवाउण लई ढुकवां समां देण लई लिया गया है।

0: मौसम विभाग ने दिल्ली च अगले तीन दिनों दौरान लू वगण बारे येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी विच दिन का तापमान 44 तो 46 डिग्री सैलसियस के दरमियान रहने की संभावना है। अगले दो दिनों दौरान पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वी राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश साहली आंध्र प्रदेश झारखंड उड़ीसा तेलंगाना ते पछमी उत्तर प्रदेश विच भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन विखे पदम पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वोच्च अदालत ने नीट परीक्षा च वार वार हो रही गलतियां ते चिंता जाहिर कीती, कहा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद तो सबक नहीं लिया। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग कल नवी दिल्ली च होगी। पेट्रोल की कीमत विच 2.61 रूपये ते डीजल की कीमत विच 2.71 रूपये प्रति लीटर का वाधा होया। अते मौसम विभाग वालों दिल्ली च अगले तीन दिनों दौरान लू वगण बारे येलो अलर्ट जारी। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भी लू की स्थिति बनी रहेगी। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुणोगे शाम 6:20 ते। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार इम्तिहान के इनकास से मुतालिक कौमी एजेंसी और सीबीआई से जवाब तलब किए हैं और कहा है कि कई हिदायत के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। आसाम असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया गया है। मौसमियात के महकमे ने अगले तीन दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा और तेलंगाना में भी गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज होते हैं जो तीन जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। बाकिया पद्म अवार्ड्स इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनक्किद की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल योम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। यह अवार्ड लोगों के गिराकद्र कामों के एतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट लिटरेचर तालीम खेलकूद दवाएं समाजी काम साइंस और इंजीनियरिंग अवामी उमूर और तिजारत व सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: क्वाड मुल्कों के वज़रा खारजा की मीटिंग कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वज़ीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ारत खारजा ने कहा है कि लीडर मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। मौजूदा इकदामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैन अल-अक़वामी उमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। क्वाड ग्रुप भारत अमरीका ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल है और ये भारत बैरुल काहिल खत्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम पर ख़ास तौर पर तवज्जो मरकूज करने वाले एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत मस्कूरा ग्रुप के मौजूदा सदनशीं होने के नाते इस मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है। साल 2024 में अमरीका में वेलमिंगटन में क्वाड की गुज़श्ता सरबराह मीटिंग में ग्रुप के सरकर्दा रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सिक्योरिटी इश्तराक को वसत देने की खातिर अहम इकदामात का ऐलान किया था। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने में ख़ास तौर पर दिलचस्पी के हामिल हैं। कल नई दिल्ली में अमरीका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने

0: कहा कि भारत और अमरीका को दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिलसिले में हमेशा वाजे रहना चाहिए।
1: We must always be clear.
2: हमें दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिलसिले में हमेशा वादे रहना चाहिए और इसीलिए दहशतगर्दी से निपटने के मामले में हमारा इश्तराक इंतहाई अहम है। आवाम से आवाम के दरमियान रابطے भी हमारे ताल्लुकात में खसूसियत के हामिल हैं क्योंकि इनसे दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी समझबूज में मदद मिली है और इन्हें एक खास मकाम हासिल है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान के इनकाद में बार बार होने वाली कोताही पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ये बात मायूस कुन है कि इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी ने पेपर लीक होने के पहले के तनाज़े से कोई सबक हासिल नहीं किया। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी और मरकजी जाँच ब्यूरो CBI से जवाब तलब किए हैं। इन दरख्वास्तों में मेडिकल दाखिला इम्तिहान के इनेकाद के लिए मौजूदा एजेंसी की जगह एक ज़्यादा मजबूत और ख़ुद मुख्तार इदारा कायम किए जाने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करके उन सिफारिशात पर अमल दरामद की तफसीली जानकारी फराहम करे जो इसरो के साबिक सरबराह के राधाकृष्णन की सरबराही वाली कमेटी ने मस्कूरा एजेंसी के कामकाज को असरनौ तरतीब देने के लिए पिछले साल की थीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आसाम सरकार ने आज रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया। मस्कूरा बिल में एक से ज्यादा शादियां करने पर पाबंदी आयद करने और लिव इन रिलेशनशिप्स के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने की बात कही गई है। मस्कूरा बिल में कहा गया है कि इसका इतलाक आसाम में रहने वाले किसी भी दर्ज फहरिस्त कबीलों पर नहीं होगा। शादी के लिए मस्कूरा बिल में मर्दों की कम से कम उम्र 21 साल और ख्वातीन की 18 साल तय की गई है। कानूनी हकूक के तहफ़ के लिए बिल में शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने की तजवीज़ है जो गुजारे भत्ते, मीरास और शरीक हयात के लिए दीगर कानूनी तहफ़ के ताल्लुक से अहमियत का हामिल रहेगा। रियासत के काबीना वजीर अतुल बोरा ने वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ऐवान में यकसां सिविल कोड आसाम बिल 2026 पेश किया। इस तरह यह बिल पेश करने वाली शिमाल मशरक में आसाम पहली रियासत बन गई है जबकि मुल्क में बीजेपी की सरकार वाली ये ऐसी तीसरी रियासत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बरादरियों को यकसां सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज रहें। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबायली हकूक खत्म नहीं होंगे।
3: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: अजीम इनकलाबी शख्सियत राज बिहारी बोस के यौम पैदाइश पर वजीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि राज बिहारी बोस ने अपनी गैर मामूली तंजीमी सलाहियत के जरिए आज़ादी की जद्दोजहद में एक नई तवानाई पैदा की। मगरबी एशिया में इलाकई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब में मनासिक हज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों आजमीन हज मीना में जमा हो रहे हैं। आज़मीन हज ने मक्का मुकर्रमा से मीना जाने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। वो रात मीना में गुजारेंगे और कल तलबिया का वर्द करते हुए फजर की नमाज के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे जहां हज का रुकन आज़म अदा किया जाएगा। इस साल भारत से तकरीबन 1,75,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करने के लिए वहाँ गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में दिन का टेम्परेचर 44 और 46 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। इधर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिन के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। ऑस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज होने वाला है। इस टूर्नामेंट का बाजाबता आगाज भारतीय वक्त के मुताबिक आज रात 8:30 होगा। अपनी 13 साल की तारीख में पहली मरतबा ये सरकर्दा टूर्नामेंट स्टेवेंजर्स के बजाय

शहर ओस्लो में हो रहा है। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी और सीबीआई से जवाब तलब किए हैं और कहा है कि कई हिदायत के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। आसाम असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया गया है। मौसमियात के महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भी गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 8:30 p.m. IST. For the first time in its 13-year history, the Super Tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo, hosting its matches at the iconic Deichman Bjørvika Public Library. India created history at the International Association of Ultra Runners 24-Hour Asia Oceania Championships held in Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताज़ा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए

0: की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमरीका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार

0: ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही कलाकार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस फिल्मकार की जिसने प्रेम, रिश्तों और परिवार की कहानियों को भव्यता और भावनाओं के साथ बड़े पर्दे पर पेश किया, जिनका आज 25 मई को जन्मदिन भी है। और आपको थोड़ी सी हिंट ये दे दूं कि उनके पिता भी एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे और उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना की थी। तो ये सितारा कौन है आपको पहचानना है, और जब आप हमेशा की तरह पहचान लेते हैं तो पता है ना आपको क्या करना है, संदेश हमें भेज देना है। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल इस प्रोग्राम में प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। हमारे नए श्रोता जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार मैं फिर से अपना मेल आईडी बता दूँ। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। इस पर, इस माध्यम से आप हमारे सफ़र के हम सफ़र बन सकते हैं। तो बताइए आज हम किस सितारे को चुनकर लेकर आए हैं।

जी हाँ, इस गीत को सुनने के बाद आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम किस सितारे की बात कर रहे हैं। आज यानी कि 25 मई 1972 को जन्म हुआ था करण जौहर का। आपके संदेश वैसे बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पहचान गए थे, और क्यों ना पहचाने, इनके जो गाने हैं वो इस तरीके के गाने हैं कि जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते। करण जौहर, जिनका बचपन फिल्मी माहौल में बीता था, क्योंकि इनके पिता का नाम था यश जौहर, जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना की थी। करण जौहर ने मुंबई के ग्रीन लॉन्स स्कूल और HR कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उन्हें फिल्मों, संगीत और कहानी कहने का बड़ा शौक था। करण जौहर ने फिल्म जगत में शुरुआत अभिनेता के रूप में की थी, और 1995 की एक ऐतिहासिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, याद है ना आपको ये फिल्म? इस फिल्म में एक छोटे से किरदार में वो दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की तरफ अपना कदम बढ़ाया, और 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है। इस फिल्म ने रातों रात उनको सफल निर्देशकों की कतार में लाके खड़ा कर दिया, और फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, और आज भी इसे हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में गिना जाता है। तो आप करण जी के बारे में, या फिर इनकी जो फिल्में हैं उनमें से आपको कौन सी ज़्यादा फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है, आप हमें अपने संदेशों के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं इन्हीं की एक और फिल्म, जिसका अभी हमने जिक्र किया, कुछ कुछ होता है का वही टाइटल सॉन्ग।

कुछ कुछ होता है। जी हाँ, 1998 में ये फिल्म आई थी और इसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक सफल फिल्में दी, जिनमें शामिल थी कभी खुशी कभी गम जो कि 2001 में रिलीज हुई थी, कभी अलविदा ना कहना 2006 में आई थी और 2010 में आई थी माई नेम इज़ खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो 2012 में आई थी, दिल है ए दिल है मुश्किल 2016 में, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी 2023 में। अपने बैनर धर्म प्रोडक्शन के माध्यम से करण जौहर ने कई सफल फिल्मों का निर्माण किया। उनके बैनर से अनेक नए कलाकारों और निर्देशकों को भी मौका मिला। जी हाँ, करण जौहर ने कई ऐसे कलाकार हमें इस फिल्म इंडस्ट्री में दिए जो उन्हीं की देन है। सुनते हैं उन्हीं की एक और खूबसूरत सी फिल्म कल हो ना हो से ये गीत।

आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम एक ही कलाकार, और आज हम चुनकर वो सितारा लेकर आए हैं जिन्होंने एक से एक सुपरहिट फिल्म दी, जिनका आज जन्मदिन भी है, करण जौहर। जी हाँ, करण जौहर को केवल फिल्म निर्देशक ही नहीं बल्कि एक सफल टीवी होस्ट के रूप में भी जाना जाता है। उनका चर्चित चैट शो कॉफ़ी विद करण वर्षों से दर्शकों का पसंदीदा रहा है। हो सकता है कि आपने भी इस शो को कई बार देखा हो। करण जौहर को कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है।

फिल्म राजी का ये खूबसूरत सा दिल को छूने वाला गीत हर किसी की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। और आपको बता दें कि करण जौहर, जिन्होंने एक से एक फिल्में दी थी हिंदी सिनेमा में, एक सफल निर्देशक और निर्माताओं में वो शामिल हैं। और इसके साथ ही उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी हैं, शायद आप जानते हैं, और हो भी सकता है कि शायद आप नहीं जानते हो। तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि इनका असली नाम है राहुल कुमार जौहर। ये जुड़वा बच्चों यश और रूही के पिता हैं। 2004 में इनके पिता यश जौहर के निधन के बाद इन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाली और धर्मा प्रोडक्शन को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया। हाल ही के वर्षों में उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन के विस्तार के लिए कई व्यावसायिक फैसले भी लिए हैं। तो देखते हैं कि अब इनके पिटारे में से और कौन कौन सी फिल्में निकलने वाली हैं। फिलहाल तो इन्हीं की एक खूबसूरत सी फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं,

वीरनगांव गुजरात से अजीत भापसर प्रमिला भापसर जी जुड़ चुके हैं। सुदर्शन मुखिया नीता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार जी हैं। और अगला जो संदेश है पहुँचा है ये इंद्रभान सिंह ने पहुँचाया है हम तक, कहाँ से लेकिन ये जगह इन्होंने नहीं लिखी, शायद जल्दी जल्दी में रह गया है। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से मोहम्मद इसाक खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक अफरीन कौसल मोहम्मद जी हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा जी हैं। ईड़ामणि वर्मा तदरेंगी भाटापारा से हैं। नरविश्वनगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर निर्मला विशाल और मलकापुर से नारायण इंगले सोपान ताइडे जी हैं। पहाड़गंज मुल्तीढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन और टिल्लू नायक जी हैं। कैथल हरियाणा से मधु नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी प्रमोद कुमार डूंडी हमारे साथ हैं। और अगला जो संदेश हम तक पहुंचा है गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम इंदिरा सार्थक सचिन नंदिनी शर्मा जी का है। मोहम्मद सैद अब्बासी निगत परवीन शनिवास सरफराज फरदीन सुहान अरजान आवास और परिवार के सभी सदस्य ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। संजय डिगिया नमन डिगिया अपार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन है हमारे साथ में। अगला संदेश हमारे पास पहुँचा है शंकर जाधव जी का और मारहरा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी कुछ और संदेश हैं जिनको हम शामिल करेंगे कुछ देर बाद। फिलहाल इस गीत को आप सुन ही रहे हैं। तो दोस्तों सपनों को रंग देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन करण जौहर ने अपनी जिंदगी के जरिए प्यार दोस्ती और रिश्तों को ऐसे रंग दिए कि वे करोड़ों दर्शकों के दिलों का हिस्सा बन गए। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वे आने वाले वर्षों में भी हमें इसी तरीके से यादगार कहानियां देते रहेंगे, यादगार फिल्में देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है कि आपसे अनुमति ले लूँ, जल्दी ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सितारे के साथ। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 3 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली, पोस्ट खेरथा बाजार, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
3: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
2: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
4: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद।
2: महाराज,

तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्धेशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्धेशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हथगोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंका जनाब।
7: अरे अरे, ये क्या हुआ?
8: अरे बचो,
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
9: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
10: May I come in, sir?
4: Yes, come in.
10: Sir.
4: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
10: सर।
4: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगा।
6: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
4: हाँ हाँ, कहो।
6: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
4: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
6: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
4: गो अहेड यंग मैन।
6: सर।
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
8: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
9: जी सर,
3: हम पूरा ध्यान रखेंगे।
8: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
10: जी जनाब।
4: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
6: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
8: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
8: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
8: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
8: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोग्रांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोग्रांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से

0: पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।
0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज़ ऑन एयर ऐप।

0: श्रोताओ, दिन के 3:30 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।
1: सामीन की खिदमत में सरफराज आलम का पुरखलूस आदाब। रूबरू प्रोग्राम में आप सब का खैर मकदम है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। सामीन, ये खूबसूरत शेर जो अभी आपने सुना, यह शेर था दाग दहलवी का, जो आज ही के दिन 25 मई 1831 को दिल्ली में पैदा हुए और 17 मार्च 1905 को 74 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में वफात पाई। तो आइए आज प्रोग्राम के आगाज में दाग दहलवी की हयात व खिदमात पर एक सरसरी नज़र डालते हैं। सामीन, दाग दहलवी उर्दू ज़बान के उन शायरों में शामिल हैं जिनके अशार अवाम की ज़बान पर राइज हैं। उनके बेशुमार अशार लोगों को आज भी याद हैं, जैसे यह शेर समाअत करें। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सामीन, दाग के ज़माने में ज़बान की दो सतहें थीं, एक इल्मी और दूसरी अवामी। गालिब इल्मी ज़बान के नुमाइंदे थे और दाग की शायरी अवामी थी, वो अवाम से गुफ्तगू करते थे। दाग फितरी शायर थे और उनके मौजूआत में अवाम और ख़वास दोनों की दिलचस्पी ज़्यादा होती है। उनका यह शेर मुलाहिज़ा करें। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। समीन, दाग की ज़बान की दाद तमाम अहले इल्म देते हैं। सादगी उनकी नज़र में ज़बान का हुस्न है। उन्होंने शायरी को पेचीदा तरकीबों, फ़ारसी और अरबी के सकील अल्फाज से बचाया। उनकी शायरी में सीधी सादी ज़बान के साथ सलासत व रवानगी भी है। उन्हें अपनी ज़बानदानी का एहसास भी है। उनका यह शेर देखें। नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो, कि आती है उर्दू ज़बाँ आते आते। सामीन, आइए अब चलते हैं आज के असल प्रोग्राम रू बरू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम किसी अदबी, समाजी या किसी माशी शख्सियात से आपको रूबरू करवाते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनसे बात करें और उनके जो तजर्बात व मुशाहदात हैं उनसे इस्तेफादा करें। तो आज इसी सिलसिले के तहत हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कई दहाइयों तक रेडियो की नशरियात और ड्रामे की दुनिया में अपनी खदमात अंजाम दी। आपने न सिर्फ बेशुमार यादगार ड्रामे प्रोड्यूस किए बल्कि कई नए फनकारों, लिखने वालों और आवाज़ के फनकारों की तरबियत में भी अहम किरदार अदा किया। आइए खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सरफराज अहमद साहब का और उनकी बातचीत से मुस्तफ़ीद होते हैं। आपसे महवे गुफ्तगु हैं रेडियो की एक जानी पहचानी शख्सियत जनाब मुबीन खान।
2: उर्दू मजलिस के रूबरू प्रोग्राम के साथ मैं मुबीन अहमद। सभी सामईन को मुबीन का आदाब। आप सभी को पता है कि रूबरू में हम ऐसी शख्सियत को मधु करते हैं प्रोग्राम में, जिनसे हम वो बातें जानने की कोशिश करते हैं जिनसे एक जो नई नस्ल है वो उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नई चीज़ें जान सके। इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है सरफराज अहमद साहब को, जो नशरियात, जो रेडियो की नशरियात में उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। 50 साल से ज़्यादा हो गए उनको खिदमत देते हुए रेडियो के लिए। सरफराज साहब, आपका हम वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में।
3: शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन साहब।
2: सरफराज साहब, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हम जो नशरियात है आकाशवाणी की, उसके 90 साल पूरे होने के सिलसिले में एक जश्न का माहौल बना हुआ
3: जी,
2: है
3: जी।
2: और उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपको
3: जी।
2: रेडियो ब्रॉडकास्ट में आपने जो सर्विसेज दी हैं, जो आपने खिदमात दी हैं, तो ये जो रेडियो है, रेडियो ब्रॉडकास्ट, आपका जो बचपन रहा होगा
3: जी,
2: तो किस किस्म के प्रोग्राम आप रेडियो पर सुना करते थे?
3: ये हमारा जुनून रेडियो से तकरीबन 1952 से शुरू हुआ, जब उर्दू मजलिस हम सुना करते थे
2: जी।
3: आधे घंटे का प्रोग्राम होता था और इसमें तीन हिस्से होते थे उसके, एक अदबी होता था, एक शायराना होता था और एक म्यूज़िकल होता था जिसमें कव्वाली वगैरह सुना, अक्सर हबी पेंटर की कव्वाली, शंकर शंभू की कव्वाली उसमें होती थी। उसके अलावा सिराज अनवर साहब के लिखे हुए छोटे छोटे खाके उस पर नशर होते थे, जिसमें दिल्ली की टकसाली ज़बान, क्योंकि सिराज अनवर साहब जामा मस्जिद से ताल्लुक़ रखते थे, जामा मस्जिद के इलाके से, उनकी वहाँ फोटोग्राफी की दुकान थी, तो वो वहाँ दिल्ली के कारखानदारों की बातचीत सुना करते थे।
2: तो सामेन, सरफराज साहब से हम बातचीत कर रहे हैं, और सरफराज साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो रेडियो पे तो कम उनकी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन रेडियो प्रोडक्शन के हवाले से जब भी हम कोई प्रोग्राम सुनते हैं तो उसमें प्रोडक्शन का जो पार्ट है, जो हम प्रोग्राम तैयार करते हैं, उसमें सरफराज साहब का अहम रोल रहा है। और सरफराज साहब उर्दू सर्विस से वाबस्ता रहे, उर्दू मजलिस से वाबस्ता रहे, और रेडियो की एक जानी मानी पहचानी जो कह सकते हैं हम कि ऐसी शख्सियत हैं जिनको हर जो शख्स रेडियो प्रोडक्शन के हवाले से जानता है। और आज भी आप रिटायर हुए करीब करीब आपको 20 साल हो गए हैं, और उसके बाद भी आज भी आप एक्टिव हैं और मास मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने हर दौर देखा है। आपने बताया कि बचपन में आपने रेडियो सुना और उर्दू मजलिस के प्रोग्राम सुने, उसके बाद फिर आप रेडियो में आए, तो रेडियो में किस तरीके से जब आप आए और यहाँ पे सर्विस आपने शुरू की, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से आपको पता चला कि रेडियो में भी सर्विस की जा सकती है।
3: असल में क्या था कि मुझे बताया गया था कि इस तरह से उर्दू सर्विस में जगह खाली हैं, आप दरख्वास्त दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे कॉल आ गई, रिटन टेस्ट हुआ और इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया उर्दू सर्विस के लिए। उस वक्त मैं स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर यहाँ पर रखा गया था। उस ज़माने में एक एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और फिर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब मिसेज इंदिरा गांधी ने INB संभाला, तो उन्होंने ये सारे जितने भी स्टाफ आर्टिस्ट थे उन सबको रेगुलर कर दिया
2: जी।
3: तो मुझे आए हुए 6 ही महीने हुए थे कि मैं रेगुलर हो गया
2: जी
3: उर्दू सर्विस के अंदर।
2: उर्दू सर्विस उस वक्त शुरू,
3: उर्दू सर्विस असल में उर्दू सर्विस 15 मई 1965 को आधे घंटे की शुरू हुई थी
2: जी,
3: तजर्बाती तौर पर, और उसको नाम दिया गया था उर्दू प्रोग्राम।
2: मतलब आपका जो सिलेक्शन हुआ था वो उर्दू मजलिस सर्विस के, उर्दू सर्विस के लिए हुआ था जी।
3: जब 16 मई 1966 को पूरा फुल फ्लेज स्टेशन बन गया उर्दू सर्विस, तब मैं आया था। तो उस वक्त सिर्फ एक ही अनाउंसर थे यहाँ पर, मरहूम अंजार अहमद साहब
2: जी,
3: वो अनाउंसर थे। बाद में उसी वक्त मुजीब सिद्दीकी कानपुर से आ गए, उसके बाद दिल्ली से SM शफीक
2: जी,
3: कानपुर से इकबाल वारसी, इस तरह से ये बहुत खूबसूरत आवाज़
2: है, एक कहकशा
3: बन गया, स्टाफ का कहकशा बन गया। उसके बाद जो दूसरे लोग थे, जैसे सलाम मछली शेरी
2: जी
3: अदबी प्रोग्राम देखते थे, KK नैयर, उसके बाद उस्ताद हफीज़ अहमद ख़ान जो म्यूज़िक देखते थे, और महमूद हाशमी जो करंट अफेयर्स देखते थे, रुबै रिजवी
2: जी,
3: तो इस तरह से ये लोग आते चले गए, अमी खल्फी साहब
2: जी,
3: तो ये पूरा एक बहुत ही मज़ा आता था काम करने में।
2: अच्छा,
3: ड्रामे में अनवर खान साहब
2: जी।
3: अच्छा, अनवर खान साहब से पहले कुलदीप अख्तर साहब थे, और जब मैंने ज्वाइन किया जब कुलदीप अख्तर साहब थे और वो रिटायर होने वाले थे।
2: तो आपने प्रोडक्शन का जो काम है वो
3: जी
2: वो किन से सीखा, जो आप जिनको उस्ताद मानते हैं?
3: वो मैंने कभी स्टूडियो नहीं देखा था, कभी रेडियो नहीं देखा था, एक तस्वुर था रेडियो का।
2: जब आपका रेडियो में,
3: लेकिन जब
2: अपॉइंटमेंट हो
3: में आया तो मैंने कोशिश की कि मैं हर शोबे में मालूमात हासिल करूं।
2: तो जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई,
3: हाँ,
2: तो किस तरह का काम होता था और किस तरह की मशीनें थी?
3: ये मशीनें हमारे यहाँ एक होता था CRR, सेंट्रल रिकॉर्डिंग रूम
2: जी,
3: वहाँ एक हॉल था, उसके अंदर जगह जगह मशीनें लगी, 2-2, 3-3 मशीनों के सेट लगे हुए थे। वहाँ मैंने काम शुरू किया मुख्तलिफ प्रोग्राम, जो मेरा पहला प्रोग्राम था जो मैंने फीचर था वो, उसका नाम था फुटपाथ से फुटपाथ तक।
2: हाँ,
3: ये तमाम जितने बाहर बेचारे जो काम करते हैं, रोजगार करते हैं, छोटे छोटे रेड़ी वाले हैं, खंचे वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन सब के इंटरव्यूज़ पर बेस था
2: जी,
3: उनके तजर्बात पर बेस था, उनकी मुश्किलात का सारा था। तो वो मैंने प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम फुटपाथ से

0: प्रोग्राम हमने साथ मिलके बनाए हैं, उसमें गीतों मेरी कहानियाँ बहुत बनाई हैं, तो हम दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर हो गई थी यहाँ पर।
1: अच्छा सरफराज साहब, जिस स्टूडियो में बैठे हैं इसकी जो दीवारें हैं ये आपके आशना हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप ये बताइए कि इस ये स्टूडियो जो आप बापू स्टूडियो के नाम से जाना जा रहा है, इससे पहले ये स्टूडियो कैसे जाना जाता था, और क्या कुछ लाइव प्रोग्राम्स भी होते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज से, या जो आज
0: यहाँ
1: ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो से लाइव करते हैं?
0: ज़्यादातर इंटरव्यूज हुआ करते थे
1: जी।
0: पता चला था कि गांधी जी भी जब ब्रॉडकास्टिंग के लिए आए थे
1: जी,
0: तो वो इसी स्टूडियो में तशरीफ लाए थे
1: जी।
0: लेकिन मैंने जो रिकॉर्ड किया जिन लोगों को, उसमें बाबू जगजीवराम
1: जी,
0: एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए बाद में पीवी नरसिम्हा राव
1: जी,
0: उनको मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया। उसके अलावा जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आते थे, अदीब आते थे, उनका इंटरव्यू भी यहाँ किए हैं, जैसे प्रोफेसर आलिम मसरूर साहब
1: जी,
0: शमीम हनफी साहब उस ज़माने में अलीगढ़ में ही थे, डॉक्टर शमीम हनफी
1: जी,
0: ये सब लोग, उनको इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया।
1: अच्छा, आपने जिक्र किया अनवर साहब का
0: जी,
1: ड्रामे के हवाले से
0: अनवर खान,
1: अनवर साहब, तो वो जब ड्रामा प्रोडक्शन होता था
0: जी,
1: तो आप यहाँ पर तो एक मजमा जैसा रहता होगा, क्योंकि
0: जबरदस्त
1: जो किरदार आते थे वो लाइव परफॉर्मेंस देते थे सारा कुछ।
0: एक वाकया सुनाता हूँ
1: जी, बताइए।
0: एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग थी, उसमें नादरा बब्बर रोल कर रही थी, मेन रोल
1: जी,
0: अनवर खान पैनल पे थे, मैं उनके साथ था। तो नादरा बब्बर एक लफ्ज़ को जिस तरह अनवर खान चाहते थे उस तरह अदा नहीं कर पा रहे थे। नादरा ने कहा कि खान साहब फिर आप ही बता दीजिए। तो अनवर खान साहब माइक्रोफोन पे पहुंच गए, मुझसे कहा रिकॉर्ड करो। उन्होंने एक ही जुमला
1: जी
0: 10 बार रिकॉर्ड किया अलग अंदाज में, और फिर नादरा को बुला के कहा ये सुनो, ये जो 5 बार है मुझे ये चाहिए,
1: मतलब एग्जाम्पल सेट करके फिर बताना कि ऐसा हमें चाहिए,
0: इस तरह चाहिए
1: जी।
0: तो नादरा बब्बर रोने लगी थी।
1: अच्छा एक बताइए कि जिस तरह से हमारा रेडियो ड्रामा प्रोडक्शन है वो करीब करीब 28 मिनट के आसपास हम प्रोडक्शन करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सीरीज होती है, कोई ऐसी सीरीज जिसमें आपको 6 महीने लग गए हों, साल लग गई हो प्रोडक्शन में?
0: एक सीरीज शुरू की थी यहाँ पर दानिश इकबाल की
1: जी,
0: वो गैर मुल्की जबानों का तर्जुमा था कहानियों का, उसमें मुझे मज़ा भी आया काम करने में, और वक्त भी लगा, काफ़ी लगा वक्त लगा, ख़ास तौर पे आर्टिस्ट के सिलेक्शन में दुश्वारी हुई, क्योंकि यहाँ आर्टिस्ट जो हैं वो उस वक्त तो उर्दू के तो थे नहीं,
1: ठीक
0: हिंदी के थे, उन्हें हिंदी में वो स्क्रिप्ट दी जाती थी
1: जी,
0: तलफ़ उर्दू का होता था, अल्फाज उर्दू के होते थे
1: जी,
0: तो उसकी अदायगी में उन्हें बहुत वक्त लगता था, और वो उनको बहुत समझाना पड़ता था, इस सिलसिले में गलत जगह नुक्ता लगाते थे।
1: अच्छा
0: अब भी आपने देखा होगा जो
1: जनाब की जगह जनाब कर देते हैं लोग,
0: आप देख रहे हैं, बल्कि आजकल भी जो बाहर के चैनल्स हैं, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका तलफ़ बहुत ख़राब, खबर को खबर कर,
1: इसलिए तो आकाशवाणी की जो ज़ुबान है वो एक बेंचमार्क है।
0: रेडियो जो है, रेडियो ने हमको बोलना सिखाया, हमको बताया कि कहाँ रुकना है, कहाँ कॉमा होना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए
1: जी,
0: और जिस जिस लफ्ज़ पर हमें जोर देना है उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये सारी जो ज़बान की तहजीब है वो हमें रेडियो से मिली।
1: अच्छा सरफराज साहब एक चीज़ बताइए, जब आप प्रोडक्शन करते थे ड्रामा का
0: जी,
1: कई बार होता है स्क्रिप्ट में भी बदलाव लाना पड़ता है,
0: क्योंकि
1: जो स्क्रिप्ट जिसने दी है तो ज़रूरी नहीं कि रेडियो के हवाले से वैसी स्क्रिप्ट तैयार करके दी हो, तो ये क्या जो उस वक्त के प्रोड्यूसर्स थे
0: जी
1: वो अलाउ करते थे कि आप उनकी हेल्प करें और उसमें चेंज लाने के लिए?
0: ऐसा हुआ, बारहा हुआ है, मेरा वास्ता कुलदीप अख्तर साहब से ज़्यादा नहीं पड़ा था, क्योंकि रिटायर होने वाले थे, अनवर खान साहब के साथ ज़्यादा रहा हूँ मैं, और अनवर खान साहब के बाद मुमताज़ शकीब आए जयपुर से। मुमताज़ शकीब में ये कमज़ोरी थी
1: जी,
0: कि वो उस कमज़ोरी को की वजह से कभी कभी जुमले में, डायलॉग में फ्लो नहीं आता था,
1: अच्छा
0: लफ्ज़ को इधर उधर करना पड़ता था
1: जी,
0: इसके मुमताज़ शकीब का ही होता था
1: जी,
0: लेकिन उसमें तब्दीली और इसलाह जो है मुझे करनी पड़ती थी, ये हुआ
1: असर लाने के लिए
0: जी।
1: अच्छा एक चीज़ सरफराज साहब, आपने उर्दू मजलिस भी देख लिया, उर्दू सर्विस में भी काम करके देख लिया, कोई ऐसी शख्सियत जो बाहर से आई हमारे पास, जिनको हम एज ए टॉकर बोलते हैं, जिसने आपके ऊपर एक असर छोड़ के गए,
0: जिसने
1: आपके ऊपर एक असर छोड़ा कि मुझे भी ये बदलाव लाना है अपनी शख्सियत में, मैं अपने आप को इस तरह से अपने आप को डेवलप करना है, कोई ऐसा मतलब बाकी आपके साथ?
0: इस वक्त मेरे जहन में नहीं है।
1: और रेडियो में कोई ऐसी शख्सियत रही जो जिनसे आपने सीखा?
0: ऐसे कई लोग हैं,
1: बताइए।
0: जैसे चिरंजीत
1: जी,
0: उनका बहुत मशहूर एक सीरियल था ढोल की पोल,
1: ढोल की पोल
0: आपने सुना होगा 1962 के आसपास, फिर उसके बाद शरद चंद्र
1: जी,
0: उनसे मैंने टाइमिंग सीखी, टाइमिंग

0: की बहुत इम्पोर्टेंस होती है
1: जी।
0: टाइमिंग तो उनसे सीखी, शरदचंद से। अब तो खैर वो नहीं रहे। उसके बाद दीना भाई, दीनानाथ
1: जी,
0: तीन कैरेक्टर ऐसे थे उर्दू ड्रामे के, उर्दू ड्रामों में, जिसमें सर्वसंजर, दीनानाथ और ब्रजेंद्र मोहन, खलीफा छद्दू वगैरह ये क्या करते थे, और भाई मुमतियाज
1: जी,
0: इस तरह के कैरेक्टर करते थे। ये लोग जो थे, इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। उसके बाद आखिरी दौर जो है वो एस ठाकुर
1: जी,
0: ये डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर ड्रामा थे, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और ये जो थे वो, उनकी ख़ास बात ये थी कि जो इफ़ेक्ट्स थे, साउंड इफ़ेक्ट्स, उसको वो स्टूडियो में लाइव करना चाहते थे। लाइव एक वो प्रोग्राम कर रहे थे महाभारत
1: जी
0: ड्रामा,
1: आजकल तो सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, मगर उस वक्त तो
0: उस ज़माने में नहीं थे,
1: बनाए जाते थे उस वक्त जी।
0: तो उसमें एक इफ़ेक्ट था सुदर्शन चक्र
1: जी,
0: उसका इफ़ेक्ट निकालना था, और कई दिन हो गए वो हमको वो इफ़ेक्ट जो है वो तैयार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मैं जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग हाउस में दाखिल होने लगा तो मुझे टीम का एक टुकड़ा नज़र आया
1: जी,
0: सड़क पे पड़ा हुआ, उल्टा पड़ा हुआ,
1: मतलब जहन में रहता होगा कि इफेक्ट चाहिए तो कहाँ से मिलेगा ये इफेक्ट है जी।
0: टुकड़ा निकाला, उसको लिया, अंदर आकर कील से उसमें दो सुराख किए बराबर बराबर
1: जी,
0: और उसमें धागा पिरो कर उसको ऐसे घुमाया
1: तो आवाज़ आई,
0: खींचा तो उससे जो आवाज़ निकली घूम हुई, तो वो हमारे काम आई सुदर्शन चक्र के इफेक्ट के लिए
1: जी।
0: एक और इफेक्ट बहुत मुश्किल था, एक ड्रामा था जिसमें कितने ही खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए,
1: अच्छा,
0: लेकिन फिर भी रूह आती है, कैंसर होती है
1: तो
0: और मर्डर हो जाता है,
1: और रेडियो भी एक चीज़ बताना,
0: रेडियो पर। तो अब ये किस तरह किया जाए, कभी एक रूह आती है और एंटर होती है और होकर वो मर्डर हो जाता है। तो हम यहाँ स्टूडियो वन है, इसमें एक बहुत बड़ा नकारा रखा हुआ था
1: जी,
0: अब नहीं है,
1: अब
0: पहले नकारा रखा हुआ था, और उसके जो स्ट्राइकर थे वो दीवार पर लगे हुए थे क्रॉस की तरह। तो मैं उधर से गुजर रहा था तो मेरी नज़र उस पर पड़ी, तो मैं टेप रिकॉर्डर टेप ले आया ऊपर से, टेप स्कूल में जाकर उसको ऑन कर दिया रिकॉर्ड के लिए। स्टूडियो में जाकर उसके ऊपर मैंने स्ट्राइक किया,
1: अच्छा,
0: जब उस पर स्ट्राइक किया वो रिकॉर्डिंग हो गई, उसके वाइब्रेशन सारे आ गए
1: जी जी जी।
0: जब मैंने उसे इस्तेमाल किया है तो वो स्ट्राइक को हटा दिया,
1: अच्छा,
0: सिर्फ वाइब्रेशन लेकर उसका इस्तेमाल किया, उससे ऐसा लगा
1: कि रूह
0: उसमें चीख
1: जी जी जी,
0: तो उससे ऐसा लगा कि वो रूह आ रही है और वो मर्डर हो रहा।
1: अच्छा सरफराज साहब, जब ड्रामा कहते हैं कि एक कंप्लीट आर्ट है रेडियो की, इसमें मौसिकी अपनी एक अलग रोल अदा करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उस वक्त जब आपको कोई म्यूज़िक का इस्तेमाल करना होता है, इफेक्ट्स वगैरह, ठीक है, म्यूजिकल इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो साजिंदे खुद स्टूडियो आते थे?
0: नहीं,
1: कि आप कहीं से रिकॉर्डिंग करके आते थे फिर उसको? जिस
0: हमारे पास जो प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक है
1: जी,
0: उसमें से हमें इजाज़त थी कि सिर्फ हम 15 सेकंड यूज़ कर सकते हैं कोई भी गाने का म्यूजिक को
1: जी,
0: वहाँ से बेच।
1: नहीं, मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, जब नए नए आए गए उस टाइम इतना म्यूजिक तो अवेलेबल नहीं होगा,
0: नहीं होता था
1: जी।
0: तो जो हमारे पास रिकॉर्डिंग थी उसी से हम लेते थे म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जो अप्रोप्रिएट लगता था वही हम उसमें लेते थे।
1: तो उस वक्त जो म्यूज़िक आप लेते थे टेप पे होता था कि ये ग्रामोफोन वगैरह पे?
0: टेप पर होता था
1: जी,
0: टेप पर होता था। ग्रामोफोन उस हमसे पहले का था, हमसे पहले जो था वो स्टूडियो 11 एक था, अब भी है वो स्टूडियो, अब उस पर डबिंग होती है, वो स्टूडियो होता था। ड्रामा स्टूडियो में हो रहा, उस स्टूडियो 11 के अंदर हमारे इंजीनियर बैठे हुए हैं, इफेक्ट्स लेके बैठे हुए हैं, कंट्रोल ड्रामे की जो आवाज़ है वो उस स्टूडियो में सुनाई दे रही है, वहाँ से वो इफेक्ट दे रहे हैं। जब उनको स्क्रिप्ट उनके पास भी है वो वहाँ से इफेक्ट दे रहे हैं, जब महाभारत हो रहा है जैसे या रामायण हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी ड्रामे हो रहे हैं इफेक्ट वहाँ दे। तो उस स्टूडियो का नाम ही इफेक्ट स्टूडियो रख दिया गया था।
1: अच्छा अच्छा,
0: इफेक्ट स्टूडियो है ना। अनाउंसर इधर बूथ पे होता था ड्रामे के ऊपर, और इफेक्ट वहाँ से इससे प्लेबैक होते थे, और कंट्रोल रूम इसको कलेक्ट करता था।
1: सरफराज साहब, रेडियो के हवाले से जैसे हम एक तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करते हैं हम लोग, दूसरा यह है कि जब बाहर जाते हैं, बाहर कोई फंक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और वो वक्त था जिसमें आप यहाँ सर्विस में थे कि बाहर जाके रिकॉर्डिंग्स भी बहुत हुआ करती थी
0: जी,
1: तो कोई ऐसा वाकया जो अपने वक्त का आपको लगता है कि हम रेडियो के हवाले से लोगों तक पहुँचाया जाए?
0: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सब साला तकरीबात थी
1: जी,
0: और हम पूरी टीम लेकर अलीगढ़ पहुँचे थे, वहाँ 4-5 दिन का प्रोग्राम था
1: जी,
0: इंजीनियर्स भी थे हमारे साथ।
1: हमें अपने सामीन को बताना चाहते हैं कि अलीगढ़ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है दिल्ली के स्टूडियो से।
0: वहाँ पर हमारे सामने एक मसला आ गया
1: जी,
0: हम रोज़ाना दिन में रिकॉर्डिंग करते थे, शाम को एडिटिंग करके कैप्सूल बनाते थे, और उसको हाई पावर ट्रांसमीटर जो अलीगढ़ से कुछ 17-18 किलोमीटर दूर था वो हमारी वैन का ड्राइवर लेके जाता था, वहाँ देता था, वहाँ से प्लेबैक होता था यहाँ दिल्ली में। एक दिन वो वैन

0: जो है ख़राब हो गई। वहाँ कोई रास्ता नहीं था कि हम किस तरह से इसको वो करें। प्रोग्राम हो रहा था कैनेडी हॉल में, उसके बराबर में टेलीफोन का एक पुल लगा हुआ था
1: जी।
0: तो हमने एक साइकिल उस पुल के साथ लगाई, उसकी गद्दी पर खड़े हुए, टेप रिकॉर्डर कंधे पर रखा, उसको टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया और वो दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ।
1: मतलब
0: तो वो है ना कि शो मस्ट गो ऑन।
1: यस, और ये कहते हैं ना कि रेडियो हो, टेलीविज़न हो, या जितने भी मास मीडिया के हैं, वहाँ पे शो रुकना नहीं चाहिए, और आपको वक्त के हिसाब से करना है।
0: बिल्कुल करना पड़ता है।
1: अब ये बताइए कि जो नई नस्ल हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही है,
0: जी
1: कहते हैं कि जो टाइम की पाबंदी,
0: जी
1: चाहे आप किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, टाइम की पाबंदी बहुत ज़रूरी है,
0: ज़रूरी है,
1: लेकिन नशरियात में तो और उससे भी ज़्यादा है।
0: जी असल में क्या है,
1: उसके बारे में थोड़ा बताइए कि
0: रेडियो की मुलाजमत दूसरे इदारों की मुलाजमत से बहुत मुख्तलिफ है।
1: जी
0: यहाँ आपको बहुत कुछ करना पड़ता है जो और जगह नहीं करना पड़ता।
1: जी
0: यहाँ सबसे पहले वक्त की पाबंदी और जुनून, आप में जुनून होना चाहिए काम करने का कि हमको काम करना है, किस तरह करना है ना। बगैर जुनून के, बगैर जोश के, बगैर पूरी तवज्जो के साथ आपको उसको प्रोग्राम को करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रोग्राम ऐसा हो जो सबके मतलब का हो।
1: मतलब कोई प्रोग्राम किसी भी तबकों को
0: हाँ
1: को कहीं ना कहीं परेशान ना करे, ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे तो परेशान ना करो।
1: चलिए हम आपको फिर दोबारा ले सकते यादों में। आप यहाँ पर कितना वक्त देते थे? 24 घंटे का दिन होता है और कहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग ऐसी है, अगर आप इससे मोहब्बत कर बैठे तो 24 घंटे यही निकल जाते हैं स्टूडियो में।
0: असल में शुरू में ही मैं ऑल इंडिया रेडियो 8 बजे पहुँच जाता था।
1: टाइमिंग के एकदम पाबंदी जो थी,
0: 8 बजे मैं पहुँच जाता था ऑल इंडिया रेडियो और अपना काम संभाल लेता था। अब वो काम 5 बजे तक ख़त्म हो, 7 बजे तक ख़त्म हो, 9 बजे तक ख़त्म हो या 12 बजे तक ख़त्म हो, मैं उस वक्त तक नहीं हिलता था जबकि वो प्रोग्राम मेरा कंप्लीट ना हो जाए।
1: अच्छा ये बताइए कि उस वक्त आपके जो सीनियर्स थे
0: जी,
1: उनका तो आपने जिक्र किया
0: जी,
1: आपके साथियों में कौन थे जो जिस तरह से आप एक जोश के साथ, एक मोहब्बत के साथ जो इस प्रोग्राम्स बनाते थे, उस वक्त आपके साथियों में कौन कौन?
0: सबसे पहले नाम में फरहत हुसैन साहब को लेना चाहूँगा।
1: जी
0: फरहत हुसैन उर्दू सर्विस से शुरू होते ही पैक्स कोऑर्डिनेशन थे और उनके प्रोग्राम मैं उनको सपोर्ट करता था, मैं उनको हेल्प करता था, असिस्टेंट था मैं उनका, वो क्या करता था तो वो अपने काम में बड़े माहिर। उनका आलम यह था कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड चल रहा है, उन्हें कुछ बोलना है बीच में तो उस पर दो उंगली रखते थे, रिकॉर्ड वहीं रुक जाता था बगैर स्क्रैच के। वो फेडर अपना ऑन करके माइक का बोल के फेडर बंद किया, हाथ उठा लिया, बगैर स्क्रैच के वो टेप अपने उसी स्पीड पर चलने लगता था, टेप नहीं रिकॉर्ड। वो इस तरह का काम करते थे वो। उन्होंने इको चैनल हमारे यहाँ नहीं था, कोई नहीं था,
1: कंसोल
0: हमें ड्रामा
1: नहीं
0: करना उसे इको चाहिए,
1: कंसोल में नहीं होता। हाँ था जी।
0: वो उन्होंने टेक्निक सिखाई। एक और मेरी टेक्निक है सुपर इम्पोज करने की, पेंसिल लगा के, है ना, वो उन्होंने सिखाई। ऐसी बहुत सी चीज़ें सिखाई, मेरा दिल लगता था उनके साथ काम
1: जब आप टेप पे रिकॉर्डिंग करते थे। वो हमने भी वो देखा जब टेप रिकॉर्डिंग्स होती थी, और कई बार तो टेप को काटना भी पड़ता था।
0: हाँ
1: तो वो किस लिए काटना पड़ता था सरफराज साहब? क्योंकि उस वक्त तो मुझे लगता है कि एडिटिंग में या कहीं टेप में कुछ, क्योंकि वो मैग्नेटिक टेप्स हुआ करते,
0: या तो वो टेप ख़राब है इसलिए काटते थे
1: जी,
0: या वो रिकॉर्डिंग सही नहीं आई है उस जगह पर। एक और वाकया मैं आपको सुना दूँ, बड़ा दिलचस्प था। सलाम मछली शहरी स्पोकर बोर्ड देखते थे, लखनऊ से कलाम आया किसी का तो फरहत हुसैन से कहने लगे कि भाई ये देखिए मेरा जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो तो गायब हो गया, छुट्टी पर है और मुझे ये सुनना है रात का ब्रॉडकास्ट क्या होगा। तो फरहत हुसैन ने कहा कि कंट्रोल रूम में जाइए CRR में, वहाँ कोई ना कोई इंजीनियर आपको टेप लगा देगा, आप सुन लीजिएगा। चले गए, सलाम मछली शहरी की बात कर रहा हूँ मैं
1: जी,
0: वहाँ जाकर इंजीनियर से कह दिया, उसने प्लेबैक किया, ये सुने, वो जो 10 मिनट का था कलाम शायर वो ख़त्म हो गया। अब इन्होंने उधर उधर देखा उस इंजीनियर को, इंजीनियर नज़र नहीं आया, तो उन्होंने टेप पे फॉरवर्ड पे उंगली मार दी, वो एकदम तेज़ हो गया, घबरा गया, उन्होंने रिवाइंड पे उंगली मार दी,
1: टूट गई टेप
0: हैं, तो वो टेप जो है दोनों स्पूल
1: उलझ
0: के टूट गया
1: जी।
0: उसके तो एक इसी स्पूल में, और एक टुकड़ा 2 फुट का ज़मीन पर गिर गया। तो इन्होंने ज़मीन से टुकड़ा उठाया, जेब में रखा और हाँपते काँपते दोनों चीज़ों को लेके पहुँचे फरहत के पास कि देखो मेरी तो नौकरी चली जाएगी रात का ब्रॉडकास्ट से, ये टूट गया। तो फरहत हुसैन हंसे, मैं बराबर में खड़ा था, मैं कहने लगे सरफराज भाई जाके टेप जोड़ दीजिए
1: जी।
0: ये मेरे साथ आए, मैंने टेप जोड़ा, जब उसे प्लेबैक किया तो एब्रप्ट, मैंने कहा सलाम भाई ये तो बड़ा एब्रप्ट है, वो देखो हो करके उन्होंने जेब से
1: बाकी हिस्सा
0: ये भी
1: हमने बहुत सारी यादों के झरोके से आपसे बहुत सारी चीज़ें निकलवाई और हम देख पाए कि जो आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, और हम दुआ भी करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से मास मीडिया में काम करते रहें। और जैसे हम आपको बताए कि शुरुआत में कि हम 90 साल आकाशवाणी के मना रहे हैं, और उसमें से 90 साल से मैं जो आधे से ज़्यादा आपका तजुर्बा रहा है रेडियो में, करीब 50 साल का, तो हमारे सामीन को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। रेडियो में उर्दू सर्विस किस तरह से शुरू हुई, किस तरह से सरफराज साहब और जो दीगर यहाँ पर अफसरान थे उन्होंने कैसे काम किया और इस सर्विस को कैसे यहाँ तक लेके आए। तो आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत सी बातें हैं दिल में कहने के लिए,
1: एक शेर अर्ज हो जाए,
0: वक्त नहीं है,
1: एक शेर अर्ज हो जाए।
0: उम्र गुजरी है इसी दस की सयाही पे, ये मैं कह सकता हूँ।
1: तो सरफराज साहब, एक जो नई नस्ल इस प्रोग्राम को सुन रही है उसको जो हमारा हिस्ट्री है उसके बारे में जानने को मिला, मगर एक जो मैसेज आप देना चाहते हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ना चाहते हैं, नशरियात से जुड़ना चाहते हैं, उर्दू में काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपका?
0: असल में ब्रॉडकास्टिंग जो है वो दिल का सौदा है। अगर आपके दिल में ब्रॉडकास्टिंग से मोहब्बत है
1: जी,
0: तो आपको कोई पछाड़ नहीं सकता और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, मुसलसल आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना।
1: तो सरफराज साहब की बातें आपने सुनी और इतनी मोहब्बत से इन्होंने हमसे बात की, और आज भी ऐसा लगता है कि हम उसी एरा में जी रहे हैं जिसमें सरफराज साहब ने काम किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए।
0: शुक्रिया।
2: सामीन, अभी आप रूबरू प्रोग्राम के तहत आकाशवाणी के मारूफ ड्रामा प्रोड्यूसर जनाब सरफराज अहमद से की गई यह बातचीत सुन रहे थे। शरीक गुफ्तगू थे जनाब मुबीन खान। प्रोग्राम की तरतीबो पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का यह प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
4: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में भविष्य की परीक्षाओं की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने की भी मांग की गई है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट UG पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिक विषय की लेक्चरार मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के हिरासत में भेज दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री S. जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील राष्ट्रहित में है। हरियाणा के जिंद जिले में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने ईंधन बचाने के लिए अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या भी कम कर दी है। बढ़ती बिजली की मांग पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि 21 मई को देश में बिजली की अधिकतम मांग 271 गीगावाट दर्ज की गई, जिसकी आपूर्ति लगभग पूरी की गई। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य करना है। विधेयक असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में श्री सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today,

0: वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच है। अंतिम बार इन्हें सीधो 40 फुट रोड दीनदयालपुरी नंदग्राम में देखा गया। किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो वे थाना नंदग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना नंदग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है अनु, जो जीवच की पुत्री हैं। ये 19 वर्षीय महिला है। इनका कद 4 फुट 3 इंच है। शरीर की बनावट सामान्य है। बिना बताए घर से कहीं चली गई हैं। किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई सूचना मिले या इन्हें कहीं देखा गया हो तो वे थाना नंदग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। श्रोताओं, अगली जानकारी प्राप्त हुई है कोतवाली सिहानी गेट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है मीना, जो शैलेंद्र की पत्नी है। इनकी आयु 26 वर्ष है। शरीर की बनावट एक हरा बदन, रंग गोरा है। इनकी ऊंचाई 5 फुट है। अंतिम बार इन्हें अपने घर पर ही देखा गया। 15 अप्रैल 2026 में ये बाजार बोल कर गई थी और अभी तक ये लौट कर नहीं आई। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो कोतवाली सिहानी गेट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। अगली जानकारी थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त हुई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम नाहिद है, जो फरमान की पुत्री है। इनकी आयु 19 वर्ष है। कद 4 फीट है। अंतिम बार इन्हें 16 मार्च 2026 को सर्वोदय नगर में देखा गया था। किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो या इन्हें कहीं देखा गया हो तो वे थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले लापता व्यक्ति का नाम है साक्षी मिश्रा, जो कि दिनेश मिश्रा की पुत्री हैं। अंतिम बार इन्हें 4 फरवरी 2026 को अपने घर पर ही देखा गया। इनकी आयु 24 वर्ष है। कद 5 फुट 3 इंच है। घर से बिना बताए ये कहीं चली गई हैं। किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है खुशनुमा, जो कि इब्राहिम की पुत्री हैं। इनकी आयु 22 वर्ष, कद 5 फुट है। अंतिम बार इन्हें 13 अप्रैल 2026 में देखा गया था। किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वह थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। कोतवाली नगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है रेनू, जो कि अमरनाथ की पुत्री है। इनकी आयु 21 वर्ष, कद 5 फुट है। अंतिम बार इन्हें 12 अप्रैल 2026 में देखा गया, मकान नंबर 40 गणेशपुरा गाजियाबाद में। इनकी विशेष पहचान है कि इनके दाहिने पैर पर चोट का निशान है। इन्हें कहीं भी देखा गया हो या इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो तो वो पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। थाना कवि नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम बिहारी लाल है। इनके पुत्र सूरज हैं। इनकी आयु 40 वर्ष है, कद 5 फुट 1 इंच। इनके सिर के बीच में बाल नहीं है, इनकी ये विशेष पहचान है। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वह थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करे। तो श्रोताओं, ये थी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त शाम के 4:20 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट न्यूज का।
7: Thank you.
4: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy.

0: दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। पूर्ण आवेदन पत्र A4 आकार के लिफाफे में भेजा जाए, जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि किस पद हेतु आवेदन पात्र है। पद का नाम सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार, पदों की संख्या 1, मानदेय 55,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस में स्नातक डिग्री तथा राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में आईटी क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं। लेखा सलाहकार, पदों की संख्या 1, मानदेय 55,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य अकाउंट में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव तथा राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में लेखा के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं। प्रशासनिक सलाहकार, पदों की संख्या 1, मानदेय 55,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री तथा राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में प्रशासन के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 4, पद का नाम शोध सहायक हिंदी, पदों की संख्या 1, मानदेय 45,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में PhD उपाधि तथा शोध, अनुवाद अथवा पांडुलिपि अध्ययन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 5, पद का नाम शोध सहायक संस्कृत, पदों की संख्या 2, मानदेय 45,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में PhD उपाधि तथा शोध, अनुवाद अथवा पांडुलिपि अध्ययन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 6, पद का नाम टाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी, पदों की संख्या 1, मानदेय 30,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से किसी संस्थान में संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर पर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 9000 KDPH के तुल्य। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 7, पद का नाम टाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर अंग्रेजी, पदों की संख्या 1, मानदेय 30,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 10,500 KDPH के तुल्य। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाई द न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास।

0: इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती है हमारी बराबर नज़र। और फिर हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। कार्यक्रम परिक्रमा में आज मैं हूं आपके साथ मुनीष शर्मा और मेरे साथ है अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
1: नमस्कार मुनीष एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। नो रिस्पाइट फ्रॉम सोरिंग टेम्परेचर्स हीट वेव फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज स्टिल हीट वेव कंडीशंस इन सेंट्रल इंडिया डज नॉट सीम टू अबेट इजंट इट मुनीष। Several places record day temperatures close to 45 degrees, and according to the IMD, the prevailing condition of extreme heat will continue till the end of month. Scorching heat causes severe health issues like dehydration, heat exhaustion, and life-threatening heat stroke. It worsens the chronic cardiovascular and respiratory diseases as well, triggers acute kidney injuries, and causes acute drops in air quality. Urban environments amplify these dangers by trapping heat at night. So I would request, take care friends, stay hydrated and limit your outdoor exposure. And also, very important to protect your diet, avoid high protein foods, alcohol and caffeine as they can accelerate dehydration. Consume water-rich fruits like watermelon, cucumber and citrus fruits. Of course, all these things would sound very cliche, but this is the need of the hour. And while staying indoors, stay tuned to Akashvani for some beautiful melodies along with updates on the news front. And so let's begin with news headlines at the moment. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से मांगा जवाब। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया।
1: Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill.
0: और मौसम विभाग ने अगले तीन दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी।
1: And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. And now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk on different topics which is being observed today, like World Football Day, International Missing Children's Day and World Thyroid Day. Let's begin with World Football Day first.

0: This song truly captures the spirit of football. The song was created as the official anthem of the 2010 FIFA World Cup, which was held in South Africa, the very first time the tournament took place on African soil. And that context matters deeply. The song became a symbol of how football connects people beyond borders, race, religion, and language, which exactly is what Football Day celebrates today. And that is why Waka Waka became one of the most iconic football songs ever made.
1: Dosto, football mein kuch to hai bahut khaas, hai na? Bas ek game, 22 khiladi, ek maidan. Aur achanak, bilkul anjaan log ek saath milkar aise cheer karne lagte hain, mano wo ek dusre ko barson se jante hon. Ek gali mein, bacche chappalon ko goal post banakar khel rahe hote hain. Aur wahin duniya ke kisi dusre hisse mein hazaron log एक विशाल स्टेडियम के भीतर एक साथ मिलकर गा रहे होते हैं. अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग जीवन, फिर भी गेंद नेट से टकराती है तो किसी न किसी तरह हर कोई उस एक ही भावना को समझ जाता है.
0: दिस इज द पावर ऑफ फुटबॉल. टुडे द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स वर्ल्ड फुटबॉल डे, ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द 25th ऑफ मई बाय द यूनाइटेड नेशंस. बट हैव वी एवर स्टॉप टू थिंक अबाउट व्हाई एन एंटायर डे वाज डेडिकेटेड टू दिस स्पोर्ट? व्हाट मेक्स फुटबॉल सो स्पेशल दैट इट कनेक्ट्स विलेजेस, सिटीज एंड एंटायर नेशंस? The answer goes far beyond the game itself. Football is often called the world's universal language, not because everyone speaks the same words, but because everyone understands

0: understands the same feelings: hope, teamwork, resilience, heartbreak and joy.
1: और शायद इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने फुटबॉल को महज एक मनोरंजन से कहीं बढ़कर माना है। संयुक्त राष्ट्र फुटबॉल को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखता है जो पूरी दुनिया में शांति, समावेश, स्वास्थ्य, समानता और सहयोग को बढ़ावा देती है। है ना दिलचस्प? एक ऐसा खेल जिसे कई लोग सिर्फ मनोरंजन का साधन मानते हैं, वो समाज को घावों से उबरने में मदद कर रहा है, युवा लड़कियों को सशक्त बना रहा है, शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है और यहां तक कि युद्ध के कारण विस्थापित हुए शरणार्थियों का भी सहयोग फुटबॉल कर रहा है।
0: And maybe that reminds us of something deeply human. Sometimes people do not need the same background to stand together. Sometimes all they need is a shared dream. World Football Day was officially proclaimed by the United Nations General Assembly in 2024. The date marks the 100th anniversary of the first international football tournament in history that included representation from all regions of the world, held during the 1924 Paris Olympics.
1: दोस्तों, 100 साल बाद ये खेल कुछ ऐसा बन गया है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। अरबों लोग इसे देखते हैं, लाखों इसको खेलते हैं, अनगिनत लोगों की जिंदगी इससे संवरती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो पूछने लायक है। दूसरे कई खेलों के मुकाबले फुटबॉल लोगों के साथ इतना गहरा भावनात्मक जुड़ाव क्यों बनाता है? शायद इसलिए क्योंकि फुटबॉल तक पहुँच बनाना आसान लगता है। इसके लिए आपको हमेशा महंगे सामान की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी शानदार स्टेडियम की भी ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी बारिश के बाद की कोई तंग गली ही खेलने के लिए काफ़ी होती है।
0: And sometimes an empty school ground becomes a World Cup final in the minds of children. And India understands this emotion beautifully. For years, cricket has dominated conversations in our country, yet steadily football has been growing in the hearts of millions of Indians.
1: दोस्तों, फुटबॉल हमें ऐसे सबक भी सिखाता है जो चुपचाप जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। एक चूका हुआ गोल हमें मजबूती सिखाता है, एक पास हमें भरोसा सिखाता है और एक कप्तान हमें जिम्मेदारी समझाता है। एक टीम हमें एकता का संदेश देती है और शायद इसीलिए फुटबॉल हमें सिर्फ एक खेल से कहीं ज़्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि कई मायनों में फुटबॉल जिंदगी का ही तो आईना है।
0: राइट मुनीश, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे।
1: जी हाँ अनुजा, देखिए दरअसल कुछ पल ऐसे होते हैं जो खामोशी से पूरी दुनिया को हिला कर रख देते हैं। इसलिए नहीं कि वो शोर मचाते हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपने पीछे एक गहरा खालीपन छोड़ जाते हैं। एक माँ जो बार बार उस फोन पर कॉल करती है जिसकी घंटी अब कभी नहीं बजती। एक पिता जो आधी रात को पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है इस उम्मीद में कि शायद किसी ने उसके बच्चे को देखा हो।
0: And somewhere, in another part of the world, another family is living the same nightmare. Every year on 25th of May, the world observes International Missing Children's Day, a day that reminds us that behind every missing child poster is not a statistic, but a family waiting for life to feel normal again.
1: Dosto, jab koi bachcha lapata ho jata hai, to kuch logon ke liye shayad mehaz ek aisi khabar ho जो कुछ ही दिनों में पुरानी होकर भुला दी जाएगी, लेकिन दूसरों के लिए ये जिंदगी भर का एक ऐसा जख्म बन जाता है जिसे और भी ज्यादा तकलीफ दे बना देता है। इस संकट का विशाल दायरा दुनिया के अलग अलग देशों में समय के साथ लाखों बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट सामने आती हैं और कई क्षेत्रों में तो आज भी इन लापता बच्चों की सही तादाद का कोई सही आंकड़ा मौजूद नहीं है।
0: दैट इज नॉट मेयरली अ नंबर. That is thousands of dinner tables with one empty chair, thousands of birthdays celebrated with unanswered prayers.
1: हर सुबह हजारों माँ बाप इस उम्मीद के साथ जागते हैं कि शायद आज उन्हें आखिरकार कोई खबर मिलेगी, लेकिन जागरूकता जान बचाती है, समुदाय जान बचाते हैं, जो लोग ध्यान देते हैं वो जान बचाते हैं। कभी कभी कोई बच्चा इसलिए मिल जाता है क्योंकि किसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में उसके चेहरे को पहचान लिया।
0: That's true. Sometimes a shopkeeper notices a frightened child standing alone, and sometimes a teacher senses that something feels wrong and decides to act. It raises an important question: How often do we teach children about safety without frightening them?
1: बिल्कुल, एक साधारण सी बातचीत भी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। एक माँ अपने बेटे को फ़ोन नंबर याद करना सिखाती है।

0: profits for the fourth consecutive financial year, the Jammu and Kashmir Bank has posted its highest ever annual profit of approximately 2,363 crore rupees for the last financial year. Let's hear the report.
1: The J&K Bank also ended the financial year on a high with a record quarterly performance, posting a net profit of almost rupees 800 crores when compared to rupees 584.54 crores recorded for the corresponding period last year. In an exclusive interview to Parikrama, the J&K Bank Managing Director and CEO Amitabh Chatterjee said,
2: "Pichle saal humne jo mushkilat dekhi yahan Jammu and Kashmir mein, उसके मद्देनजर अगर आप हमारे प्रॉफिट को या हमारे बिजनेस ग्रोथ को देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही रिमार्केबल है. हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया, एमएसएमई पे फोकस किया लास्ट क्वार्टर में, और इसके साथ में एक बिजनेस मिक्स हमने किया रेस्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे ब्रांचेस हैं.
1: आफ्टर गवर्नमेंट, J&K बैंक इज बीइंग कंसीडर्ड एज नंबर टू एम्प्लॉयर फॉर द यंग एजुकेटेड एंड मेरिटोरियस एस्पायरेंट्स टू गेट जॉब्स. टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द J&K बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सेड,
2: 2021 के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है इस बैंक में. उसका मेन रीजन ये था कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था ना हमारे बैंक का, वो बहुत हाई था. तो हमने कोशिश की कि इनकम बढ़ाए लास्ट पिछले 5 साल में. तो हम इस साल हमारा प्लान में ये है कि हम रिक्रूट करेंगे.
1: सस्टेनिंग इट्स हेल्दी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26, द बैंक्स टोटल बिजनेस सर्ज 13.61% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 2,90,341 crores as on 31st March 2026. For Parikrama, Tariq Rather, Akashwani News, Srinagar.
3: और दोस्तों, आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल. भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया और ओशेनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है. भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा बनाए रखा. अमर सिंह देवंदा ने 24 घंटे में 282.881 किलोमीटर की दूरी तय करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया. गिनो एंटनी ने 272.894 किलोमीटर की दूरी तय करके रजत पदक हासिल किया, जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया. महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कुल 667.722 किलोमीटर की दूरी तय करके कांस्य पदक जीता. तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं. ये चैंपियनशिप जापान के हिरोसाकी शहर में आयोजित की गई थी, जिसमें 9 देशों के 81 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.
0: And if we talk about the business news of the day, benchmark domestic equity indices ended on a bullish note today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. The Sensex surged 1,074 points or 1.4% to close at 76,489, while the Nifty advanced 312 points or 1.3% to settle at 24,032. In the broader market, at the National Stock Exchange, Mid-Cap 100 Index advanced 0.9%, while Small Cap 100 Index jumped 1.4%. And for more updates about the market activities, tune in to Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
3: और दोस्तों, आइए अब याद करें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, बात करें उन महान व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
4: In today's episode, we remember transnational freedom fighter Sardar Singhji Ravaji Rana, who died on the 25th of May, 1957. S.R. Rana was the founding member of the Paris Indian Society and the vice president of the Indian Home Rule Society.
5: Rana was born on 10th of April, 1870 in Kathiawar, Gujarat. A classmate of Mahatma Gandhi during high school, Rana studied in Ferguson College, Pune, where he came in contact with Lokmanya Tilak and Surendranath Banerjee. He got inspired to join the freedom movement as he volunteered at the Indian National Congress Conference in Pune in 1895. In London, while pursuing law, he came in contact with Shyamji Krishna Varma and Bhikaji Kama. He was instrumental in the establishment of India House in London.
4: In 1899, Rana left for Paris and came to associate with Indian nationalist politicians, including Lala Lajpat Rai, who is known to have visited Paris and stayed with Rana. In 1905,

0: 1905, Rana became one of the founding members of the Indian Home Rule Society. Together with Muncher Shah Barjorji Godrej and Bhikaji Kama, he founded the Paris Indian Society that same year as an extension of the Indian Home Rule Society on the European continent. Rana announced 3 scholarships for Indian students, each worth 2,000 rupees, in memory of Maharana Pratap, Chhatrapati Shivaji and Akbar in the December 1905 issue of the Indian Sociologist.
1: Due to his nationalist activities, Rana was expelled by the French government to Martinique in 1911. The activities of the Paris Indian Society were also curtailed under pressure from the French Sûreté and finally suspended in 1914. Rana underwent a lot of personal losses in his life as his son and wife died. Thereafter, he abstained from public life and returned to India after independence in 1948.
0: S.R. Rana died on the 25th of May 1957 in Veravel, Gujarat. He was awarded the Chevalier by the French government in 1951. His portraits are placed in the Gujarat Legislative Assembly and his place of death in Veravel.
1: We salute the great martyr. We also remember Manipuri freedom fighter Kajao alias Pukhramba, a resident of Kangamong, Manipur. On 24th of March 1891, when British troops launched an attack on the Manipuri fort, Kajao killed the British political agent Grimwood. He was sentenced to death on the 19th of May 1891. Following his capture, Kajao was hanged on the 25th of May 1891 at the west gate of the fort. Kajao is remembered for sacrificing his life for the independent kingdom of Manipur. We salute the great martyr.
0: We also remember Manipuri freedom fighter Hirang Khogja, who fought against the British in Anglo-Manipur War in 1891. Khogja hailed from the village Hirang in Manipur. He died at the Khongjom battlefield on the 25th of May 1891 during the Anglo-Manipur War. We salute the great martyr.
2: और अब बात करते हैं, आज है जन्मदिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस का। प्रख्यात वकील और शिक्षाविद भी थे, सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के निर्माता भी दरअसल यही थे। देश के जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, उनमें रास बिहारी बोस का नाम सदैव परम आदर से लिया जाएगा। रास बिहारी बोस उदारवादी दल से शुरुआत में संबद्ध थे। रास बिहारी बोस उन लोगों में से थे जो देश से बाहर जाकर विदेशी राष्ट्रों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध माहौल तैयार कर भारत की मुक्ति का रास्ता निकालने की सोचते थे। उन्होंने जापान में रहकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और उन्हीं से प्रेरणा पाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध अपना जीवन संघर्ष को समर्पित कर दिया। 1937 में उन्होंने भारतीय स्वातंत्र्य संघ की स्थापना की थी और अपनी आखिरी सांस तक भारतवासियों की मुक्ति के लिए वो काम करते रहे।
3: एंड टुडे वी ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू राम किंकर बैज ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर। बैज क्रिएटेड आर्ट स्पॉन्टेनियसली, ड्रिवन बाय इंट्यूशन एंड एनर्जी एंड डिसरिगार्डिंग द आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू मॉडलिंग बाय अ विजिटिंग फ्रेंच स्कल्पचर लेड बैज टू एंगेज विद क्ले इन अ यूनिक मैनर। He introduced cement concrete casting as an alternative to expensive plaster, the first artist in Shantiniketan to use oil paint and create distinctly modern and abstract work. Drawn from life, Baird's figures breathed a bold realism and earthy strength and spontaneity seen in his sculptures, drawings and paintings. He was awarded the Padma Bhushan by the Government of India in 1970. And today we also pay tribute to Sunil Dutt. Yes, he was an iconic Indian actor, filmmaker and politician whose profound humanity both on and off the screen left an indelible mark on the nation.
2: जी हाँ, दरअसल न सिर्फ अभिनेता थे बल्कि सामाजिक सुधार के कार्यों में भी अंत तक वो जुड़े रहे और खासी चर्चित रही उनकी पदयात्रा जो उन्होंने की थी भारत की, और युवाओं को आजीवन उन्होंने प्रेरित किया। 1957 में प्रदर्शित हुई थी उनकी मदर इंडिया, जिससे उन्हें अभिनेता के तौर पर एक ख़ास पहचान मिली, और फिर आई थी 1965 में बड़ी ही यादगार फिल्म वक्त, जिसमें थे बलराज साहनी, उनके साथ राजकुमार, शशि कपूर और

0: मान। और खास फिल्मों की अगर उनकी बात करें तो साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन जैसी फिल्में हमें याद आती हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं का ये एक यादगार संवाद फिल्म मेरा साया से, और उसके बाद गीतों की एक झलक।
1: तुम मेरी बीवी हो ना, तुम्हें उस डायरी से बहुत प्यार था, तुम उस डायरी को बड़ी हिफाजत से रखती थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डायरी इस वक्त भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। कहाँ है वो?
2: जब मैं घर से निकली थी तो डायरी साथ लेकर नहीं गई।
1: मैंने घर का कोना कोना छान मारा, चप्पा चप्पा देख डाला, अलमारियां, सूटकेस, ट्रंक उलट पलट कर दिए, मगर उस डायरी का कहीं पता नहीं, कहीं नामो निशान नहीं। वही चीज तुम्हें याद नहीं आ रही कहाँ रखी थी? मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों नहीं याद आ रही, इसलिए कि तुम मेरी बीवी नहीं हो।
3: And a song from Sujata was another masterpiece picturized on him, which still remains unforgettable.

0: And as one part of the legendary Bollywood composing duo Lakshmikant Pyarelal, today is Lakshmikant Kundalkar's death anniversary. Who dominated the Indian film music industry from the 1960s to the 1990s.
1: जी हाँ, 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में पिता का निधन हो गया और उसके बाद बीच में पढ़ाई उनको छोड़ देनी पड़ी। बचपन से ही रुझान था लक्ष्मीकांत का संगीत की ओर और फिर संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने हासिल की थी अपने उस्ताद हुसैन अली से और आगे चलकर लक्ष्मीकांत ने अपने दोस्त प्यारे लाल के साथ मिलकर संगीतकार जोड़ी बनाकर फिल्म जगत में अपना लोहा मनवाया। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर भी काम किया, मदारी, सट्टा बाजार, छलिया, दिल तेरा हम भी तेरे और कई उनकी ऐसी फिल्में हैं जिसमें उनके गीत खासे मशहूर रहे और अब भी गुनगुनाए जाते हैं।

0: और दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी मुन्नी शर्मा और मेरी सहयोगी अनुजा कुमार को। परिक्रमा यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com और हमारा ऐप है न्यूज़ ऑन AIR, इस पर भी आप हमें सुन सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं। आज्ञा दीजिए,
1: नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
3: नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम

0: तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
1: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट वन ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एज वी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द गणतंत्र भवन एट राष्ट्रपति भवन इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ डिग्निटरीज एंड द प्राउड रिसिपियंट्स ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
0: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे नेतृत्व।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 टू 2009 एंड ही वाज नोन फॉर हिज इमोशनल बॉन्ड विद हिज कॉन्स्टिट्यूएंट।
1: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से, उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोशियारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्ड टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा

0: एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
1: Shri Kotak has played an important role in defining and developing India's banking and financial sector over four decades, and he leads several key bodies, serving as co-chairman of
2: Professor
1: the Indo-UK Financial
2: Vijay
1: Partnership.
2: Vijay Kumar Malhotra, Marnopran, Lok Karya, unke putr Shri Ajay Kumar Malhotra.
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाव पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते
1: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
2: Ramaswamy Palniswamy, Chikitsa Gastroenterology.
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनीस्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
1: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
2: guidelines. श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी
0: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
1: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
2: श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्व बंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
1: श्री विश्व बंधु वॉज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, एंड रिमेन्स सो ओवर सिक्स डेकेड्स।
2: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
1: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वाज रिलीज्ड। ही हैज आल्सो गाइडेड अ न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट्स एज अ जज एंड मेंटर।
2: श्री तगाराम भील कला अलगोजा वादन।
0: जैसलमेर के तगाराम भील अलगोजा बजाते हैं, कितना सुंदर साज जो कि शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। इन्होंने जैसलमेरी पट्टू पहना है और ऊपर जैसलमेरी साफा चुंदड़ी का।
1: श्री तगाराम इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। ही हैज रिसीव्ड अ महरावाल गिरधर अवार्ड इन 2013 बाय महरावाल गिरधर ट्रस्ट जैसलमेर एंड मेनी मेनी अदर अवार्ड्स। ही गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज।
2: हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट।
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkant.
2: Shri

0: कुमार बोस कला तबला।
1: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
2: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
0: Shri Janardhan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
1: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
2: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
0: Swami Brahmadev Samaj Seva.
1: Swami Brahmadev 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
2: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
1: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए ये संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ।
0: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी कला फिल्म अभिनय।
1: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बूम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
2: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी।
0: श्रीमती देवकी अम्मा जी समाज सेवा।
1: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती हैं। 3000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं।
2: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
0: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
0: डॉक्टर
1: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
2: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
0: Shrimati Sunita Godbole.
1: ये भी कितना गौरव का क्षण है, उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ, आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
0: श्री तेची गोबिन समाज सेवा।
1: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गोबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
2: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान।

0: He also led a team of delegations to meet the Vice President to report
1: Dr.
0: on the security
1: H. V. Hande, Chikitsa.
2: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
0: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
1: Shri
0: B.C. Roy Award.
1: Shri Gafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
2: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं। इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
0: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस। हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग पीएचडी लेवल स्टडीज इन फोक।
1: श्री मीर हाजी कासम कला ढोलक।
2: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
0: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द USA, UK, साउथ अफ्रीका, कनाडा, UAE, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
1: Shri Raghuveer Khedkar Kala Theatre.
2: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
0: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna Mannoprant Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
2: आर कृष्ण किटना, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
0: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज आल्सो
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी।
2: एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार साहित्य एवं शिक्षा।
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने NCERT में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
0: वेल प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर NEP 2020 एंड द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स।
1: श्री प्रवीण कुमार खेल एथलेटिक्स।

0: दिव्यांग।
1: और अब बारी इस 23 वर्षीय खिलाड़ी की। T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
2: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
0: श्री के विजय कुमार सिविल सेवा।
1: विजय कुमार जी CRPF के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ही स्ट्रेंथन्ड पब्लिक सेफ्टी
0: देवबा लाड दादा लाड कृषि।
1: देवबा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
2: श्रीरंग देवबा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
0: श्री अंके गौड़ा एम समाज सेवा।
1: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
2: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
0: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
1: 69-year-old Dr. Mandal, interventional cardiologist, has been in the field of education and health care in the country.
2: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
0: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
1: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar, Professor Buddh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
2: While working in the archaeological survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 excavations.
0: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
1: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खासतौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
2: श्री मांडलेवाला ही हैज अ लॉन्ग टर्म विजन दैट बाय 2047 नो सिटीजन शुड लूज लाइफ बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स। फॉर दैट ही हैज ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस इंडिया।
0: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
1: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
2: इंटरनेशनली डॉक्टर मिश्र हैज एडवाइज्ड नेपाल्स एमएलई पॉलिसी, लेक्चर्ड एट चाइनाज कैस, हानयांग यूनिवर्सिटी, साउथ कोरिया, थाईलैंड्स महिदॉल यूनिवर्सिटी एंड रशियाज अकेडमी ऑफ साइंसेज।
0: श्रीमती तृप्ति मुखर्जी, कला कंथा एम्ब्रॉयडरी।
1: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
2: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: She's also been acknowledged by the government of West Bengal by conferring on her the Bangashri Award.
1: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putr Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
0: वेल श्री मुखोपाध्याय इज
1: श्री सत्यनारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
2: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
0: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
1: Shri
0: been supplied to the
1: Pajanivel Khel Silambam.
2: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
0: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसन से आकर श्री पंड्या का सम्मान।
0: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
2: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया।
0: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
2: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
0: His work earned him the Vishwa Hindi
1: Samman. श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
2: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
0: Over a career spanning 6 decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
1: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
2: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
0: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
1: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
2: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
0: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.
1: Deepika Reddy, Kala Nritya.
2: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की 3 पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
0: श्रीमती रेड्डी वॉज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
0: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications, and organized numerous international conferences to bring cutting-edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
1: Shri
0: have borne fruit.
1: Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
2: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala, aur हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
0: श्री हरिचरण शैकिया परफॉर्म्ड सत्रीय डांस बिफोर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर and second president Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Also he performed the Bhargeet with Maniram Gayan Mokhtar at All India Radio in 1948.
1: Professor Vempati Kutumb Shastri,
2: 86 saal ke Shastri ji,
1: sahitya evam
2: shiksha vidwanon mein se hain. Aapne advait vedant darshan aur sanskrit kavya shastra mein bahut sare karya kiye hain. Namaskar karte hue, abhivadan karte hue अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
0: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। ही हैज आल्सो गाइडेड न्यूमरस डॉक्टरल स्कॉलर्स एंड डिलीवर्ड हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स।
1: प्रोफेसर शफी शौक, साहित्य एवं शिक्षा।
2: 100 से ज़्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है प्रोफेसर शफी शौक।
0: हिज ट्रांसलेशंस इंक्लूड हिज सीरीज ऑफ बुक्स अंडर द टाइटल द बेस्ट ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। ही हैज आल्सो रिटन स्क्रिप्ट्स फॉर न्यूमरस टीवी सीरियल्स एंड फिल्म्स।
1: श्री बलदेव सिंह खेल, हॉकी कोच।
2: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं, एक अनुभवी कोच हैं और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
0: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाग मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट।
1: श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत, कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह।
2: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
2: Ashok ji ne Bharat mein basmati chawal ki kheti ka kayakalp karne mein bahut bada yogdan diya hai aur is contribution ke liye आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
0: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
1: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
2: आभारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में

0: Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
1: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
2: Sridhar ji, आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल.
0: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस simultaneously through 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
1: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
2: Aap Kashi Hindu Vishwavidyalay ke Institute of Medical Sciences mein medicine ke manat professor hain. Sankramak rogon khas taur par visceral leishmaniasis कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है.
0: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लेशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट. ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड
1: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा.
2: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है. 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई.
0: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
1: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत.
2: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है.
0: He became a master of the art and served as authuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
1: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
2: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है.
0: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन. ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो.
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी.
2: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था. डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी.
0: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज.
1: श्री अरविंद वैद्य, कला थिएटर.
2: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है.
0: श्री वैद्य
2: काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है.
0: Shree Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted

0: see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: Please may I have attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of the
1: ceremony. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

0: पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज़्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉ शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the first civil investiture ceremony held at the Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with the Padma Vibhushan. In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was awarded Padma Bhushan for his services in the field of public affairs. Besides, Shatavdhani Dr. R. Ganesh received the award in the field of art. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received the Padma Bhushan for his contribution to trade and industry, while Dr. Kalipati Ramasamy Palanisamy received the award in recognition of his outstanding contribution to the field of medicine. Those eminent personalities who have been honoured with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar for her contribution in the field of sports and Taga Ram Bheel for his contribution in the field of arts. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan,

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम राम।
0: राम। देखिए सरिता बहन, खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये नारा है हमारे बच्चों के लिए, और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेल कूद कर बड़े हों, और हमारे जो देश में जितने भी खेल हैं उनमें वो गोल्ड मेडलिस्ट हो।
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने वंदना बहन। और आज अगर हम खेलों की बात कर रहे हैं तो आज है विश्व फुटबॉल दिवस,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: ऐसे में इसकी चर्चा ना करें तो कैसे भला।

0: हो सकता है। और अगर बात फुटबॉल की करें तो फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून, एकता और टीम वर्क की पहचान है। ये खेल ये दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है और हमें संघर्ष, अनुशासन और जीत के महत्व को भी सिखाता है।
1: बिल्कुल। और विश्व फुटबॉल दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खेल के व्यावसायिक प्रभाव और एकता को बढ़ाने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
0: और अगर बात करें तो फुटबॉल की शुरुआत बहुत पुराने समय में हुई थी, लेकिन आधुनिक फुटबॉल का विकास इंग्लैंड में माना जाता है। आज ये खेल पूरे विश्व में खेला जाता है और फीफा जैसी संस्थाएं इसे वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देती है।
1: बिल्कुल। और फुटबॉल दिवस का ये जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस है आज 100वीं वर्षगांठ का मना रहा है।
0: और भाई विश्व फुटबॉल दिवस के अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और खेल संस्थानों में बहुत सारी प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। और इसका जो वंदना बहन उद्देश्य है ना, लोगों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है।
1: जी बिल्कुल।
0: और भाई अंत में यही कहेंगे कि फुटबॉल केवल एक खेल नहीं है बल्कि लोगों को जोड़ने वाला ये माध्यम है। ये प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है।
1: जी, ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी हमारे भाइयों के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी। खासतौर से छुट्टियां इस वक्त चल रही हैं तो बच्चों को खेल कूद में देखिए शारीरिक विकास
0: होता है।
1: तो आगे बढ़ते हैं और अपने भाइयों को एक जानकारी दिलवाते हैं कि गर्मियों में स्वास्थ्य का सही रखने में आयुर्वेद की भूमिका। तो इसमें जो जानकारी दे रहे हैं वो है डॉक्टर उमेश सापरा से बातचीत कर रही हैं कमलेश मुदकल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: जब हम प्रकृति की बात करते हैं, मौसम भी हमें रंग बिरंगे मिलते हैं, लेकिन उस मौसम के साथ अगर अपना खान पान हमने सही नहीं रखा तो हम बीमार पड़ जाते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें। गर्मियों में स्वास्थ्य को सही रखने में आयुर्वेद की भूमिका, इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर उमेश कुमार सप्रा, जो MD PhD एसोसिएट प्रोफेसर हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में आयुर्वेद की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है।
3: देखिए, आयुर्वेद जो है हमारे दिनचर्या का हिस्सा है। जैसे आजकल गर्मी का सीजन है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में तेल का प्रयोग ना करें, तेल की जगह घी का प्रयोग करें। जो हम रसोई घर में मसाले यूज कर रहे हैं, अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, ये सब हींग हो गया, ये सब गर्म होते हैं, तो इस समय गर्मी के मौसम में उसकी मात्रा कम करनी चाहिए और ठंडे मसाले जैसे धनिया वगैरह इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसके अलावा अगर हमने स्वस्थ रहना है तो हमें ऐसी अपनी दिनचर्या बनानी, जैसे हम आयुर्वेद कहता है कि गर्मी के ऋतु में आप दिन में सो सकते हैं 1 से 2 घंटे। अगर आपका शरीर में थकावट लग रही है, कमजोरी लग रही है, आप 1-2 घंटे दिन में सोना चाहिए आपको। तो रहन सहन, खान पीन, अगर हम योग प्राणायाम करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, स्ट्रेस को दूर करते हैं, तो वो भी आगे जाके हमारे लिए बहुत लाभदायक हो।
2: जब हम बात करते हैं गर्मी की, कैसे समझें कि अब गर्मी का मौसम आ गया या अब गर्मी जो है अपने चरम पर पहुंच गई है?
3: जैसा कि हमें विदित है कि आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताई गई हैं, उसमें से ग्रीष्म ऋतु बताई गई है। इसका जो टाइम है वो 15 अप्रैल से लेके 15 जून तक होता है, जब सूर्य की किरणें बहुत तेज हो जाती है। और अगर आप बाहर आधे घंटे से ज्यादा सूर्य की किरणों में नहीं रह पाते तो ये दिखाता है कि सूर्य अपनी प्रखर ऊर्जा प्रदान कर रहा है, गर्मी दे रहा है, तो इसलिए ये ग्रीष्म ऋतु आती है।
2: जब हम बात करते हैं रोग की, तो रोग का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है, तो हम कितना भी ध्यान रखें कोई ना कोई रोग हमें आकर घेर ही लेता है। तो जो हम बात करते हैं गर्मी के रोग की, तो वो कौन कौन से हैं?
3: गर्मियों में नॉर्मली जो रोग होते हैं उसमें फूड पॉइजनिंग हो गया, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो गया, हीट स्ट्रोक मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा ताप लग जाना, टाइफाइड हो गया, इसी तरह सनबर्न हो गया, इसी तरह चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स, ये सारी बीमारियाँ, और गैस्ट्रोइंटाइटिस या पेट दस्त लगना और उल्टी आना, ये ज़्यादातर रोग गर्मियों में होते हैं।
2: और कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि अगर हम सोकर उठते हैं तो लगता है कि हमारे शरीर में जान ही नहीं है, या जो हमारे बुजुर्ग बहन है वो कहते हैं कि हमें तो उठते ही थोड़े थोड़े लगता है कि चक्कर आने शुरू हो गए, या उन्हें लगता है कि उठते ही हमें कुछ ना खाने को दे दो। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं?
3: ये जो सुबह उठते ही भूख लगना, ये कई बार जो पेशेंट डायबिटीज़ के होते हैं या प्री डायबिटीज़ के होते हैं उनमें ये लक्षण पाया जाता है, उसके कारण भी हो सकता है। या फिर अगर आपने खाना नहीं खाया, शरीर में ऊर्जा कम है, या बहुत ज़्यादा पसीने में रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी में रह रहे हैं, तो ज़्यादा पसीने आने से शरीर में से पानी और सोडियम का लॉस होता है, उसके कारण भी हमारे शरीर में थकावट वगैरह रह सकती है गर्मियों के सीज़न में।
2: और जो सिरदर्द की समस्या है वो भी आम हो गई है, और आजकल तो बच्चे भी जो हैं जब स्कूल से

0: आते हैं घर, वो भी आती है, कहते हैं हमारे अंदर अब शक्ति नहीं बची है। तो डॉक्टर साहब, जब हम छोटे बच्चों को ऐसे देखते हैं ना, तो लगता है कि अपनी पीढ़ी को हम क्या खाना खिलाएं जिससे कि उनके अंदर जो है काम करने की क्षमता वो बनी रहे।
1: ज्यादातर आजकल के बच्चे जो खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, इसमें हमें एनर्जी तो मिलती है पर पौष्टिक नहीं है। सारे हमारे शरीर में जो भी इसके पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं वो नहीं पूरी तरह से मिल पाते, और एक ही चीज ज्यादा मात्रा में मिलती है जो हमें फैट्स वगैरह है, प्रोटीन्स वगैरह उसमें कम होते हैं, तो उसके कारण भी हमारे शरीर में ऊर्जा कमी रहती है। और जैसे बच्चों में स्कूल में आने के बाद बहुत ज्यादा धूप में रहने से, या वहां पे जब बच्चा खेलता है और पूरा दिन वो थक जाता है, उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो भी उसके कारण उसको सिर दर्द या थकावट हो सकती है।
0: वैसे तो कहते हैं डॉक्टर साहब कि गर्मियों में हमें काफी पानी पीना चाहिए, लेकिन ये भी देखने में आया या सुनते हैं हम लोग या पढ़ते भी हैं कई बार कि आजकल हम एसी और कूलर का जितना उपयोग करते हैं तो पानी जो है वो हम कम ही पीते हैं, तो क्या ये भ्रम है या सही बात है?
1: शरीर हमारा 70% पानी से बना हुआ है, तो पानी तो हमें चाहिए। गर्मियों में स्पेशली हमें शरीर को हाइड्रेट करना है या पानी से भरपूर रखना है। पानी अगर हम शरीर में रहेगा तो कोई भी हमें आगे जाके शरीर में पानी की कमी के रोग नहीं हो सकते। तो एसी कूलर में रहने से शरीर तो ठंडा रहता है पर अंदर से गर्मी बढ़ती है,
0: जी
1: तो अंदर से हमारा शरीर उस जो टेम्परेचर है एसी का 24 डिग्री 25 डिग्री या उससे भी कम है, उसको नॉर्मल 37 डिग्री तक बनाने के लिए उसको शरीर को गर्म रखता है। तो शरीर बाहर से तो ठंडा है पर अंदर से गर्म होता है वो।
0: जब नाश्ता करें उसमें किन किन चीजों का उपयोग करें?
1: जैसे कि गर्मियों के सीजन में हमें सबसे पहले तो ऐसी चीजें खानी है जो हल्की हो, ठंडी हो, स्निग्ध हो और साथ में मीठे हो। इसमें जैसे नारियल का पानी पी सकते हैं, इसे आम का पन्ना, गर्मियों में दूध का प्रयोग आप कर सकते हैं, दूध में थोड़ा अगर चीनी या मिश्री डाल के कर सकते हैं, खजूर वगैरह का, काला मुनक्का वगैरह, आंवला का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें ठंडी हैं, ये आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। आप सर्दियों में जो भी सीजन के फ्रूट्स होते हैं गर्मियों में वो आप खा सकते हैं।
0: गर्मियों के फ्रूट्स से मेरे को याद है कि खरबूजा है या कि हम तरबूज खाते हैं, तो कुछ लोगों में ऐसे कि अगर वो खरबूजा खाते हैं तो उनको खाने के बाद कुछ अजीब सा हो जाता है, एक या दो फांके बाद वो खाते नहीं है।
1: जैसे ये जितने भी तरबूज है, खरबूजा है, ये सारे जो है पानी युक्त वाले होते हैं। अगर किसी शरीर में कोई भी पहले कोई बीमारी चल रही है, आम युक्त बीमारी चल रही है, ऑटोइम्यून डिजीज चल रहा है, तो उसके कारण ये कई लोगों को पचते नहीं है सही ढंग से। तो एक तो या तो ये फ्रेश खाएं, और अगर कोशिश करें कटा हुआ मत खाएं, जितनी भूख है उतना ही खाएं, ज्यादा मात्रा में एक ही टाइम मत खाएं, क्योंकि जब भी हम ज्यादा मीठा खाते हैं तो शरीर स्लो डाउन हो जाता है, हमें थकावट, कमजोरी या नींद आने लगती है।
0: और आजकल तो एक चलन और भी है डॉक्टर साहब की, कोई भी हम फल खाएंगे चाहे वो सीजनली खाते हैं तो उसको पहले फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे और उसके बाद में उसको खाते हैं, ऐसा करके खाना सही है?
1: देखो फ्रिज में रखने से यही होता है कि उसकी लॉन्गेविटी या लंबे समय तक वो चल सकती है, पर जब भी कोई फ्रूट हम फ्रिज में ज्यादा देर तक रखते हैं तो उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, वो आगे जाके बीमारी का कारण बनता है। स्पेशली कोशिश करें कटे हुए फ्रूट्स वगैरह फ्रिज में ना रखें, फ्रेशली कंज्यूम करें उसी समय, अगर रखना भी है तो उसको बिना कटे हुए ऐसे ही रखें उसको।
0: आम है वो तो फलों का राजा है, लेकिन जो डायबिटीज वाले हैं वो कैसे आम खाएं? आम हमें कैसे खाना चाहिए?
1: देखो अकॉर्डिंग टू अपनी ब्लड शुगर लेवल हमें मात्रा के अनुसार खाना चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अदर फ्रूट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो आम है वो ज्यादा शुगर नहीं बढ़ाते, केला उससे ज्यादा बढ़ाता है, या और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उससे भी ज्यादा है। तो अगर हमने आम खाने हैं तो थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में एक टाइम में खा सकते हैं, इकट्ठे एक ही दम मत खाना।
0: कहते हैं कि जो पेट है वही सब बीमारियों की जड़ है, और पेट की अगर गर्मी बढ़ी तो आपको रोग होंगे ही होंगे, तो ये जो पेट की गर्मी है उसको हम कैसे शांत करें?
1: पेट की गर्मी को शांत करने के लिए ठंडी चीजें लेनी चाहिए, जैसे आंवला हो गया, नारियल पानी हो गया, दूध हो गया, ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए, जो खस हो गया, गोंद कतीरा हो गया, ये ठंडी चीजें हैं जो हम अगर इस मौसम में यूज करते हैं तो हमारे पेट की गर्मी कम होती है। इसी तरह बेल का शरबत
0: और छाछ तो हमारे गाँव में उपयोग होती है तो वो तो सभी पीते ही है बड़े शौक से,
1: पर छाछ में मसाले वगैरह इस मौसम में ज्यादा नहीं डालने चाहिए। अगर आपको छाछ वगैरह पीनी है तो उसको पतला करना चाहिए और मलाई वगैरह निकाल के पीना चाहिए, क्योंकि मसाले अगर डालेंगे तो वो भी गर्मी हमारे शरीर में करते हैं।
0: हमें अपने शरीर को बिल्कुल निरोग रखना है, इसीलिए कुछ लोग इस समय पर भी व्यायाम की तरफ जाते हैं और योग भी करते हैं। तो जब हम व्यायाम की बात करते हैं तो व्यायाम कितना करना चाहिए, और योग की तरफ जाते हैं तो योग में किन किन क्रियाओं से हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं?
1: देखिए गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में पसीना बहुत ज्यादा आता है, उसमें पानी का और सोडियम का लॉस भी होता है, तो आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में ज्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, अपने शरीर को हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए या वॉक करनी चाहिए, सैर करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बहुत ज्यादा व्यायाम इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए, योग प्राणायाम में ध्यान लगाना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए।

0: खाने में इस मौसम में घी का छोक लगाना चाहिए, सब्जियों में लौकी, खीरा, इसी तरह हरी सब्जियां वगैरह खानी चाहिए, सरसों, मेथी जो पित्तवर्धक है उनको छोड़ना चाहिए। सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं इस मौसम में,
1: जी
0: गर्मियों में सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं, मटके पानी का प्रयोग कर सकते हैं, इसी तरह समोसा, नमकीन, इन मसाले वगैरह इनको छोड़ देना चाहिए। इसी तरह दही का प्रयोग गर्मियों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद कहता है कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी, इन सबको अवॉइड करना चाहिए।
1: और जो आपने घी की बात करी, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये भ्रम है कि गर्मियों में जो है वो घी नहीं खाना चाहिए।
0: बिल्कुल, आयुर्वेद कहता है कि घी जो होता है ठंडा होता है, तो ठंडा है, मीठा है, उसका भीत वीर्य है, तो ये एक तरह से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन जाते हैं, अगर घी हम रेगुलरली प्रयोग करते हैं तो टॉक्सिन्स को भी शरीर से बाहर निकालता है, या जितने भी फैट सोलेबल इम्प्योरिटीज हैं उसको डिजोल्व करता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो घी का प्रयोग मात्रा के अनुसार हम रेगुलरली कर सकते हैं, उसमें कोई इतना नुकसानदायक नहीं है।
1: अगर मान लीजिए शरीर में कोई रोग आ ही गया है तो उसका निदान हम कैसे करेंगे? अगर किसी को वॉमिटिंग आ गई है या सिर
0: अगर
1: दर्द
0: जैसे
1: है।
0: नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो आपको एक तो कोशिश करना चाहिए नींबू को काट के उसका जो अंदर वाला पार्ट है उसको सूंघना चाहिए धीरे धीरे, तो उससे भी आपको अगर वोमिटिंग की सेंसेशन या नोजिया हो रहा है तो वो भी ठीक हो सकता है।
1: जी
0: इसी तरह घर में थोड़ा धनिया, अजवाइन, जीरा, काला नमक, इसको एक पानी में उबाल के थोड़ा थोड़ा पानी को सिप करना चाहिए, वो भी आपको डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकता है और आपको नोजिया वोमिटिंग जहाँ उल्टी आने की प्रक्रिया है उसको रोक सकता है।
1: कई बार ये होता है कि आपने कोई दवाई किसी और मरीज को बताई है और उसने जो है वही चीज आगे बता दी है, तो वो दवाइयाँ क्या नुकसान करेंगी या उसको भी उतना ही फायदा देंगी?
0: देखिए, प्रकृति के अकॉर्डिंग आयुर्वेद कहता है कि हर एक पेशेंट को मेडिसिन देनी चाहिए। अगर उसकी प्रकृति पित्त प्रकृति है, दूसरे की वात प्रकृति है या कफ प्रकृति है, तो हो सकता है वो थोड़ा नुकसान भी कर सकती है। सो पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग, पेशेंट की डिजीज़ की क्रोनिसिटी के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन दी जाती है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब कौन कौन सी जानकारी हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे?
0: गर्मी के सीज़न में मैं यही कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा बाहर मत घूमें, स्पेशली जो 12 से लेकर 4 बजे का टाइम है उसमें आप अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना भी पड़े तो पानी पी के निकलें, छाता लेके निकलें, सनग्लासेस लगा के निकलें बाहर, और कोशिश करें बाहर का खाना बिल्कुल मत खाएं, पानी अपना साथ रखें। गर्मियों के मौसम में बाहर का पानी बिल्कुल मत पिएं और कोशिश करें हल्का खाना खाएं और बाहर का कटा हुआ या कोई भी हैवी फूड वगैरह मत प्रयोग करें।
1: कुछ कहावत जो है हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, प्रातः काल फल रस पीवे, दोपहर लस्सी जो जन पीवे, रात्रि काल में दूध जो पीवे, वैद्य के घर कभी न जावे। क्या ये सही?
0: बिल्कुल सही है ये जो आप कहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर के जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, विषाणु हैं, वो बाहर निकल जाएंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए और हमारे श्रोताओं को इतने विस्तृत रूप से आयुर्वेद की भूमिका के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी हाँ, आयुर्वेद केवल रोगों का उपचार नहीं बल्कि स्वास्थ्य जीवन जीने की कला सिखाता है। गर्मियों में सही खान पान, नियमित दिनचर्या और प्राकृतिक उपाय अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। और भाई, ऐसी ही जानकारी हम ले रहे थे गर्मियों में स्वास्थ्य का सही रखने में आयुर्वेद की भूमिका, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर उमेश सापरा, और इनसे बातचीत कर रही थी कमलेश मुद्गल।
3: जी हाँ, और अब करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन और सुनवाते हैं बबीता की आवाज़ में ये रागनी।

0: देखिए सही था बहन। अभी हमारे भाई सुन रहे थे बबीता की आवाज़ में, ये रागनी और किस्सा था मोर ध्वज का। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारा ये एक योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, राष्ट्रीय आयुष मिशन। इसमें जो होता है कि वे जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे बच्चे भी हैं, कोई भी है, उनके लिए जो आयुर्वेद की मेडिसिन है, ये और जगह जगह जो खुले हुए हैं जन औषधि केंद्र।
1: बिल्कुल। और ये ना भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है,
0: जी
1: जिसे आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास और प्रचार के लिए शुरू किया गया। और इसका जो उद्देश्य वंदना बहन, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है उसको मजबूत बनाना तथा
0: बिल्कुल
1: लोगों तक सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।
0: बिल्कुल। और जैसे कि 60 साल के बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना, उनके कार्ड बन जाने के बाद उनका फ्री इलाज होना, ये सब इसी में आता है।
1: बिल्कुल। और कहते हैं ना कि आयुष चिकित्सा सेवाओं का जो है ना, इसमें विस्तार करना, ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, आयुष अस्पतालों और औषधालय को मजबूत बनाना, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना,
0: जी
1: आयुष शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, लोगों की को प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा के प्रति जागरूक बनाना। और
0: बिल्कुल
1: इसके बहुत सारे ऐसे हैं, आपने जैसे भी बताया कि भाई इसमें आयुष संस्थाएं, सेवाएं हैं, शैक्षणिक संस्थानों का विकास हो रहा है, औषधीय पौधों का संरक्षण किया जा रहा है और इसकी खेती भी अच्छी खासी हो रही है, किसान जो है मुनाफा भी कमा रहे हैं।
0: मुनाफा भी
1: और
0: कमा रहे हैं। और देखिए हमारे जो भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको आसानी से ये दवाइयाँ उपलब्ध भी हो रही हैं, जिससे वो अपना अच्छे से इलाज भी हो पा रहा है।
1: बिल्कुल। लोगों को कम खर्च में स्वास्थ्य सेवाएं मिल
0: जी
1: रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार देखा जा रहा है। तो भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा जो पद्धति है ना, उसको पूरी विश्व में पहचान मिलती जा रही है।
0: बिल्कुल, ये हमारी पहले से पहले भी हम इस चीज़ का ही, आयुर्वेद का ही से ही इलाज करते थे,
1: बिल्कुल।
0: और आज भी अगर हम इसको बढ़ावा देंगे तो हमारी ये जो पद्धति है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक वरदान साबित होगी।
1: बिल्कुल। और भारत की जो प्राचीन चिकित्सा है, विरासत को सुरक्षित रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो भाई ये था हमारा राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात, और इससे जानकारी के बाद क्यों ना हम मनोरंजन करें अपने भाई बहनों का।
0: जी हाँ। और अब सुनवाते हैं ये रागनी यशवीर की आवाज़ में।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे यशवीर की आवाज में ये रागनी और किस्सा था कृष्ण सुदामा का। और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब सुनिए समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामास्वामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG

0: इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूप रेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: सरिता बहन, देखिए आज हम बातचीत करेंगे, अपने भाइयों से कुछ जानकारी भी दिलवाएंगे और उनका मनोरंजन भी करवाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले जैसे कि हमारी खेती क्यारी की अगर बात करें, तो इस वक्त कपास की अगर बात करें, जिसे हम सफ़ेद सोना भी
1: बिल्कुल।
0: कहते हैं, तो उसके बारे में हम उनकी जानकारी भी दिलवाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि भारत सरकार द्वारा देश में कपास की जो खेती है उसकी उपज को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि कपास को घटते उत्पादन और खराब गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है।
1: बिल्कुल कहा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कपास यहाँ की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है।
0: जी
1: और कपास की अगर हम बात करें ना वंदना बहन, तो ये एक फसल नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सूती, कपड़े, धागे, तेल, पशु आहार तथा अनेक औद्योगिक उत्पाद बनाए जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: भारत विश्व के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में गिना जाता है। और
0: बिल्कुल
1: अगर हम प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और कपास की जो अच्छी पैदावार से किसानों की आय बढ़ती है और वस्त्र
0: बिल्कुल
1: उद्योग को पर्याप्त कच्चा माल मिलता है।
0: बिल्कुल। और किसानों को जो कीट प्रतिरोधी, जलवायु अनुकूल बीज, उन्नत खेती और तकनीकें प्रदान की जाती हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि किस तरह से हमें अपनी कपास को ठीक रखना है, कीटों से बचाना है, जलवायु का कैसे नियंत्रण रखना है और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना है।

0: बिल्कुल। और जिस तरह की भाई कपास हम दिवस की बात करते हैं, तो ऐसे में क्यों ना हम एक अच्छी सी वंदना बहन जानकारी ले ले, जिसमें कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जा रही है। और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवराग बाजरा बाजिया, उनसे बात कर रही है प्रतिमा शर्मा, और देवराय बाजरा जो है सहायक प्रोफेसर है जोबनेर यूनिवर्सिटी जयपुर में।
1: जी हाँ, तो बातचीत कर रही हैं देवराम बाजा से प्रतिमा शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। किसान भाई बहनों, खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। विषय है कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी का प्रभावी प्रबंधन। आप जानते हैं कि कपास को सफेद सोना कहा जाता है क्योंकि ये किसानों की आय बढ़ाने वाली प्रमुख नकदी फसल है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गुलाबी सुंडी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यदि समय रहते सही प्रबंधन किया जाए तो इस नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है और इसीलिए हम ये विषय आपके लिए लेकर आए हैं, कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी प्रबंधन। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवराम बाजिया, सहायक प्रोफेसर श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौनबेर जयपुर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार
2: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त समय कौन सा है?
3: देखिए किसान भाइयों, कपास की बिजाई के लिए जो सबसे उपयुक्त समय माना गया है वो 15 अप्रैल से लेकर 10 जून तक का सबसे उपयुक्त समय है। उसमें भी जो मई का महीना है, अगर इस महीने के अंदर आप बिजाई कर देते हैं तो उसमें अच्छी पैदावार होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इस समय कीट बीमारियां और तमाम तरह की जो कपास की फसल में समस्याएं आती है वो कम से कम आने की रहती है और पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होती है।
2: तो डॉक्टर साहब, कपास की बुआई करते समय खेत की तैयारी और बीज का उपचार करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
3: देखिए, जो कपास की फसल है इसमें तीन तरह की किस्में लगाई जाती है, जिसमें एक तो देसी कपास की किस्में होती है, एक अमेरिकन होती है, तीसरी जो होती है वो है संकर किस्में। तो जो संकर किस्में होती है उसके अंदर भी बीटी और नॉन बीटी दो तरह के बीज आते हैं, जिनको अंग्रेजी में हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। संकर किस्में वो ऑलरेडी बीज उपचारित आता है उनका, उनको उपचार करने की जरूरत नहीं होती। और जो अमेरिकन किस्में हैं और देसी किस्में हैं जो हम घर पे अपना बीज भी तैयार कर सकते हैं, उनको बीज के उपचारित करने की जरूरी होती है। ये देखना होता है कि बीज आपके खेत के अंदर, जैसे आप लगातार कपास की फसल ले रहे हैं तो पहले क्या क्या समस्या आई, जहाँ पे अगर दीमक की समस्या है लगातार आती है, उखेड़ा एक रोग आता है उकटा रोग जिसको बोलते हैं, अगर वो आ रहा है तो उसके लिए भी बीज का उपचार करना है। एक रस चूसक जो कीट आते हैं वो शुरुआती अवस्था में फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए तो उनके लिए भी उपचार करना पड़ता है। और अगर आपको ये फसल अच्छी लेनी है तो एक इसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है जिसको FIR बोलते हैं, फंजीसाइड फफूंद नाशक। सबसे पहले तो ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 ग्राम लेना है 1 किलो बीज के अंदर, जिसके अंदर वो बायो पेस्टिसाइड है उसको आप बीज से उपचारित करना है। इसके बाद में आपको इंसेक्टिसाइड, जैसे रस चूसक कीट है जिसमें हरा तेला, सफेद मक्खी और माहू चेपा हो गया, और एक चुरड़ा थ्रिप्स जिसको बोलते हैं, इन कीटों की अगर समस्या है तो वहां पे सकिंग पेस्ट जहाँ पे आ गए, वहां पे इमिडाक्लोप्रिड जिसको हम गाउचो के नाम से भी बोलते हैं, 600 FS 7 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज का फफूंदनाशक के बाद में इंसेक्टिसाइड से उपचारित करना है। इसके बाद में आप एजोटोबैक्टर, जो पौधे को पोषक तत्व शुरुआती अवस्था के अंदर नत्रजन जो उर्वरक है वो पौधे को अवेलेबल करवाता है, एजोटोबैक्टर का 1 पैकेट प्रति किलो बीज के अंदर मिलाकर जब FIR पूरा हो जाए उसके बाद में 3 से 4 घंटा बीज को पेड़ के नीचे छाया में सुखाएं और फिर उसकी बिजाई कर देनी।
2: डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हमने कहा कि कपास को सफेद सोना कहा जाता है और किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी ये खेती होती है, तो किसान भाई ये भी सोचते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं जिसे लगाने से उन्हें आने वाले समय में जब फसल काटें तो उनको कई गुना बढ़कर मिले, तो कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं?
3: देखिए, जो कपास की जो फसल है, जो अभी मैं बताया कि तीन तरह की होती है, एक तो देसी किस्में होती है, एक अमेरिकन किस्में है, तीसरी जो संकर किस्में है। वर्तमान में अगर हम भारतवर्ष का परिदृश्य देखते हैं तो 95% जो खेती है वो कपास की संकर किस्मों की हो गई है, जिसमें भी बीटी कपास की खेती करते हैं। और बीटी कपास

0: भारतवर्ष की हम बात करते हैं तो तीन जोन में बांटा हुआ है, जिसके अंदर उत्तरी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत। अब अगर आप इन किस्मों की बात करते हैं तो हर जोन वाइज अलग अलग लगभग 4,000 से भी ज्यादा किस्में भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित है। आप जिस भी क्षेत्र के अंदर हैं वहाँ पे सबसे पहले तो यह है कि आप मिट्टी पानी इसकी जांच जरूर करवाएं। जांच करवाने के बाद में आपके क्षेत्र के अनुसार अनुमोदित जो किस्म है, जैसे उत्तरी भारत के अंदर हमारा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान रीजनल स्टेशन सिरसा के अंदर बना हुआ है, तो वहाँ पे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और राजस्थान एग्रीकल्चर
1: और अब तो
0: यूनिवर्सिटी
1: हर
0: है,
1: जिले
0: और
1: में
0: हर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि सुपरवाइजर जो इसको पर्यवेक्षक बोलते हैं वो हर गांव गांव के अंदर है, तो उनसे संपर्क लेके भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं कुछ किस्म के नाम भी बता देता हूँ जो कॉमन है कि जैसे पंजाब हरियाणा और राजस्थान में आप लगा सकते हैं, जिसमें जैसे RCS 314, 317 है, 134 ये RCS की है, MRC 6029, 6025 है, ऐसे ही कुछ PAU की है, PAUBT 2, 3, 647, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको आप लगा सकते हैं। अगर किसान भाई देसी कपास की किस्में लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर देसी के अंदर WH1 CICR2 है, RG8 है, HD123 है, LHH144 है,
1: ये
0: LD327
1: उन्नत
0: है,
1: किस्में हैं
0: ये
1: कुछ
0: देसी किस्में हैं
1: देसी
0: जो
1: किस्में
0: देसी
1: हैं।
0: कपास की खेती
1: जी
0: करना
1: जी
0: चाहते हैं। इसके अलावा कुछ अमेरिकन किस्में भी हैं जिसमें 1098 है, H1098 है, H1117 है, RS2013 है, ऐसी कुछ किस्में हैं जो किसान भाई लगा सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने नज़दीक के जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि जो पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, कृषि अधिकारी हैं और विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिकगण हैं उनसे भी आप संपर्क करके अच्छी उन्नत किस्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं हम गुलाबी सुंडी पर। तो ये गुलाबी सुंडी क्या है और कपास की फसल को कैसे नुकसान पहुंचाती है?
0: देखिए, कपास की फसल के अंदर लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा कीट पतंगों से नुकसान होता है, जिसके अंदर जो बॉलवर्म जिसको बोलते हैं सूंडियाँ, तो उसमें जब BT 2002 के अंदर आई उससे पहले 4 तरह के सूंडियाँ लगती थी, जिसमें से एक ये गुलाबी सूंडी भी थी। तो
1: अच्छा।
0: काफ़ी समय तक तो गुलाबी सूंडी का प्रकोप, जब BT आई तो गुलाबी सूंडी का प्रकोप न के बराबर था, बट अब काफ़ी टाइम से ये देखने को मिल रहा है, किसानों की तरफ से भी शिकायतें हैं कि BT कपास के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ गया। उस सबसे अहम जो कारण जो मेरे को नज़र आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि किसान भाइयों को जब BT कपास लगाने के लिए बताया गया, सलाह दी गई, तो उसके साथ में एक नॉन BT बीज का पैकेट भी दिया जाता था ताकि वो खेत के चारों तरफ नॉन BT दो दो तीन तीन लाइन लगाए, क्योंकि कीड़ों के अंदर एक विशेषता होती है कि जो भी हम प्रकृति के अंदर जो कीट आए हैं वो धरती के ऊपर डोमिनेंस है इनका,
1: जी
0: तो इनको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, इनको प्रबंध नहीं किया जा सकता है। तो जब इनका कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ इनकी शरीर में या इनके अपने जीन के अंदर कुछ ऐसा बदलाव कर लेते हैं कि ये उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं, जिसको सहनशीलता बोलते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया कि वो किसान भाइयों ने शायद जहाँ तक गलती करी कि वो जो नॉन BT बीज था उसको तो लगाया नहीं, और वो BT लगाने से इस BT के प्रति सहनशीलता डेवलप हो गई। जो ये गुलाबी सुंडी है, ये गुलाबी सुंडी क्या करती है कि ये बीज के अंदर एक बार जो टिंडा बनता है उसके अंदर ये घुस जाता है और अंदर बैठा बैठा बीज के अंदर तक बीज को खाता रहता है,
1: खोखला कर देता
0: और
1: एकदम।
0: जब एडवर्स कंडीशन होती है, इसके अनुकूल वातावरण नहीं रहता है, तो 2 साल तक भी इसका जो लार्वा है वो जीवित सुसुप्त अवस्था के अंदर बीज के अंदर पड़ा रहेगा। तो इसलिए जब भी फसल की, जैसे फसल की चुनाई कर देते हैं और जो उसका अवशेष बचा हुआ है तो वहां पे इसका जो प्यूपेशन होता है सुसुप्त अवस्था के अंदर जाता है, तो एक तो खेत की बिल्कुल साफ सुथरा कर देना चाहिए, वहां
1: अच्छा।
0: इसका जो भी बचा हुआ अवशेष है, फसल अवशेष, उसको इकट्ठा करें और खेत से बाहर ले जाके उसको जला
1: डॉक्टर
0: देते
1: साहब,
0: हैं।
1: ये तो आपने सुरक्षा के लिए बताया, लेकिन किसान भाई कैसे पहचान करें कि ये गुलाबी सुंडी है? क्या पहचान है इसकी?
0: देखो, ये जो गुलाबी सुंडी होती है, जब कपास की फसल खड़ी होती है और उसमें फूल आते हैं तो गुलाब के फूल की तरह जो कपास के फूल आएंगे वो एक तो खुलेगा नहीं, और इसका जो टिंडा है उसके अंदर जब घुस जाएगी ये, तो फिर जब टिंडे को खोलेंगे तो 2 बीज एक जगह चिपके हुए भी दिखाई देंगे आपको।
1: अच्छा।
0: डबल सीडिंग भी इसका एक करेक्टर है जिसको बोलते हैं, 2 सीड एक जगह चिपक जाते हैं और वो अंदर से उसका एम्ब्रियो और बीज का जो भी प्रोटीन है उसको वो खाती रहती है। तो इसके लिए यह है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स खेत में दिखाई देते हैं तो सबसे उपयुक्त और सबसे बेस्ट इसका तरीका एक ही है कि शुरुआती अवस्था में अगर आपको लक्षण दिखाई दे तो इसमें क्या होता है कि चार अवस्थाएं होती है, पहले तितली बनती है, फिर तितली अंडा देती है, अंडे से फिर लट बनेगी और लट से फिर प्यूपा बनेगा और फिर वापिस प्रौढ़ बनेंगे। तो जब आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे कि अब ये तितली आने वाली है या आ गई है तो उस टाइम आप खेत के अंदर फेरोमोन ट्रैप्स 10 से 12 प्रति हेक्टर लगा दें। फेरोमोन ट्रैप इसके लिए काफी मददगार होते हैं और उसको लगाने से क्या होगा कि जो उसमें नर है वो वहां पे फंस जाएगा, उसमें गंध होती है मादा की, और अगर फिर भी ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम एक कीटनाशक दवा आती है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG, जिसकी 200 ग्राम 500 लीटर पानी में घोलकर उसके साथ में स्टिकर जरूर मिलाएं, जैसे 3 लीटर पानी के अंदर 1 ml स्टिकर जो चिपचिपा गोंद होता है, उससे क्या होता है कि दवाई की गुणवत्ता बढ़ जाती है और लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है। तो इस तरह से इस सुंडी को आप प्रबंधन कर सकते हैं।
1: अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तब छिड़काव
0: करना है अदरवाइज।
1: तो डॉक्टर साहब, कपास की खेती के साथ क्या किसी फसल चक्र को भी अपनाया जा सकता है?
0: जैसे कि आपने कपास की फसल ली है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट फसल आती है उसके अंदर आप गेहूं ले सकते हैं, और उसमें गेहूं चेंज करने से क्या होगा कि जैसे लगातार आप एक ही फसल लेते हैं तो कीटों का, बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है।
1: तो चलते चलते डॉक्टर साहब, क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे उन किसान भाई बहनों को जो कपास की खेती कर रहे हैं और चिंतित भी हैं गुलाबी सुंडी को लेकर?
0: देखिए, मैं किसान भाइयों को यही दूंगा कि एक तो आप जो भी फसल लेते हैं तो सबसे पहले तो बीज, अगर आपको सही क्वालिटी का जो भी अनुमोदित भारत सरकार की जो दुकान है या जहां से भी बीज आपको मिलता है वहां पे पक्का बिल जरूर लें उससे, जहां से भी बीज अगर आप खरीद के लाते हैं। अगर आपके क्षेत्र के अनुसार अनुमोदित किस्म आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। दूसरा ये है कि इस समय जो तापमान चल रहा है आपको ये ध्यान रखना है कि आंधी बारिश का भी दौर चलता है तो बीज महंगा आता है और कुरंड होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, तो मौसम विभाग के जरूर संपर्क में रहें।
1: और सिंचाई व्यवस्था का भी,
0: सिंचाई का
1: उसका भी बता दें डॉक्टर साहब, कितने बार करनी है, कैसे करनी है?
0: सिंचाई का ऐसा होता है कि इसमें जो पहली सिंचाई है वो जितनी देर हो सके उतनी देरी से करनी चाहिए, उससे ये होगा कि उसकी जड़ें अच्छी मजबूत हो जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक दवाई का छिड़काव करीब 50 से 60 दिन तक कपास की फसल में शुरुआती अवस्था में नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: अगर हम शुरुआती अवस्था में ही किसी कीटनाशक दवा का छिड़काव कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इकोसिस्टम है, जो हमारे प्राकृतिक दोस्त हैं खेत के अंदर पनप रहे हैं, वो सबसे पहले खत्म होते हैं और उससे दुश्मनों की तादाद ज्यादा बढ़ जाती है और फिर हमको उसको प्रबंधन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।
1: तो सजग किसान ही सफल किसान होता है और समय पर पहचान और सही प्रबंधन से कपास की फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जो आज जानकारी दी उससे किसान भाइयों को जो कपास की खेती कर रहे हैं बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा और सुरक्षित भी वो अपनी कपास की खेती को रख पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जानकारी कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी प्रबंधन। डॉक्टर देवराम बाजा से बात कर रही थी प्रतिमा शर्मा, और जो कि कपास की बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को उन्होंने दी है। इससे वो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ होगा और जिन्होंने कपास की फसल लगा रखी है
3: सुंडी से बचाव कैसे करना है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से
2: जो बचाव हैं वो सब आपको मिल गई होंगी इसकी पूरी तरह से जानकारी।
3: और अब वंदना बहन, क्यों ना अब एक हम
2: बाइट भी सुनवाते हैं। एक बाइट सुनवाते हैं इफको की 55वीं वार्षिक आम सभा पर, और बातचीत कर रहे हैं इसमें प्रबंधक निदेशक श्री KJ पटेल से PS भाटी, जो कि इफको के निदेशक हैं श्री KJ पटेल। तो इनसे सुनते हैं ये बातचीत।
4: किसान भाइयों, आपको बहुत ही जानकर खुशी होगी कि इफको की 55वीं आम सभा की बैठक हुई है और इसमें जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे जो किसानों के मुद्दे हैं वो सब हल कर दिए, और जैसा कि आप जानते हैं भाई इफको आपकी अपनी संस्था है इसलिए आपको जिस तरह देश में कोई भी दिक्कत आती है तो हम सब साथ रहते हैं। हमारे साथ हैं इफको के प्रबंध निदेशक श्री के जे पटेल साहब, जिन्होंने आज एजीएम आम सभा की बैठक में बहुत सारी चीजें किसान भाई आपको बतानी है। तो पटेल साहब, किसान भाइयों क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे हमारे किसान भाई कम से कम खाद का उपयोग करें, जो आपके उपयोगी इफ्को के जो खाद है उनका प्रयोग करें?
5: बस मैं एक ही बात किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ इफ्को के माध्यम से। देखिए, देश में केमिकल फर्टिलाइजर जो हम उपयोग करते हैं, कोई भी किसान भाई उपयोग करते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। एक तो होता है शारीरिक नुकसान, क्योंकि प्रदूषण होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करके अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे हमारे किसान भाई, तो उससे हमारी धरती को नुकसान होता है, वायु को नुकसान होता है, पानी प्रदूषित होता है, और जो उपज निकलती है, जो फसल होती है, उस फसल में भी ऐसे तत्व चले जाते हैं जिसके चलते हुए आज हम सब परेशान हैं। तो हम अगली पीढ़ी की सोचें तो हमें ये देखना चाहिए कि केवल केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग से अब आगे नहीं बढ़ सकते। हमें यदि कोई फर्टिलाइजर का उपयोग करना है तो हमें, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को अपनाएं, हर किसान अपने एक एकड़ ज़मीन पे ऑर्गेनिक खेती करें। हमारे पास इफ्को में ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि बायो स्टिम्यूलेंट्स है, हमारे ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स है, हमारे नैनो फर्टिलाइजर्स है, जो कि इसका आविष्कार देश में हमने किया। हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे किसान यदि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करके, देश पे जो सब्सिडी का बोझ है, और वो बोझ आज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ये जो वेस्ट एशिया की वॉर के कारण कीमतें जो हैं रॉ मटेरियल्स की, चाहे लें आप या फर्टिलाइजर्स की लें, तो इतनी बढ़ चुकी है कि इस स्थिति में हमारे सब्सिडी का बोझ देश के जो तिजोरी पे देश के ऊपर आएगा उसको कम करें, और हम ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फर्टिलाइजर्स को अपनाएं, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। और इफ्को इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हम गांव-गांव तक जाकर के, किसान किसान तक जाकर के, हमारे जो बायो फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, बायो स्टिम्यूलेंट्स, बायो डीकम्पोजर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको ज्ञात कराएंगे, उनको समझाएंगे। और इस समझ के साथ में अगर हमारा किसान भाई अगर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फार्मिंग की तरफ या नैनो फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, देश का भी फायदा होगा, किसानों का भी फायदा होगा, और हम सब समृद्ध होंगे।
4: बिल्कुल पटेल साहब, आपने सही कहा। इस साल की क्या उपलब्धियां इफ्को की रही हैं और भविष्य की क्या योजना है?
5: इफ्को की इस साल की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि हमने वर्ष 25-26 के दौरान जो हमें टारगेट दिए गए थे फर्टिलाइजर बनाने के, केमिकल फर्टिलाइजर्स खास करके यूरिया, डीएपी, एनपीके वगैरह का, वो हमने पूरा किया। मैं तो ये कह सकता हूँ कि यूरिया फर्टिलाइजर्स का जहाँ तक सवाल है, तो वर्ष 25-26 के दौरान जो हमको डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर से जो एक क्वांटिटी बनाने के लिए कहा गया था, उस लक्ष्य से भी हमने पार करके 2,00,000 टन और अधिक यूरिया बना करके उसका उत्पादन करके ये साबित कर दिया कि इफ्को हमारे किसानों के लिए, हमारे देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित है और आगे भी रहेगी।
4: आखिर में किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे किसान भाई पूरी खेती के साथ अच्छा काम करें और संतुलित खादों का भी प्रयोग करें?
5: देखिए, किसान भाइयों को मैं एक ही बात का रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप किसान भाई, हम समझते हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं खेतों में, खेत खलिहान में जब इतनी मेहनत होती है तब जाके फसल आती है, और वैसे आपकी जो मेहनत है उसको कभी भी बेकार नहीं होना है। और एक इफ्को जैसी संस्था जो कि किसानों की संस्था है, किसानों ने इसको इन्वेस्ट किया है, और ऐसे किसानों के लिए जो काम करने वाली संस्था है, इसकी तरफ से इसके प्रबंध निदेशक के रूप में मैं किसानों को एक आह्वान करता हूं कि मेरे किसान भाइयों, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को अकेले अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं तो आप 25% कम कीजिए, 50% कम कीजिए, नई टेक्नोलॉजी के फर्टिलाइजर्स अपनाइए, आप देखिएगा देश भी आगे बढ़ेगा, सब्सिडी का बोझ कम होगा। 2,00,000 करोड़ की सब्सिडी हमने देखा है कि आज पिछले वर्ष हमने इतने खर्च किए, देश तो पूरा सक्षम है, जितनी ज़रूरत किसानों की है उतनी ही फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमें आदेश है सरकार की तरफ से। लेकिन हम किसानों को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये सब्सिडी का जो बोझ है उसको कम हो जाएगा, अगर आप 25% भी बोझ कम कर देंगे, जो पैसे बचेंगे ना वो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, वैसे ये उपयोग किया जाएगा, देश का भी भला होगा, और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से बाहर से आने वाले जो रॉ मटेरियल्स या फर्टिलाइजर्स हम विदेशों से खरीदते हैं, वहाँ हमारा पैसा जा रहा है, वो पैसा भी जाना बंद होगा, रुपये की कीमत जो आज डॉलर के सामने गिरती जा रही है उसमें भी फायदा होगा।
4: बिल्कुल सही बात है पटेल साहब, आपने जो किसानों को आह्वान किया है, आपकी बात को भी बिल्कुल समझेंगे और उसको अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो अभी आप एक बाइट सुन रहे थे इफ्को की 55वीं वार्षिक आम सभा, और इसमें बातचीत कर रहे थे प्रबंध निदेशक श्री के जे पटेल से पीएस भाटी। तो ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी थी, और अब वंदना बहन क्यों ना अब हम थोड़े जो बाजार के जो भाव हैं हम अपने किसान भाई बहनों को जानकारी दे दें।
2: जी बिल्कुल, हरियाणा की मंडियों से कुछ भाव हमारे पास हैं वो हम अपने भाइयों को बता देते हैं। गेहूं का इस वक्त जो रेट चल रहा है वो है 2585 रुपये प्रति कुंटल। धान का जो भाव है वो 3500 रुपये प्रति कुंटल है और सरसों जो 7800 रुपये प्रति कुंटल है। और आज़ादपुर मंडी में

0: आलू का भाव है 1200 रुपये प्रति क्विंटल।
1: जी हाँ, और अगर बात करें हम दालों की, तो अरहर दाल का जो भाव रहा है वो रहा है 12,500, और गुड़ का भाव रहा है 7,000। और बात करें अगर हम चीनी की, तो चीनी का जो भाव रहा वो रहा 4,150। और वंदना बहन, कल के कार्यक्रम की भी हम क्यों ना जानकारी दे दें अपने भाई बहनों को। जी हाँ, कल आप 6:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार, और शाम 7:05 पर हमेशा की तरह आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम।
0: जी हाँ,
1: और भाई जाते जाते हम यही कहेंगे, वंदना बहन की गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, तो ऐसे में हमारे जो भी भाई बहन हैं इस गर्मियों में अपना पूरा ख्याल रखें और पानी खूब ज़्यादा पिए, और साथ ही साथ आप धूप में थोड़ा कम, मतलब खेतों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सुबह जा करके खेतों का काम निपटाएं, और
0: सुबह में फिर शाम को यानी दोपहर में आप खेतों में ना रहें, क्योंकि दोपहर का जो टाइम होता है वो बहुत ही धूप वाला होता है और उससे आपके स्वास्थ्य को फर्क पड़ सकता है, क्योंकि लू चल रही होती है।
1: जी
0: अगर
1: हाँ।
0: किसी को लू लग जाती है तो उसका तुरंत चिकित्सक के पास जाकर इलाज करवाएं, क्योंकि लू लगने से व्यक्ति के सांसों में भी दिक्कत आ जाती है और शरीर में भी कमजोरी महसूस होती है।
1: जी हाँ, और ऐसे में खाने पीने का भी आप पूरा ख्याल रखें, बाहर की चीज़ें, खुली चीज़ें, कटी फटी चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें, मतलब साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं। और भाई हम तो ये कहेंगे इस मौसम में आप अपना सर सूती कपड़े से ढकें और खूब सारा आप पानी पिए।
0: जी बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम अपने भाइयों से लेते हैं विदा। कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर, और कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं कुछ गज़लों का।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे जगजीत सिंह के गाए कुछ गज़लों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
4: RBI कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
5: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
5: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
5: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई। आप भी लगवा ही दो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कांग्रेस नेता अल्पा लांगवा को दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2024 में जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दोषी ठहराया। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली के पार्षदों को 50-50 लाख की विकास निधि जारी की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से मुलाकात कर दोनों राज्यों के बीच सहयोग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और राष्ट्रीय राजधानी में लू का येलो अलर्ट, अगले 3 दिन तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण।

0: और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
1: जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावाधिनी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामासामी पाई स्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और एचडी कुमार स्वामी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह में दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता अलका लांबा को वर्ष 2024 में जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला करने से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने लांबा को दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर दलीलें सुनने के लिए 5 जून की तारीख तय की है। अभियोजन पक्ष ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा पर 29 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के काम में बाधा डालने और एक सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया था। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने आज केंद्र सरकार के उस आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई जिसमें क्लब को अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सरकार को सौंप देने को कहा गया है। न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए कल का दिन तय किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब से 5 जून तक अपना परिसर वापस सरकार को सौंपने को कहा है। सरकार का कहना है कि 27 एकड़ का ये जमीन का टुकड़ा रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
3: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सरकार की मेट्रो मंडे पहल के तहत अपने आवास से दिल्ली सचिवालय तक मेट्रो और डीटीसी बस से यात्रा की। श्रीमती गुप्ता ने नागरिकों से साझा और टिकाऊ परिवहन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अगर अधिक से अधिक नागरिक सार्वजनिक परिवहन को अपनाते हैं तो इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने के साथ साथ प्रदूषण भी कम हो जाएगा। मेट्रो मंडे अभियान के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज अपने आवास से दिल्ली विधानसभा तक मेट्रो से यात्रा करके पहुंचे। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन संरक्षण के आह्वान से प्रेरित ये पहल नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने और ईंधन बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दिल्ली की उपमहापौर डॉक्टर मोनिका पंत आज दिल्ली नगर निगम की आमसभा की बैठक में शामिल होने के लिए ई व्हीकल के माध्यम से कार पूलिंग करते हुए दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पहुंची। ये प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज बताया कि सभी पार्षदों को 50-50 लाख रुपए की विकास निधि जारी की गई है। इससे विभिन्न वार्डों में नालियों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी। ये निर्णय दिल्ली सरकार निगम की सामान्य सभा की बैठक के दौरान लिया गया। श्री वाही ने बताया कि दिल्ली की सड़कों की बेहतर सफाई और धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा 14 नए यांत्रिक सड़क स्वीपर खरीदे गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से मुलाकात की और दोनों राज्यों के आपसी सहयोग को और मजबूत करने तथा विकास के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दोनों राज्यों का सतत विकास और परस्पर सहयोग विकसित भारत के साझा लक्ष्य को गति प्रदान करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं लिया। एक रिपोर्ट।
1: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय ने बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह की दलीलों पर संज्ञान लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। राजधानी के दो प्रमुख सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक ढांचे के अंतर्गत प्रतिष्ठित गुणवत्ता प्रमाणित मान्यता प्रदान की गई है। राजधानी के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रिया में 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल ने 96% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ओखला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में अहम समीक्षा की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को उन्नत करने को लेकर पिछली सरकारों ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया।
2: दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा। पिछले 25 सालों से लगातार सरकारें इंश्योरेंस देती रही, लेकिन किसी ने नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए कमिटेड है कि हमने हर सूरत में अपने 5 साल के टेन्योर में यमुना जी की सफाई करनी है, और उसके लिए जरूरी है कि जो उसके अंदर पानी आता है, जो अलग अलग जगह से एसटीपी के माध्यम से, सीईटीपी के माध्यम से आता है, वो साफ जाए। हम सारे एसटीपी को, सीईटीपी को जहां जहां डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है वो भी कर रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से इस महीने की 6 से 23 तारीख के बीच दिल्ली के सभी 13 जिलों में लगभग 2,65,000 लोगों तक राहत पहुंचाई गई। लोगों को गर्मी से बचाने के लिए लगभग 1,13,000

0: 900 लीटर ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन यूनिट्स के माध्यम से 1,00,000 से अधिक ORS पैकेट बांटे गए, जिससे लोगों को लू और पानी की कमी से बचाया जा सके। साथ ही तेज धूप से बचने के लिए 40,000 से अधिक गमछे और 30,000 से अधिक कैप भी वितरित की गयी। उन्होंने बताया कि राजधानी के विभिन्न जिलों में विशेष कूलिंग जोन भी स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को आराम करने और गर्मी से राहत पाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि हर कूलिंग जोन में 100 कुर्सियां की बैठने की व्यवस्था, ठंडा जल, 5 कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। इन कूलिंग जोन के संचालन और सहायता के लिए प्रत्येक स्थान पर 10 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार ये भी सुनिश्चित किया गया है कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के वाहनों की जगह प्रतिदिन बदली जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों और जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंच सके। ये अभियान जुलाई महीने तक जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कांग्रेस नेता अलका लांबा को दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2024 में जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दोषी ठहराया। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने परिसर खाली करने के केंद्र के आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली के पार्षदों को 50-50 लाख की विकास निधि जारी की गई है और राष्ट्रीय राजधानी में लू का येलो अलर्ट, अगले 3 दिन तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं और 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका में कुछ सुंदर से गीत। तो शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के साथ। और आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और जॉली मुखर्जी की आवाज़ में फिल्म आईना से ये गीत, और लीजिए अब सुनते हैं कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना।

दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहिब, हौसलों से उड़ान होती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सड़क फिल्म से ये गीत, और लीजिए आप सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म दलाल का ये गीत।

दोस्तों, जीवन में किए गए अच्छे कर्म समय के साथ अवश्य लौटते हैं, कभी अवसर बनकर तो कभी आशीर्वाद बनकर। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें तो इसका फल क्या होगा। हमें अच्छे कर्म बिना कुछ मांगे या सोचे करते रहना चाहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गीत मालिका में कुछ सुंदर फिल्मी गीतों का। ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण
3: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भिल, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने

0: कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
2: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: लाइक मेट्रिक टन्स ऑफ इंपोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे

हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को

0: the top podium spot. Meanwhile, in the 97 kg freestyle category, Vicky also struck gold after a closely fought 7-5 victory over Sherzod Poyonev. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system concludes. All tourists rescued safely. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमी अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 226 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीद कारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंतहाई शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और कुश्ती में भारत के पहलवान विकी और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैम्पियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा सिविल इन्वेस्टर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को आज पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर आर गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहल

0: में दिए जाएंगे जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
1: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ एफ से शुरू होने वाली तीन चीज़ों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत को उजागर किया है। ये तीन चीज़ें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और ज़र मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजह लफ्ज़ों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मीशत ने मज़ाहमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुतल बैंक सिडबी के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निज़ाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनतों की जदीद कारी के काम को तेज़ रफ्तारी अता करना है। जिन स्कीमों का आज आगाज किया गया उनमें सिडबी मैकफिन मार्ट शामिल है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद MSMEs को तआवुन देना है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत का पॉलिसी रद्देअमल पूरी देखभाल के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद मुल्क की तरक्की का तहफ्फुज किया जा सके। भारतीय फौज और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली कौमी फोर्स NDRF और रियासती फोर्स SDRF जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग गंडोला में राहत और बचाव की एक कार्रवाई की सरबराही में शामिल थे। गंडोला केबिर कार के निज़ाम में तकनीकी खराबी के बाद ये कार्रवाई की गई। बेस स्टेशन और फेस वन के दरमियान खिदमात के अचानक मुअत्तल हो जाने के सबब पैदा होने वाली खराबी के बायस आज कई सयाह वहाँ फंस गए थे। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि मकामी हुक्काम की तरफ से मिली इत्तला के बाद राहत और बचाव टीमें जाए मौका पर फौरन पहुँच गईं। भारतीय फौज के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस कुल 65 केबल कारें मुतासिर हुई थीं। इसमें मजीद कहा गया है कि बचाव टीमों ने सभी 300 सयाहों को बहिफाजत महफूज मकाम तक पहुंचा दिया है। इधर तकनीकी टीमें इस खराबी का जायजा ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में बार बार होने वाली गलतियों पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि यह अफसोसनाक बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के इससे पहले के तनाज़ों से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस PC नरसिम्हा और आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज़, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और CBI से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किए हैं जिनमें इस टेस्टिंग एजेंसी की जगह मेडिकल दाखिले का इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए किसी ज्यादा वसी तजर्बे वाले और खुद मुख्तार इदारे को मुकर्रर किए जाने का मुतालबा किया है। अदालत ने NTA को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें एजेंसी के कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने से मुतालिक इसरो के साबिक सरबरा के राधाकृष्णन की सदारत वाली एक कमेटी की जानिब से पिछले साल दाखिल करदा सिफारिशात पर अमल आवरी की तफसीलात पेश की जाएं। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को NEET UG 2026 के अगले माह की 21 तारीख को होने वाले दोबारा इम्तिहान को महफूज, सिक्योर और कामयाबी के साथ मुनक्किद कराने के सिलसिले में एक खत लिखा है। जनाब प्रधान ने मुल्क भर के तमाम वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखकर इस सिलसिले में उनका तआवुन तलब किया है। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने इबोला वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम के सिलसिले में तैयारियों और निगरानी के इकदामात का आज नई दिल्ली में जायजा लिया। वजारत के सीनियर अहलकारों के साथ मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने हिदायत दी कि दाखिले के तमाम पॉइंट्स जिनमें हवाई अड्डे, बंदरगाहें और ज़मीनी सरहदें शामिल हैं पर जाँच पड़ताल के इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने अहलकारों से ये भी कहा कि वह पूरी तरह मुस्तैद और चौकस रहें। आलमी सेहत तंजीम WHO ने इबोला वबा को बैन अवी तशवीश की अवामी सेहत से मुतालिक एक इमरजेंसी करार दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने वजाहत की है कि अब तक मुल्क में इबोला के किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में कलदम जमात इस्लामी तंजीम से मुंसलिक दहशतगर्दी की माली मुआवनत के एक मामले में 3 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां ज़िलों में 3 मकामात पर की गई तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई काबिल एतराज़ दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए, जिसके बारे में शुबा है कि इनका ताल्लुक रियासत में जमात इस्लामी और इसके मुतअद्दिद ट्रस्ट और तंजीमों की सरगर्मियों से है। एजेंसी के मुताबिक مطابق اب تک کی تفتیش سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ممنوع تنظیم وادی کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے لیے

0: इकट्ठा करने और दहशतगर्दी को फ़रोग देने में सरगम रही है। ये तंजीम तालीम और सेहत जैसी फलाही सरगर्मियों के नाम पर अंदरून और बैरून मुल्क से चंदा इकट्ठा करने के काम में मुलव्वस थी। ये आकाशवाणी है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में कल क्वाड वज़राए ख़ारजा की मीटिंग की मेज़बानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा पैनी वॉन्ग, जापान के वज़ीर ख़ारजा तोशी मिसो मोतेगी और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रोबियो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वज़रा तमाम तरजीही शोबों में क्वाड तआवुन को फ़रोग देने, इन दिनों जारी क्वाड स्कीमों की पेशरफ़ का जायज़ा लेने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियों पर इजहार ख्याल समेत बाहमी नौयत के दीगर बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। एक आज़ाद और खुले भारत बैरुल काहिल के क्वाड तसव्वुर के पेश नज़र वज़रा पिछले बरस 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुई तबादले ख्याल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नुमाइंदे ने इस सिलसिले में ये रिपोर्ट पेश की है।
1: इस बरस वज़राए ख़ारजा की मीटिंग आलमी गैर यकीनी और मगरबी एशिया के बहरान के वक्त मुनक़िद हो रही है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड एक अहम ग्रुप के तौर पर उभरा है, जिसकी ज़्यादातर तवज्जो भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम है। इत्तेहाद के मौजूदा सदर की हैसियत से भारत ये मीटिंग मुनक़िद कर रहा है। क्वाड मुल्क इस अज़्म के साथ यकजा हुए हैं कि पूरी दुनिया की बेहतरी और एक खुले, आज़ाद और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल खित्ते को तआवुन देने की गरज से एक ताकत के तौर पर काम करेंगे और इसे एक ऐसा खित्ता बनाएंगे जो खुशहाल और मुज़ाहिम हो। क्वाड ने एक मुसबत और अमली एजेंडा अख्तियार किया है, जिसमें हम असर मसाइल और चैलेंजों पर तवज्जो दी जा रही है। इन मामलों में सेहत से मुतालिक सिक्योरिटी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और भारतीय और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इलाकाई ममालिक के दरमियान समंदरी सरहद के निज़ाम से मुतालिक बेदारी को मुस्तहकम करना शामिल है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज हिमाचल प्रदेश में 1947 किलोमीटर तवील कौमी शाहरा प्रोजेक्ट के मेयार और देखभाल की पेशरफ का जायज़ा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गडकरी ने ज़मीनी सतह पर अमल दरामद में तेज़ी लाने, मेयार की निगरानी को मज़ीद मौसर बनाने और असासों की पायदारी को बढ़ाने के लिए जदीद तामीराती तरीक़ेकार इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने सफरी मेयार को बेहतर बनाने और अहम राहदारियों में बिला रुकावट रबते को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सरकार मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। मगरबी एशिया में हालिया सूरत हाल के बारे में आज नई दिल्ली में मुनक़िदा बैन वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में LPG की रिफाइनरी प्रोडक्शन बढ़ाकर 50,000 टन योमिया कर दी गई है।
2: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सिफारतखाना और कौंसलेट भारतीय बिरादरी की खैर आफियत के लिए उनसे रबते में है। दिल्ली जिमखाना क्लब के मेम्बरान ने आज मरकज़ के उस हुक्म के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है, जिसमें क्लब से कहा गया था कि वो अगले माह की 5 तारीख तक जिमखाना की इमारत हुकूमत के सुपुर्द कर दें। अदालत ने इस मामले की समाअत के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस लीडर अलकलांबा को 2024 में जंतर मंतर पर एक एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार पर हमले से मुतालिक एक मामले में कसूरवार करार दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने लांबा को कसूरवार करार दिया और सज़ा के मुतालिक दलाइल की समाअत के लिए 5 जून की तारीख मुकर्रर की है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक गर्म रात की सूरत हाल रहने से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद से शदीद गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और उत्तराखंड में भी कल तक इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। वियतनाम के दा नांग शहर में

0: एशियाई अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के दो तमगे हासिल किए हैं। 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल जुमरे में अक्षय तनाजी धीरे ने अपने हरीफ येलामेन को 2-4 से हराकर टॉप पोजीशन हासिल की। 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में विकी ने शेरजोत को सख्त मुकाबले में 5-7 से हराकर सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 2026 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीदकारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाइस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज़्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फ़ोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7, 2371-7106 और 2331-4444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं। तो आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठजनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की और बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नज़र रखते हुए, जैसे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक

0: जुड़ाव, आपत्कालीन सहायता, इन सब चीज़ों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं, इन्होंने जब सीनियर सिटीज़न वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज़ में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फ़ायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ट्रेंड, प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर केयरगिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने एक ट्रेंड केरियाटिक केयरगिवर्स किए हैं, उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं
1: उन्हें। जी, ऐसे जेरियाट्रिक केयरगिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया, और सीनियर सिटीजन्स के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स। ये है नैना का सवाल मुंबई से।
0: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा
1: जी,
0: तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स हैं वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे, और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज़ कर
1: पाएंगे। तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुज़ुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
0: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फ़ोन करते हैं तो उनको वेरीफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पर ओटीपी आएगा
1: जी,
0: कि हमारे जेरियाट्रिक केयर गिवर का वहाँ पर सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा
1: जी,
0: इसके अलावा वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी।
1: और एक और सवाल आया है हमारा,
0: इसका पार्ट टू भी,
1: ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस, के लिए क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पर, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी,
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो, कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है, कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी।
1: जी जी जी, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना हो और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी। जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे, कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना ज़रूरत नहीं है।
1: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांजी का हैदराबाद से, कि हाउ

0: एंड सीनियर सिटीजन गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज. अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है.
1: जी थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए. जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567. तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज़ कर सकते हैं. जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं.
0: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज़ जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं. और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप. अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही.
1: थैंक यू अरुण पवार जी. मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल. आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत. तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल. अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूँगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्या वयोश्री केंद्र है. वहाँ पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं. तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है.
0: जी. और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं. उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा.
1: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी,
0: जी
1: आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूँगी. जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी विद ज्योग्राफिकल लोकेशन नाम पता. दूसरा है एल्डरलाइन जैसे मैंने कहा 14567 उसका 112 और 108 के साथ. तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में. चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है. इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं MOU हुए हैं वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशन बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी.
0: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी.
1: जी इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी
0: ताकि लोगों को आसानी हो.
1: जी,
0: जो
1: संजीवनी
0: संजय सूरी जी और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी.
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल. ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं. मेरा इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल नहीं सकते हैं, उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं. तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो जैसे अभी ग्रामीण

0: ही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है। तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे।
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मुनाली जी, अगर देखूं, जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें, तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
0: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूँगी। हमारा जो 14567 है, इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुज़ुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफ़ी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज़ भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुज़ुर्गों के साथ एकजुट होकर चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज़्यादा लोगों तक अगर हम हों तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई, और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है, उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए हैं आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है, उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है, उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे बुज़ुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके ऐप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध हैं, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम तो मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट भी कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को?
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
0: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
0: से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है, इसमें तो हर जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओज जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहाँ से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुज़ुर्गों के लिए हो? क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं हैं और स्मार्टफोन्स जिनको चलाने इतने ख़ास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स के मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने

0: प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन, उसके तहत ना ही जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिस पे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियाँ।
1: जी जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका कोई भी दुविधा है तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार,
2: आप सभी लोगों को आगामी पर्व जो है की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
2: जी। और हाँ जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
0: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4-5-6-7 ये जो हेल्पलाइन है इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है इस पर भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं जिस पे आपको बाकी मदद भी वहाँ के वहाँ पहुँचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं 1-4-5-6-7 और जो कनेक्टेड हैं 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, फिर पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
1: जी
0: प्रेस के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग ज़रूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है तो अगर हम जाएँ दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
0: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरेट्रिक केयर गिवर है तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
1: जी दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
3: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
1: जी।
3: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
0: नमस्कार मैम, जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112 इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 1-4-5-6-7 पे डायल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
1: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
0: राज्य सरकार

0: की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज़्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक
1: जी
0: माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
1: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका सवाल।
2: मैं
1: हाँ जी,
2: ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं, ये प्रयास है पहुंचे?
0: रामा शंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है। आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल
1: अगर उन्हें
0: रहे
1: का
0: हैं।
1: स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
0: 14567 में
1: अच्छा,
0: आपको स्मार्टफोन की भी ज़रूरत
1: जरूरत नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने। मध्य प्रदेश से
0: मंत्रालय
1: जुड़े
0: ने
1: जी
0: जी
1: राजेश नेमा जी।
3: जी
1: जी राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
3: मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी
3: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है, उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, तो उस स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है मोनाली जी?
0: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज़ हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे ज़रूर आप इस पे रेस करिएगा। हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
1: जी, तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
0: जी, थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इसके लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, कि हम बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए। तो इससे साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों
1: जी
0: में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने
1: जी
0: चाहिए। तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के
1: युवा
0: लिए ही है, कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो, तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है। तो इसी से हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें ऐड ऑन करने की आपकी वो है, योजना है?
0: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है, और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस।
1: जी
0: हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे।
1: जी
0: तो इसके, जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की, इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई हैं।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
3: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोटेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बूटा पथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3

0: धीरे डिफीटेड यानामान अमाकल दीएफ 4-2 टू क्लेम द टॉप पोडियम स्पॉट. मीनवाइल इन 97 केजी फ्रीस्टाइल कैटेगरी विकी ऑल्सो स्ट्रक गोल्ड आफ्टर अ क्लोजली फॉट 7-5 विक्ट्री ओवर शेरजोद पोयनोव. And the first BRICS 2026 Tourism Working Group or TWG meeting was successfully convened virtually today. The meeting was chaired by the Joint Secretary in the Ministry of Tourism. The meeting served as an introductory and preparatory platform for advancing this year's tourism cooperation agenda. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर. रात्रि के 10:10 हुए हैं. आइए अब सुनते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता. सुनते हैं मज़र हुसैन की आवाज़ में ये गज़लें.

गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता में अभी आप सुन रहे थे मजहर हुसैन की आवाज में गजलें। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शुभम कुमार का राग मालकोस में गायन। संगत कलाकार हैं तबले पर मुस्तफ़ा हुसैन और सारंगी पर संगत कर रहे हैं गुलाम मोहम्मद।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे शुभम कुमार का राग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gundola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive seven-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI today, Mrs. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
2: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
3: External Affairs Minister Dr. Ajay Shankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of the State of United States Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent development in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Home Minister Amit Shah will visit India's border region over the next few days and hold security-related meetings. Sources said he will reach Bikaner, Rajasthan tonight and will visit the BSF's Sanshu border outpost in the morning tomorrow, where he will interact with the security forces and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region of Bikaner. Officials said the Home Minister and the Rajasthan government, BSF officials along with the district collectors and superintendent of police from Five Borders District will attend the meeting. At Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing two gold medals today. And that's the end of the news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी फरमाइश। कहते हैं दोस्तों, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, ये वो खूबसूरत रिश्ता है जो धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी बन जाता है। एक ऐसा इंसान जिसे हम अपनी हंसी, अपने सपने, अपनी हर खुशी सौंप देते हैं। तो दोस्तों, इसी प्यार और खूबसूरत एहसास के साथ शुरू करते हैं आपका अपना कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी फरमाइश। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म कसूर से। इस गीत की फरमाइश की थी एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायणा खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक परी, स्वाति कुमारी देवी का। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली से नीलम सिंह, प्रियाशी, वेदांशी, एसपी सिंह ने। दोस्तों भी दुनिया की भीड़ में सब कुछ पीछे छूट जाता है, जब दिल को किसी अपने का साथ मिल जाता है ना, तो फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान सब छोड़ कर सिर्फ प्यार के पास जाता है। सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

चित्रा और केके की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म मैंने पिया मैं प्रेम की दीवानी हूँ से। इस गीत की फरमाइश की है सहारनपुर से सैयद मसूर, शायना नाजिया इब्राहिम, और साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी हरियाणा से बाल किशन, रोशनी जिगर, मालू पूजा, राजा सुमन, लक्षु ज्योति। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली से मनीष गीतांजलि, तनिष्का और रणवीर ने। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आप हमें मेल कर सकते हैं, पता नोट कीजिए, IBRadioDelhi@gmail.com।

दोस्तों, प्यार एक विश्वास का पात्र है। अगर आपने अपने प्यार को विश्वास नहीं दिलाया ना, तो उसका साथ कैसे आप ना पाओगे? अपने प्यार की तारीफ सुनना भी कितना खूबसूरत एहसास होता है, जिसे हम दिल से चाहते हैं। उसकी हर बात, हर मुस्कान, हर अंदाज खास लगने लगता है। कभी उसकी आंखों में चमक दिल जीत जाती है, तो कभी उसकी सादगी दुनिया से अलग लगती है। सच्चा प्यार वही होता है दोस्तों, जहाँ किसी की छोटी सी बात पे भी दिल की खुशी दे जाती है। अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत फिल्म दलाल से। इस गीत की फरमाइश की थी खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली आरती अरोड़ा, और पंचकूला सेक्टर 9 से आशुचूक अश्वनी और गोविंद ने।

दोस्तों, दिल का सौदा भी बड़ा कमाल होता है। ना कीमत लगती है, ना कोई हिसाब होता है। बस जिसे अपना मान लो, उसी पर पूरा दिल निसार हो जाता है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म क्योंकि से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने।

तेरा साथ मिला तो ऐसा लगा जैसे हर अधूरी खुशी पूरी हो गई है। प्यार जब सच्चा हो दिल से तो जिंदगी की सुनहरी हो जाती है। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म आशिकी से। इस गीत की फरमाइश की थी जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन नौरिन आसना और मोहम्मद कैफ ने।

दोस्तों प्यार में दिल का खो जाना भी अजीब होता है। इंसान खुद में कम और किसी अपने में ज़्यादा जीने लगता है। हर धड़कन में बस उसी का नाम और हर ख्वाब में उसी का चेहरा नज़र आता है। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दिल तो पागल है से। इस गीत की फरमाइश की थी रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगम, भाभी सरिता गौतम ने।

अपने प्यार की बाहों में खो जाना, जैसे सारी दुनिया का सुकून मिल जाना, जहाँ कोई डर ना हो, कोई दूरी ना हो, बस धड़कनों को खूबसूरत सा साथ मिले। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म काला पत्थर से। इस गीत की फरमाइश की थी महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और गोविंदपुरा अहमद नगर से जुनेद मुजाफ़र, सबिया माइकल और जनेब ने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म स्वयंवर से। इस गीत की फरमाइश की थी मध्य प्रदेश से AK पांडे ने।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म आ अब लौट चले से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म

0: अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों के अनुसार आज सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे वे, जहां सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with

बात करते हैं उनके इस गीत के, और तब तक फटाफट से हमें मेल करिए और बताइए हम किस गीतकार की बात कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत फिल्म राज से।

जी हाँ श्रोताओं, आपने बहुत सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं एक प्रसिद्ध कवि, शायर और गीतकार की, शमीम जयपुरी, जिनका वास्तविक नाम फहीमुल हसन था। साहित्यिक प्रवृत्ति के कारण उन्होंने कम उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी शायरी के लिए अजीज आगाही से मार्गदर्शन प्राप्त किया। शमीम जयपुरी को मुख्यतः मुशायरा कवि के रूप में लोकप्रियता मिली। वे अपनी मधुर आवाज़ और तरन्नुम में शायरी पढ़ने की कला के लिए याद किए जाते हैं।

श्रोताओं, शमीम जयपुरी का जन्म वर्ष 1933 में जयपुर तत्कालीन रियासत में हुआ, जो कि अब राजस्थान में है। उनकी शिक्षा जयपुर में ही हुई। बचपन से ही उन्होंने गज़लें लिखनी शुरू कर दी थी। बाद में वे जयपुर से मेरठ चले गए और वहीं स्थायी रूप से बस गए। यहाँ उनका संपर्क जिगर मुरादाबादी और तस्कीन कुरैशी से हुआ। जिगर मुरादाबादी का उनकी शायरी की शैली और स्वर पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद उन्होंने सन 1958 में शमीम जयपुरी को एक मुशायरे के लिए बम्बई बुलाया गया। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एस मुखर्जी ने उन्हें सुना और काम का प्रस्ताव दिया। उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में नौकरी छोड़ दी। उनके अनुसार, मुझे नियमित वेतन तो मिलता था, लेकिन जो गीत मैं लिखता था वे किसी दूसरे गीतकार के नाम से प्रस्तुत किए जाते थे। जी हाँ, उनकी ये बात भी कहना ठीक था। उनकी मेहनत में उनका नाम तो ज़रूर आना चाहिए था।

उनके संघर्षों के दौरान ही 1960 में उनकी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में एक प्रसिद्ध गीत मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ ना दो लिखा, जिसे मुकेश ने गाया। ये अभिनेता धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी और संगीत प्रेमियों के बीच ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है। इस फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था।

वाकई श्रोताओ, इस ऐसे गीत तो आप बहुत कम ही सुन पाते होंगे। अब शमीम जयपुरी वास्तव में ही एक उम्दा गीतकार ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे शायर भी थे। अपने गुरुओं का ये बहुत सम्मान किया करते थे। मेरठ में जब इन्होंने जिगर मुरादाबादी की शागिर्दी हासिल की, तब अपने नाम के साथ खाक पाए तस्कीन ओ जिगर, यानी तस्कीन और जिगर के पैरों की धूल कहकर संबोधित किया करते थे। जिगर मुरादाबादी के साथ इनका रिश्ता करीब 20 साल तक रहा। फिलहाल श्रोताओं, जारी रखेंगे इस कार्यक्रम को और सुनते हैं उन्हीं के द्वारा लिखे गए इस गीत को, फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से।

श्रोताओं, न्यूज ऑन AIR लाइव ऐप पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। और हमारे आज के जो कलाकार हैं वो हैं शमीम जयपुरी, जो कि एक बेहद बेहतरीन गीतकार हैं, और गीतकार के साथ ही वे एक बेहतर शायर और गज़ल भी गाते हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की लिखी हुई ये गज़ल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओ, शमीम जयपुरी साहब के बारे में उस्ताद अहमद हुसैन बताते हैं। एक बार 1977 में हमारी मुलाकात मुंबई में कल्याण जी से हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि दोनों गानों में शमीम जयपुरी के तरन्नुम की धुनों को इस्तेमाल किया गया था और हमने केवल बजाया था। उनके एक रिश्तेदार अरशद हुसैन ने बताया, बेगम अख्तर अपने साजिंदों को शमीम जयपुरी की तरन्नुम सुना दिया करती थी और कहती थी कि इसे धुन पर बचाना है। श्रोता, वो इतने बेहतरीन गीतकार तो थे ही, साथ ही वे गज़लों में भी अपनी गीतकारी बहुत उम्दा तरीके से करते थे। ऐसे ही एक गज़ल को हम सुनेंगे अपने अगली पेशकश में, जिसे गाया है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने।

श्रोताओं, ऐसे तो उनको बड़े राष्ट्रीय पुरस्कारों में उनका नाम नहीं आया, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से उनकी शायरी और फिल्मी गीतों के लिए सम्मान और पहचान मिली। हालांकि उनके लिखे कई गीत बहुत लोकप्रिय भी हुए, जैसे अकेले है चले आओ, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ ना दो। इन्हीं गीतों की वजह से उन्हें उर्दू शायरी और हिंदी फिल्म संगीत में खास पहचान मिली।

श्रोताओं, शमीम जयपुरी का निधन 30 मई 2003 को मुंबई में हुआ। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी उम्दा गीतकारी और शायरी और गज़लों के द्वारा हम आज भी उनको याद करते हैं। और उनकी ये उनका ये सम्मान और उनका ये जो और हासिल किया, उन्होंने जो नाम हासिल किया, और यही वजह है कि आज भी हम उनको अपने इस कार्यक्रम में सुरों का सफरनामा के द्वारा याद कर रहे हैं। जाते जाते ही सुनते हैं उनके ही द्वारा लिखे गए इस गीत को, फिल्म सहेली से लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये शुरू का सफरनामा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगी ये कार्यक्रम लेकर ठीक रात के 12:10 पर।

0: श्रोताओ, रात्रि के 1 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर पे आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री

0: शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से दो दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगी। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृहमंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान सीएसआईआर और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान एनआईएएस के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। डीजीसीए ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.T. Kumaraswamy were also present on the occasion. Union Home Minister Amit Shah congratulated all the luminaries and change makers who have been conferred.

तो श्रोता, इस कार्यक्रम की शुरुआत की हमने फिल्म सरगम के गीत के साथ, जिसमें भी आपने सुना ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गीत जो मैं सुनवाने वाली हूँ वो एक ऐसी लोकप्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें जिसके गीत बेहद ही हिट हुए थे और इन गीत में फिल्म के गीतों को आर डी बर्मन ने दिया जो कि बहुत हिट हुए, और उन्हीं हिट में से एक गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म आगली लग जा से।

श्रोताओ, अगला गीत जो हम सुनवाएंगे वो एक सुपर हिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का एक बहुत ही भावुक और लोकप्रिय गीत है। इस गाने को किशोर कुमार ने गाया था और इसका संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया था। गीत के बोल अनजान ने लिखे थे। ये गीत फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार सिकंदर की दर्द भरी भावनाओं को दिखाता है। गाने में अधूरे प्यार और अकेलेपन का एहसास बहुत गहराई से व्यक्त किया गया है। किशोर कुमार की आवाज़ और भावपूर्ण अंदाज ने इस गीत को अमर बना दिया।

श्रोताओं, अगला गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत एक विश्वासघात और टूटे रिश्तों के दर्द को दर्शाता है। गाने के बोल बताते हैं कि कभी कभी दोस्त या अपने लोग ऐसा दुख दे जाते हैं जो दुश्मन भी नहीं दे पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1980 के दशक में आए सबसे दर्द भरे हिंदी फिल्म गीतों में गिना जाने वाला ये गीत फिल्म आखिर क्यों से दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है। इस गाने को लता मंगेशकर और अमित कुमार ने गाया था, संगीत राजेश रोशन, गीतकार इंदीवर, कलाकार राजेश खन्ना, स्मिता पाटिल और टीना मुनेन ने।

श्रोताओं, अगली पेशकश है फिल्म मेरी जीवन साथी से, और इस गीत को जो हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किशोर कुमार ने अपनी मधुर आवाज़ में गाया था। संगीत आरडी बर्मन ने दिया था और बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। ये गीत राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था और उनके रोमांटिक अंदाज को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। गाने की धुन बेहद मधुर और सुकून देने वाली मानी जाती है, और किशोर कुमार की गायकी और आरडी बर्मन के संगीत का ये शानदार मेल माना जाता है। ये गीत आज भी इतना लोकप्रिय है कि आज भी पुराने हिंदी रोमांटिक गीतों की सूची में सबसे लोकप्रिय गीतों में शामिल किया जाता है। राजेश खन्ना के करियर के सबसे प्रसिद्ध गीतों में इस गाने को गिना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा रोमांटिक गीत फिल्म मेरी जीवन साथी।

तो श्रोताओं, अगला गीत जो आप सुनेंगे वो इस फिल्म की उस दौर की सबसे चर्चित और सफल हॉरर फिल्मों में मानी जाती थी, और इस फिल्म में कई बड़े सितारे एक साथ देखे गए। जी हाँ, बात करने हैं फिल्म जानी दुश्मन की, जिसमें कई सारे बड़े सितारे जैसे कि सुनील दत्त, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, रीना रॉय, नीतू सिंह, रेखा, संजीव कुमार दिखाई दिए। फिल्म की कहानी एक रहस्यमय शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो गांव की नई दुल्हनों को निशाना बनाता है। गांव में डर और रहस्य का माहौल बन जाता है। बाद में पता चलता है कि इसके पीछे बदले और पुराने श्राप की कहानी जुड़ी हुई है। खैर, ये तो रही इस फिल्म की कहानी, लेकिन क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में आप गीतों को सुनेंगे, तो इस गीत को हम सुनवाते हैं, और इस फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत को हम सुनवाएंगे, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

बहुत ही बेहतरीन गीत आप सुन रहे थे फिल्म जानी दुश्मन से। श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते और सुनवाती हूँ अगला गीत, फिल्म उमराव चांद का ही बेहद मशहूर गजलनुमा गीत। इस गीत को आशा भोसले ने गाया था, संगीत खायम ने दिया था और बोल प्रसिद्ध शायर सहियार ने लिखे थे। यह गीत रेखा पर फिल्माया गया था और उनके अभिनय तथा अदाओं ने इसे अमर बना दिया। गाने में उर्दू शायरी की खूबसूरती और नज़ाकत साफ दिखाई देती है। आशा भोसले की गायकी को इस गीत के लिए बहुत सराहा गया। तो आइए सुनते हैं ये गीत जिसे आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना उस दौर में किया करते थे।

नदिया के पार फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हेमलता की आवाज़ में। तो श्रोता, सुनवाती हूँ अगला गीत, चूँकि है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म अर्पण से। गीत सुनवाने से पहले इस फिल्म की जो खास बात है वो है इसकी भावनात्मक कहानी। त्याग का विषय और रीना रॉय का गंभीर अभिनय माना जाता है। उस दौर में इसके गाने भी काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। उन्हीं लोकप्रिय गीतों में से सुनवाती हूँ ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: रात्रि के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। विज्ञान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ. ईवा ओर्तेगा पोइनो के नेतृत्व में वाले उच्चस्तरीय मंत्रिमंडल से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। वहीं खेलों में वियतनाम में एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Raja was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. Union Home Minister Amit Shah congratulated all the luminaries and changemakers who have been conferred with Padma Awards by President Draupadi Murmu. In a social media post, Mr. Shah said, Prime Minister Narendra Modi has reoriented Padma Awards as an institution to drive socio-economic progress by honouring the real changemakers, strengthening the society at crossroads. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola Ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials yesterday said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched.

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा गीत बाहर कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे ये कार्यक्रम लेके ठीक रात के 2:10 बजे।

0: जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ. ईवा ओर्तेगा पाइनो के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत सामग्री, डिजिटल हेल्थ और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री और नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष नेफ्यू रियो ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के एनपीएफ में विलय को निर्वाचन आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। कोहिमा में पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रियो ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस महीने की 4 तारीख को विलय को औपचारिक मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, ये मधुर गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल चित्रा सिंह की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये मधुर गज़ल आपने सुनी चित्रा सिंह की आवाज़ में। वाकई में इनकी आवाज़ में कुछ जादू तो है, कुछ बात तो है। आइए सुनते हैं ये अगली गज़ल चित्रा सिंह की ही आवाज़ में।

वाकई श्रोताओं, ऐसी बेहतरीन आवाज़ हो तो ऐसी गज़ल कोई भी बार बार सुनना चाहेगा। शायद इसीलिए चित्रा सिंह गज़लों की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल कर पाई। आइए सुनते हैं अगली गज़ल, फिल्म क्षमा कीजिए, आइए सुनते हैं अगली गज़ल पंकज उधास साहब की मधुर आवाज़ में।

श्रोताओं, ये दो गज़लें अभी आपने सुनी पंकज उदास साहब की मधुरावास में। श्रोताओं, अपनी गज़ल गायकी से पंकज उदास साहब ने जो एक जगह लोगों के दिलों में बनाई थी, वो शायद कभी मिट नहीं सकती। हालांकि आज के समय में पंकज उदास साहब हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपनी गज़लों के ज़रिए वो हमेशा हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे। आइए सुनते हैं अगली गज़ल तलत महमूद साहब की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ गज़लों गीतों के कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अंतिम गज़ल भूपेन हजारिका साहब की आवाज़ में।
1: उम्मीद ऑप्टिमिज्म आशा भूपेंदा के हाथ से कभी नहीं छूटती, न लोकगीतों में जो वो गाते हैं, न नज़मों से जो वो लिखते हैं और कंपोज करते हैं। यहाँ तक कि तन्हाई में भी वो अकेला महसूस नहीं करते, उनका साया उनके साथ रहता है, उम्मीद की जोत जलाए रखता है। और वो ऊंची आवाज से कहते हैं, ना कहो कोई, मैं अकेला हूं।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्रीमती सुधा रघुरामन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती सुधा रघुरामन प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर M. बाला मुरली कृष्णा की रचना बृहदेश्वरा महादेव।

0: मोदते ओम नमः शिवाय।
1: इस कार्यक्रम का समापन श्रीमती सुधा रघुरामन गुरु सुरजानंदा की रचना गंगाधीश्वरम शंकरम से करेंगी।

आप सुन रहे हैं ए आई आर लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नादब्रह्म, जिसमें आप सुन रहे थे जी दुर्गा प्रसाद एंड पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया संगीत। तबले पर संगत दी थी के नटराजन ने। श्रोताओं, आइए सुनते हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5 बजने को हैं। 5 बजे आप सुनेंगे सबसे पहले वंदे मातरम। आपसे थोड़ी देर में आप वंदे मातरम के बाद आप सुनेंगे 5 बजे हिंदी में समाचार, और 5:05 पर हिंदी में समाचार। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026।

सुबह के 4:54 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24/7। आपसे थोड़ी देर बाद ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार, और 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। पाँच बजकर 20 मिनट पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत, और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार, और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन कार्यक्रमों में भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन, और 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का के बालकांड का भाग 67। छः बजकर पचपन पचपन मिनट पर

0: होगा संस्कृत समाचारों का। 7 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी। 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 8:15 पर आप सुन सकेंगे इंग्लिश अंग्रेजी समाचार। 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं और 8:45 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। 9:15 पर समय होगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका का और 9:30 पर आप आनंद उठा सकेंगे पंजाबी गीतों के पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दमहक का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वॉशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति गंगटोक में आज शाम नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। राष्ट्रपति कल नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे आज राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज सुबह वे BSF की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, BSF अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। रिजर्व बैंक RBI ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में RBI शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग

0: focus on the three Fs, that is, fuel, fertilizer, and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that Indian economy remains resilient. Directorate General of Civil Aviation, DGCA, has issued a standard operating procedure for airlines following the World Health Organization's declaration of the Ebola disease outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda as a public health emergency of international concern. At the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing two gold medals yesterday. In the 57-kilogram freestyle category, Akshay Tanaji Dhere defeated Yelemen Amangeldye 4-2 to claim the top podium spot. Meanwhile, in the 97-kilogram freestyle category, Vicky also struck gold after a closely fought 7-5 victory over Sherzod Poynov. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन।
2: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गोमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें। यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें। हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती हैं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर

सांस भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंधासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें, फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं, आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर बाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें और इस अवस्था में भी लगभग एक मिनट श्वास लें। कुछ देर बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों के लॉक को खोल दें और पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह आपका एक चक्र पूरा हुआ। हाथों के पंजों को पीछे पकड़े रहने की सुविधा अनुसार 30 सेकंड से एक मिनट की स्थिति तक रह सकते हैं। इस आसन के चक्र को दो या तीन बार दोहरा भी सकते हैं। गोमुख आसन करते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे किसी भी अन्य आसन को करते समय। यदि आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर रोग हो तो गोमुख आसन न करें। इसी तरह जबरदस्ती पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ने का प्रयास न करें। जब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया इतनी आसानी से न हो पाए। जब धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ता चला जाए और शरीर को कष्ट ना हो तब कोशिश करें कि पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ा जाए। चलिए अब इस आसन के लाभ से आपको अवगत करवाया जाए। गोमुख आसन करने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। योग करें, हर रोज करें और अपने चेहरे पर योग करते समय मुस्कान को बनाए रखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगी, रोग से दूर कर देगी। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। सुबह के 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।